0: हूँ मैं जबरन, मुझको वो जल्लाद बनाए बैठी है, मुझको वो जल्लाद बनाए बैठी है, दिल में एक अरमान सजाए बैठी।
1: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो शीला जी, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई अभी, और निश्चित तौर पे ये हमारे वर्तमान समाज को जो है दर्शाता है। और सुभाष जी ने याद भेजा है बहुत सुंदर टॉपिक काव्य की, काव्य से अनंत यात्रा। अजय रमेश और शीला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो
0: जी।
1: कविताओं में जो आपको सुकून मिलता है, कुछ ऐसे भी अनुभव जैसे रचनाओं को लिखने के बाद अकेले में भी एक सुकून भरा जो पल है वो फील होता होगा, तो निश्चित तौर पर कुछ कविताओं के साथ आपका जुड़ाव, काफी टाइम लगा उसको लिखने में, उनसे थोड़ा सा जो है वो अनुभव जरूर शेयर कीजिए। जी
0: जी, कई बार होता कि हम एक एक शेर को काफी दिन लग जाते हैं बनाने में, और कई बार ऐसा होता कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता तो जल्दी भी रचना तैयार हो जाती है, और एकांत
1: बिल्कुल
0: अगर मिल जाए तो उस टाइम पर काफी लिखा जाता है, और उसके लिए पहले पढ़ना तो जरूरी है। हम पढ़ेंगे तब
1: बिल्कुल
0: उसके बाद ही विचार अच्छे आएंगे, और तभी हम अच्छा लिख पाएंगे। समाज में जैसे हम कई चीजों को ऐसा देखते हैं तो उसके ऊपर भी हमारी रचना जल्दी बन जाती है। फर्क तो पड़ता है,
1: जी
0: ये पढ़ाई जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि कुछ और गजलें आप सुनाइए जो आपके प्यारे हैं।
0: मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि आज मैं कॉपी का सहारा लेकर बैठी हूँ। एक मेरे सरसी छंद पर गीत है तो वो मुझे याद आ गया, मैं साथ हुआ। मन के घुंघरू टूटे बिखरे, मन के घुंघरू टूटे बिखरे अपनी कहते बात, मन के घुंघरू टूटे बिखरे अपनी कहते बात, तज श्रृंगार भीती जाके है पल पल डहता गा, कुछ कुछ बैठा बतियाता है गाता रहता गीत, कुछ कुछ बैठा बतियाता रहता है गाता रहता गीत, आस करुण का पंछी भोला बात गया है रीत, सुनकर उसकी मधुरिम बोली नव होती है बात, तज श्रृंगार भीती झाके है पल पल ढहता गा, बाट देखते सूख गए हैं नैन हमारे आज, जागे हैं दिन नैनन ये लिए तुम्हारे साथ, जाग रही है छज्जे पर वह ऐ पलकन नैनन रात, तज श्रृंगार भीती झाके है पल पल ढहता गा, पाती पिए को लिख कर भेजे असवन बहते नीर, पाती पिए को लिख कर भेजे असवन बहते नीर, संदेश चरैया लाई है उसे पुकारे हीर, देर लगा दी साजन इतनी धीरज करता घात, तज श्रृंगार भीती झाके है पल पल ढहता गा, मन के घुंघरू टूटे बिखरे अपनी कहते बात। इसी के साथ मैं अपनी एक गजल
1: जी जी
0: पे

0: वाह क्या बात, बहुत सुंदर। और ये शीला जी उषा जी ने लिखा है और हमारा दिल भी बहुत बहुत
1: पहल तो जा रहा है जी।
0: नीता जी, बहुत बढ़िया करके मैसेज लिया है। और क्या बात है, उषा जी ने बड़ा ध्यान से मैसेज लिया है, सुभाष जी ने भी याद भेजा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ वर्तमान समय को देखे, कोरोना को देख के या फिर इन सारी सिचुएशन को देख के कुछ लिखे थे, तो उसके बारे में भी बताइए।
1: कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर मेरी एक रचना है। तो उस दौरान

0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद, शुक्रिया शीला जी, बहुत ही अच्छी पुरानी यादें ताजा करा दी। आइए एक और मैसेज आया है, नीता जी लिखते हैं एक राधा कृष्ण का गजल या कविता हो जाए।
0: राधा
1: डिमांड आ गई है आप।
0: वैसे तो राधा कृष्ण का मैंने सुना दिया था एक, चलो फिर भी कोशिश कर, याद तो नहीं है मुझे, पर
1: कल्पे जी ने
0: मैं
1: भी उनकी करके याद भेजा है आपको। जी
0: जी जब तक मुझे वो मिले और कुछ सुना दो साथ साथ में, तब तक
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, आपका पसंदीदा सुना दीजिए कोई।
0: नहीं मैं ढूंढती हूँ, अगर वो भी मिल गया तो साथ साथ वो भी सुनाऊंगी।
1: बिल्कुल।
0: गीत अधूरा सा ही गाया लगता है, गीत अधूरा सा ही गाया लगता है, झुंझलाहट में जो हम साया लगा है,
1: वाह,
0: झुंझलाहट में जो हम साया लगा है,
1: बिल्कुल
0: मेरी ओर जरा भी उसका ध्यान नहीं, मेरी ओर जरा भी उसका ध्यान नहीं, शीशे में खुद को उलझाया लगा है, शीशे में खुद को उलझाया लगा है, नतमस्तक होकर मिलता है सबसे वो, नतमस्तक होकर मिलता है सबसे वो, शिष्टाचारी पाठ पढ़ाया लगता है, शिष्टाचारी पाठ पढ़ाया लगा है, बादल
1: बिल्कुल
0: भी हर वक्त बरसना सीख गया, बादल भी हर वक्त बरसना सीख गया, मेरी नम आंखों का साया लगा है, मेरी नम आंखों का साया लगा है, फल जो इसमें कोई लगता नहीं कभी, फल जो इसे कोई लगता नहीं कभी, पेड़ प्यार का अब मुरझाया लगता है, पेड़ प्यार का अब मुरझाया लगा है, गीत अधूरा सा ही गाया लगा। जी मैं कहना के ऊपर अभी ढूंढ रहे हूँ, कहीं वो बाद में याद आ जाएगा और वैसे भी याद आएगा।
1: बिल्कुल
0: जी एक और
1: जी
0: गजल,
1: जी
0: गजलों के जैसे आ जाती है मैम की ख्वाहिश के ऊपर, गजलों के जैसे आ जाते गा जाती है, गजलों के जैसे आ जाती है कोयल के जैसे गा जाती है, सुनती जब भी धुन बंसी, सुनती जब भी धुन बंसी, कानन में राधा आ जाती है, कानन में राधा आ जाती है,
1: क्या बात।
0: उसकी यादें फूल श्री की, उसकी याद फूल श्री की, आंगन मेरा महका जाती है, आंगन मेरा महका जाती है,
1: मैं कर
0: तू रहता है खुशियां रहती हैं, तू रहता है भगवान के लिए है ये
1: खुशियां
0: श्री
1: रहती हैं।
0: कृष्ण,
1: हाँ
0: तू रहता है खुशियां रहती है, गम की बदली फिर छा जाती, गम की
1: बिल्कुल
0: बदली फिर आ जाती है,
1: बिल्कुल
0: होती जब भी बात भी रहेगी, होती जब भी बात भी रहेगी, सांसें मेरी अटका जाती है, सांसें मेरी अटका जाती है, तेरी चाहत की कुल्फी है, तेरी चाहत की कुल्फी है, जो मेले में भटका जाती है, जो मेले में भटका जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो शीला जी, बहुत ही अच्छी कविताएं आपने सुनाई और आशा करता हूँ हमारे सभी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है, नीता जी, उषा जी, कल्पेश जी को और शिवाल को। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज वाली कोई कविता हो जाए एक दो, तो हम लोग उतार सकें। जी एक संदेश वाली कोई, या आप ऐसे ही संदेश अपना सुनाइए लोगों को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं खुश रहने के लिए, क्या बताना चाहते
0: जी
1: हैं।
0: सभी खुश रहे, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, योग करें, स्वस्थ रहें, जिए और जीने दें, ये फार्मूला
1: हाँ
0: अपनाएं, और
1: जी
0: सभी स्वस्थ रहें और सबके साथ प्यार प्रेम से रहें, मैं यही कहना चाहूंगी, अब
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सभी प्यार से रहें और योग अवश्य करें, और मैं ये कहना चाहूंगी अपना, जैसे ओम शांति का जहाँ भी कोई मेडिटेशन का है बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं भी काफी बार जाती हूँ तब भी मुझे महसूस होता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वहां पर जाएं सेंटर पर और अवश्य वहां पर योग भी और मेडिटेशन भी काफी चीजें सिखाते हैं, तो वहां अवश्य
1: बिल्कुल
0: योग
1: बिल्कुल
0: जरूरी, हमारे आज के दौर में तो बीमारियों से बचने के लिए योग जरूरी, उसको जरूर अपनाएं साथ साथ।
1: जी। शीला जी, बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया आपने सदा खुश रहने का, और उसमें भी आपने मेडिटेशन योग की बातें आपने शेयर किया, जिससे हमारा मन जो है प्रफुल्लित रहता है और जीवन में शांति बनी रहती है योग के कारण। तो योग हमें सुख शांति से भरपूर कर देता है। और आपने जिक्र किया ब्रह्म कुमारीज का, जहाँ आप भी जाते हैं और अन्य लोगों को भी आप जाने के लिए कह रहे हैं, ताकि वहाँ का राजयोग आप सीखें और अपने जीवन को शांतिमय बनाए। शीला जी चलिए, बहुत ही अच्छा आपने कविताओं का सुंदर आनंद दिया आज पूरे समय में, बहुत बहुत साधुवाद आपको, और भी नई नई कविताएं आते रहें और इसी तरह
0: जी
1: हमारे कार्यक्रम भी जुड़ते रहें समय समय।
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: जी
1: शुक्रिया।
0: नमस्कार, आशा करती हूँ आप सबको पसंद
1: बिल्कुल
0: आएंगे।
1: बिल्कुल, काफी पसंद आया हमें। तो दोस्तों, आज हमने शीला जी को सुना और आशा करता हूँ आपको उनकी कविताएं सुनकर कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो है पुरानी यादें ताजा हो गई होगी, या जीवन के उस प्रसंग को आप फिर से याद करके खुशी जो है अपने अंदर लाई होगी। और कभी कभी कविताओं को सुनकर आप जो है अपने ही निज धाम या अपने ही निज स्वरूप या फिर इष्ट देव, जैसे कि हमने बात की कृष्ण और राधे की, बातें याद आ जाती है और घर का पूरा माहौल आप जो है अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं। तो निश्चित तौर पर कविताएं हमारी अंतर्धुंध को खत्म करके अंतर्दृष्टि को बढ़ा देता है। तो यही अनुभव आपने किया होगा, इन्हीं अनुभवों के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

0: सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है विशेष मुलाकात। और आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी, जो कि नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ से यहाँ पधारे हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में उन्होंने वर्षों में बहुत मेहनत करी है और जो सेवाएं, जो सुविधाएं जन जन तक पहुँचती है उसके पीछे उनकी क्या मेहनत है। जब रेलवे में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया तो क्या हुआ, कैसी जर्नी रही, आइए उनसे पता करते हैं। और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: आप सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आप कितना समय हो गया आपको रेलवे से जुड़े हुए और आप क्या रोल निभा रहे हैं।
2: जी, मैं शुरू में 1972 से रेलवे विद्युत में कर्मचारी रहा। उसके बाद हमने वहाँ पे, हमारे अधिकारी थे उस समय, 24 वोल्ट का प्रकाश लाइट था। प्रत्येक ट्रेन के अंदर 24 वोल्ट की लाइटिंग होती थी। हम लोगों को बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे, रेलवे बोर्ड से आदेश आते रहे कि आप लोगों को ये काम करना है और 110 में कन्वर्ट करना है। 24 वोल्ट को हम लोगों ने ट्रेन के अंदर लाइटिंग सिस्टम प्लस सारे सिस्टम को 110 में कन्वर्ट किया है। और कन्वर्ट करने के बाद उसमें बहुत मेहनत की है। उसके दौर में सन 86

0: और चने की सब्जी को रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं।
1: हाँ कृष्णा, चने में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो शरीर की थकावट को दूर भगाता है और हमारी त्वचा और बालों को खूब चमकाता है।
2: खूब चमकाता है, मिट्टू भी चने खाता है।
3: शाबाश मीना, तुम्हारी टीम ने दिया बिल्कुल सही जवाब। अब दोनों टीम ध्यान से सुनो, अगला सवाल। उगती हूँ कम ऊंचाई पे, फिर भी गुण है चने समान। रंग अलग है, रूप अलग है, त्वचा भी चमके, मिटे थकान।
1: अगर ये कम ऊंचाई पे उगती है तो ये है, हाँ, सब्जी।
4: आयरन हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करता है। हमें सदैव आयरन से भरपूर खाना खाना चाहिए, जैसे सेब, पालक और ये मैंने टोकरी में से उठाई, पालक। पालक है सही जवाब।
3: शाबाश दीपू। मीना और दीपू दोनों की टीम एक एक सही जवाब देकर बराबरी पर है। अब तीसरा और आखिरी सवाल। गौर से देखो टोकरी में तो पाओगे हम हैं तीन। चना और पालक दोस्त हमारे, सोचो कौन है हम वो तीन।
1: जल्दी सोचो मीना,
5: कौन है चने और पालक के वो तीन दोस्त।
1: जल्दी सोचो दीपू, ये प्रश्न तो बहुत मुश्किल लग रहा है।
4: आयरन हमारे स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। आयरन हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करता है। हमें सदैव आयरन से भरपूर खाना खाना चाहिए, जैसे सेब, पालक और।
6: लो भाई, दीपू तो फिर से पूरा पाठ याद करने लगा। और उधर मीना की टीम में,
1: मीना बहन जी ने कहा है कि वो तीनों पालक और चने के दोस्त हैं। हाँ सुमी, और आयरन ही ऐसी चीज है जो पालक और चने दोनों में पाया जाता है। इसका मतलब वो तीनों आयरन के दोस्त हैं।
5: लेकिन बहन जी की टोकरी में तो अभी भी बहुत सी दालें, सब्जियां और फल पड़े हैं। क्या होगी वो तीन चीजें?
1: मैं समझ गई बहन जी,
4: ऐसा हो ही नहीं सकता मीना। मैंने पूरा पाठ अच्छी तरह याद किया है, उसमें तो कहीं भी चने और पालक के दोस्तों की बात है ही नहीं।
3: दीपू, अगर तुम एक बार फिर ध्यान से सोचो तो तुम्हें भी सही जवाब मिल जाएगा।
2: मिल जाएगा, दीपू हिल जाएगा।
4: बहन जी, मैंने तो पूरा पाठ याद किया था लेकिन।
3: चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आयरन के साथ साथ हमें कुछ विटामिन जरूर लेने चाहिए, याद आया?
4: आयरन के साथ साथ हमें कुछ विटामिन जरूर लेने चाहिए, ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन सी। अगर खाने में आयरन के साथ विटामिन सी भी लिया जाए तो हमारा शरीर आयरन को बेहतर तरीके से सोख पाता है।
1: देखा दीपू, इसका मतलब आयरन का दोस्त हुआ विटामिन सी।
3: शाबाश मीना,
1: मैंने आयरन के वो तीन दोस्त ढूंढ लिए बहन जी।
3: सुमी, तो उठाओ उन तीनों को इस टोकरी में से।
1: ठीक है बहन जी। ये मैंने उठाया आंवला, ये मैंने लिया नींबू, और ये मैंने उठाया अमरूद।
3: शाबाश सुमी, आंवला, नींबू और अमरूद हैं विटामिन सी से भरपूर, इसीलिए जब भी आयरन से भरपूर खाना खाओ तो विटामिन सी खाना जरूर। और इसी के साथ इस खेल में जीती मीना की टीम। बच्चों, अब तो नहीं भूलोगे ना आयरन और विटामिन सी की दोस्ती को?
7: कभी नहीं भूलेंगे।
3: शाबाश
4: बहन जी, आज मैंने एक और बात भी सीखी।
3: वो क्या दीपू?
4: बिना सोचे समझे पाठ याद करना ऐसा है जैसे विटामिन सी के बिना आयरन से भरपूर चीजें खाना।
6: भाई आज तो सचमुच बहुत जरूरी बात पता चली मीना से मिलके। आज से मैं आयरन के साथ साथ विटामिन सी से भरपूर चीजें जरूर खाऊंगा। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
1: आयरन से भरपूर सब्जियां, दालें और फल खाना,
2: लेकिन साथ में विटामिन सी तुम खाना भूल न जाना।
6: भाई वाह, क्या बात है, कविता की कविता और सीख की सीख। चलो इसी बात पे एक प्यारा सा गाना हो जाए।

0: क्या गाना था, मजा आ गया। अब चलते हैं सोचो सोचो। बिल्कुल ठीक कहा, अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़
2: पहेली तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो सुनो पहली कड़ी, लोहे का है शरीर ये मेरा लेकिन पैर रबड़ के, शुरू शुरू में गिराती सबको, सीखो हल्के हल्के।
3: संदूक।
1: वो कैसे मोनू?
3: क्योंकि संदूक लोहे का होता है
1: और संदूक के पैर रबड़ के होते हैं। भूल गए, लोहे का है शरीर ये मेरा लेकिन पैर रबड़ के, शुरू शुरू में गिराती सबको, सीखो हल्के हल्के।
4: दूसरी कड़ी भी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है कृष्णा। बच्चों सुनो दूसरी कड़ी, सर पे मेरे टन टन घंटी जितनी चाहे बजाओ, अगर पहुंचना जल्दी है तो जल्दी पैर चलाओ।
3: ये पहेली तो बहुत मुश्किल है बहन जी, भला किसी के सर पे घंटी हो सकती है?
1: दीपू यही तो मजा है पहेली का। सोचो सोचो, लोहे का है शरीर ये मेरा लेकिन पैर रबड़ के, शुरू शुरू में गिराती सबको, सीखो हल्के हल्के, सर पे मेरे टन टन घंटी जितनी चाहे बजाओ, अगर पहुंचना जल्दी है तो जल्दी पैर चलाओ।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है साइकिल।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
5: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन संदीप त्रिवेदी विथ लेसन नंबर 7 विच इज द लेडी और द टाइगर। एंड वी आर स्टडिंग these days question answers, and today I am going to start the question answers from the lesson number 7. So the name of the book is Golden Race for class 10th. So students, Rajasthan Madhyamik Shiksha Board ki 10th class ka 7th lesson jo hai uska hum log record karenge. Question answers aur activity 1 mein C एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द किंग डिफरेंट फ्रॉम हिज नेबर्स। तो क्वेश्चन को हम लोग हमेशा की तरह बुक में से ही ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप जब खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ्स में हम देखते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु वाज क्रूड एंड वेरी मच लाइक अ सेवेज। ही हैड लर्नड सम मैनर्स फ्रॉम हिज लैटिन नेबर्स, बट मोस्टली ही वाज बारबेरिक लाउड एंड ग्रफ। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश of his neighbors. He was a man of great fancies and even greater enthusiasm, because he had so much authority as a king. He was able to force some of these fancies into reality, or at least he tried to. इसमें हमें नेबर्स को लेकर के काफ़ी सारी बातें मिली इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही। तो जाहिर सी बात है हमारा जो आंसर है वो इस फर्स्ट पैराग्राफ में से ही होगा। अब एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे और उसके बाद में हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज द किंग डिफरेंट। द किंग वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज नेबर्स बिकॉज, ठीक है, Because he had learned some manners from his Latin neighbors, but mostly he was barbaric, loud and gruff. He had, फिर आगे ये भी लिख सकते हो, he had none of the grace and polish of his neighbors. Yes, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग हैप्पी व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग। वेरी इजी क्वेश्चन, जब चीजें गलत हो जाती थी तो राजा खुश क्यों होता था। तो देखिए, व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग द किंग वाज हैप्पी बिकॉज, क्योंकि व्हाई से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसका आंसर होगा बिकॉज से। तो सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं, हिज पर्सनैलिटी वाज नॉर्मली काम व्हेन एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। व्हेन देयर वाज अ लिटिल हिच, हाउएवर, ही वाज एक्सल्टेंट एंड हैप्पी। ही लव्ड इट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग बिकॉज, सीधा सीधा आंसर मिल गया, बिकॉज दैट मीन्स दैट ही कुड देन करेक्ट देम। ही लव्ड टू मेक द crooked straight, to crush down the uneven places in life. Okay? तो ये second question का answer हो गया, सीधा सीधा answer यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत easy. Third question अब हम देखते हैं। Third question में लिखा हुआ है, how did the king use the arena? Okay. Arena की बात कहाँ पर आई, अब हमें वो देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ है, तो हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली आंसर को देखेंगे. क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग यूज द अरेना? तो द किंग यूज द अरेना. द अरेना दैट ही बिल्ट वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लेडिएटर्स. इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट्स टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश. इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हेटिक्स टू द लायंस. इट वॉज ही बिलीव्ड फॉर द पर्पज ऑफ widening and developing the mental energies of his people. It was a vast amphitheater with encircling galleries, mysterious vaults and unseen passages. It was to be a means for poetic justice. It was to be a place where crime was punished or virtue rewarded. All by chance. ये पूरा आंसर हो गया. ये कुल मिलाकर के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, इफ द अक्यूज चूज द डोर विद द टाइगर व्हाट हैपेंड? पहला क्वेश्चन. दूसरा इसमें, हाउ डिड द पीपल रिएक्ट? ओके, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा एक साथ ही. ओके, देखिए सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है यहाँ पे. फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पैराग्राफ शुरू होता है, इफ द अक्यूज्ड ओपन्ड वन डोर अ हंग्री टाइगर केम आउट. इट वॉज द फियर्सेस्ट एंड मोस्ट क्रूएल दैट कुड बी फाउंड एंड इट इमिजिएटली जम्प्ड ऑन हिम एंड टोर हिम टू पीसेस एज अ punishment for his guilt. When the fate of the criminal was thus decided, sad iron bells were rung and great wails went up from the hired mounds who were posted outside the arena. The audience went home with bowed heads and doleful hearts, sad that one so young and fair or so old and respected should have merited such a fate. तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया. पूरा का पूरा ही पैराग्राफ दिया हुआ है. फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इफ द अक्यूज्ड चूज द डोर विद द लेडी व्हाट हैपेंड? और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल रिएक्ट? तो दोनों का आंसर हम एक साथ ले लेते हैं. पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इफ द अक्यूज्ड ओपन्ड, यहां पर लिखा हुआ है, इफ ही ओपन्ड द अदर डोर अ लेडी केम आउट, ठीक है. The king always choose the ladies himself. He made sure that each was of the same age and station as the accused and that she was beautiful. The rule was that the accused was to marry her immediately. It did not matter if he were already married and had a family. The lady was a sign of his innocence. So, if the accused already loved another, that other was to be forgotten. It was the king's way. He allowed nothing to interfere with his decision. Indeed, immediately after the lady appeared, another door beneath the king opened and out came a priest, musicians, singers and a troupe of dancers. In a procession, they all cheerfully marched and sang for the couple standing in the middle of the arena. The bells rang. The audience shouted. Yahan se answer the audience wale question ka. The audience shouted its approval and the innocent man preceded by children strewing flowers in the couple's path led his new bride to his home. तो ये हमारा जो सी सेक्शन था उसके क्वेश्चंस पूरे हुए. अब हम यहाँ

पर देखते हैं कि डी में क्या है। डी में भी क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको खुद करना है। ओके देखिए, डी में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। वन, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ प्रिंसेस। पहला क्वेश्चन है प्रिंसेस का कैरेक्टर, प्रिंसेस कैसी थी, कौन सी थी, सारा दिया हुआ है इसमें, पैराग्राफ पूरा। अपने पिताजी की तरह ही वो भी सेमी बार्बरिक थी, ये सब। नंबर दो, व्हाई वाज द ऑडियंस सरप्राइज्ड व्हेन द यंग मैन एंटर्ड द अरीना। जब वो राजकुमार, वो जो युवक राजकुमारी से जो प्रेम करता था, वो जब आया अरीना में तो आश्चर्यचकित क्यों रह गए। तीसरा, व्हाट हैड द प्रिंसेस डिस्कवर्ड अबाउट द डोर्स। ये राजकुमारी को दरवाजों के बारे में क्या पता चल गया था। चौथा, व्हाट डिड द प्रिंसेस फील व्हेन शी इमेजिन्ड हर लवर ओपनिंग द डोर दैट हाइड द टाइगर। बाघ वाला दरवाजा वो खोलेगा तो क्या होगा। राजकुमारी ने जब ये सोचा तो क्या हो, कैसा सोचा, क्या हुआ उसको। व्हाट डिड शी फील व्हेन शी इमेजिन्ड। और ये वही मिलता जुलता क्वेश्चन कि जब लेडी निकलेगी तब क्या होगा। तो दोनों ही परिस्थितियां आपको बताई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर दैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक, टू ड्रामेटिक, एक्सप्लेन। ये क्या है इस पंक्ति का मीनिंग। सेवन, हाउ कुड द प्रिंसेस फाइंड द सीक्रेट ऑफ द डोर्स। कैसे पता चला उसको। आठवा, सीक्रेट कैसे पता चला। सातवें में ना, आठवें में है, कमेंट ऑन द किंग्स मेथड ऑफ डीलिंग आउट जस्टिस। वो तो शुरू में ही दिया हुआ, पार्ट वन में न्याय का तरीका क्या था। और नाइन्थ है, व्हाट डू यू थिंक केम आउट ऑफ द ओपन्ड डोर द डे लेडी और द टाइगर। गिव रीजंस, और कारण भी बताना है। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डीपर मैसेज हैज बीन कम्युनिकेटेड टू अस इन द स्टोरी। इसमें संदेश क्या दिया गया है। एक्टिविटी टू है वोकैबुलरी। वोकेबलरी में देखते हैं, ए में है, फाइंड फ्रॉम द लेसन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन इन ब्रैकेट्स। द इनिशियल लेटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज हिंट्स। वन वर्ड देखने हैं जरा हमें एक्सरसाइज वन में, और वो भी खासकर लेसन में ही जो आया है उन्हीं में से देखते हैं। द किंग वॉज अनसिविलाइज्ड एंड मच लाइक अ प्रिमिटिव मैन। एस, तो एस से सेवेज हो सकता है, सेमी बारबरिक भी हो सकता है। टू, सेकेंड क्वेश्चन है, इन एंशंट रोम द खाली जगह वर फोर्स्ड फॉर द ब्लडी फाइट्स, दोज हु फोट विद स्वॉर्ड्स, ग्लेडिएटर्स। जी से आया है तो ग्लेडिएटर्स, तलवारबाज, तलवार से लड़ने वाले। ओके तीसरा क्वेश्चन है, द फेट ऑफ क्रिमिनल्स वॉज डिसाइडेड इन द, ए से आया है तो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है, मैं ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बता देता हूँ, अनरूफ्ड अरीना फॉर फाइट्स। तो अरीना ही इसका आंसर है। ओके फोर्थ क्वेश्चन, द प्रिंसेस वॉज एज खाली जगह एज हर फादर पार्टली सिविलाइज्ड एंड पार्टली रूड। यह है सेमी बार्बरिक। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रेट व्हेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मोर्न्स MORNS रोने वाले हु वर पोस्टेड आउटसाइड द अरीना। पर्सन्स ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखिए इसका वन वर्ड क्या होगा, पर्सन्स एक्सप्रेस सोरो बाई वीपिंग, तो मोर्न्स। बी में भी एक एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखिए हंगरी है, ग्लोरी, अरीना, जजमेंट, ट्रेडिशंस, हेटेड। तो क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, इन द पब्लिक अरीना आ जाएगा, ह्यूमंस एंड बीस्ट्स परफॉर्म्ड बिफोर ऑडियंसेस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम द गेट अ
हंगरी, ठीक है, फ्रॉम द गेट अ हंगरी टाइगर वुड कम आउट एंड किल द अक्यूज्ड। तीसरा क्वेश्चन है द अरीना बिल्ट बाय द किंग वाज नॉट फॉर द ग्लोरी ऑफ ग्लेडिएटर्स। ग्लोरी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्लोरी भी था उनके। पांच, चौथा क्वेश्चन है द किंग न्यू नो फ्रॉम अदर्स किंगडम्स नो ट्रेडिशंस, ठीक है, ट्रेडिशंस। और फिफ्थ क्वेश्चन है देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स अरीना। ओके, तो ये हो गया सारा। सी में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जो वर्ब्स दी हुई उनमें से नाउन बनानी है। एट लास्ट द प्रिंसेस टुक खाली जगह टू डील विद द सिचुएशन। तो डिसाइड है तो डिसीजन, ठीक है, क्या आएगा, डिसीजन। डिसाइड होता है निर्णय करना, निश्चय करना, उससे हो जाएगा डिसीजन। दूसरा क्वेश्चन है द खाली जगह वुड गो एज प्लैंड ट्राई ट्रायल। ट्राई से क्या बन जाएगा, ट्रायल, वाई हट जाएगा, आई ए एल, ट्राई होता है ना कोशिश करना, और ट्रायल मुकदमा, टी आर वाई होती है स्पेलिंग, तो वाई हट के आई ए एल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है द टाइगर टोर द अक्यूज्ड टू पीसेस एज खाली जगह फॉर हिज गिल्ट पनिशमेंट, पनिश से बन जाएगा पनिशमेंट। चौथा द किंग अलाउड नो खाली जगह विद हिज डिसीजन इंटरफियर इंटरफेरेंस। पांचवा है द बेल्स रैंग एंड द ऑडियंस शाउटेड इट्स खाली जगह अप्रूवल, अप्रूवल ए डबल पी आर ओ वी ई अप्रूव है तो इसका हो जाएगा नाउन अप्रूवल। ये आपको पता होना चाहिए वर्ब से नाउन कैसे बनता है। नाउ एक्टिविटी थ्री विच इज ग्रामर, और ग्रामर में क्या है, ओके, यहाँ पे कुछ रिवीजन जैसा है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों का ही इसमें मेल है। लेसन वन से फोर तक जो हमने पढ़ा है उसी को ही यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो आई थिंक देखते हैं अभी एक बार, तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बाकी तो कल ही करेंगे। हालांकि देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्टिविटी थ्री ग्रामर में, इन द लेसन्स वन टू फोर यू स्टडीड अबाउट टेंसेस फॉर्मेशन एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, टेंस भी पढ़े एक्टिव वॉइस। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें कुछ वर्ब्स हैं उनको हम देखिए बनाते हैं।

0: टेरिफाई, बट द टेरिफाइड हो जाएगा, टी ई आर आई टी ई आर टी ई डबल आर आई एफ वाई, टेरिफाई है, आई वाई हटके आई ई डी हो जाएगा. टेरिफाइड पीपल हैड नो करेज टू स्पीक, ये सब स्पीक वर्ब है, अगेंस्ट हिम. द लाइफ ऑफ द अक्यूज्ड एब्सोल्यूटली डिपेंडेंट ऑन द ट्रिक ऑफ फेट. पीपल न्यू वेल दैट इफ दे इंटरफेयर्ड दे मेट द सेम फेट एज द कॉमन क्रिमिनल्स, सो दे चोज टू कीप साइलेंट. ये था इसका, ठीक है. तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें भी इसी तरीके से पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना है. तो ये मुझे लगता है कि इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा. और ग्रामर पोर्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें देखते हैं. द प्रिंसेस वॉज ब्यूटिफुल एंड एक्सट्रीमली लाइक्ड बाय हर फादर. ओके, वन डे द किंग डिस्कवर्ड दैट, ठीक है, ऐसा ही है, इजीली हो जाएगा. थर्ड में है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ चूजिंग नाउन्स एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स. देखते हैं, डिसीजंस, नॉलेज, फरी अरेना, ब्रूटिश, जजमेंट, डिस्टेंस, सेवेज, विम्सिकल, ओके, स्ट्रोक और फेरोशियस, एडवाइजर, ग्लैमर और ग्रेस. चलिए तो आज के लिए इतना ही. ये लेसन भी पूरा हुआ हमारा. अब कल नेक्स्ट लेसन करेंगे हम, विच इज लेसन नंबर 8. थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट.
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे. कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर. 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण.
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: अरे राजू भाई दो चाय लाना। अरे छोटू दो चाय देना भैया को।
6: हाँ सब हेलो भैया।
5: ये क्या तूने मेरे शर्ट पे चाय गिरा दी?
6: गलती होगी भैया, माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा भैया।
5: क्या छोटू तू हर टाइम ऐसा करते रहता है, कितने बार समझाएगा सही से चाय दिया कर।
6: नहीं सब वो इस बार हाथ फिसल गया साहब।
5: हर टाइम हाथ फिसल जाता है?
6: नहीं साहब।
5: ठीक है अगली बार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना?
6: हाँ सब।
7: क्या यार मेरी जिंदगी भी कैसी है, काश मेरे भी पापा पैसे वाले होते, मैं भी औरों बच्चों की तरह स्कूल जाता, पढ़ाई करता, मैं भी खेलता, काश ऐसा होता।
8: क्या बात है सैंडी, आकाश, पंकज, भुवना, आज तुम लोग बड़े उदास लग रहे हो।
9: दीदी आपको पता है आज हमने एक टी शॉप में देखा कि एक बच्चा काम कर रहा है।
8: एक बच्चे को काम करते देखा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना?
10: हाँ, और वो दुकान वाले भैया उसे डांट भी रहे थे।
8: क्या देखा आज आपने, चलो भुवना बताओ।
9: दीदी हमें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था और उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो काम कर रहा है और वो काम कर रहा है लेकिन बाय मिस्टेक वो फिसल गया उनके हाथ से। फिर भी वो ओनर इतना डांटा, बहुत बुरा लग गया होगा।
8: आप ही के उम्र के बच्चे जो काम करते हैं कोई चाय की दुकान पर या कहीं भी, उसे पता है क्या कहते हैं?
10: चाइल्ड लेबर,
11: बाल श्रम।
8: हाँ उसे बाल श्रम या चाइल्ड लेबर कहते हैं। बच्चों की जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, कई बार पारिवारिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो काम करने पर विवश हो जाते हैं। तो बच्चों चलो आज हम चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के बारे में ही बात करेंगे।
9: ठीक है
10: दीदी।
8: तो आकाश आप बताओ चाइल्ड लेबर से आप क्या समझते हो?
6: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे उन बच्चों के मम्मी डैडी को ये सब काम नहीं करवाना चाहिए। ये उम्र उनकी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है। हाथ में आने वाले पेन की जगह वो चाय की कटोरियाँ पकड़ा देते हैं, पीठ में लदे हुए बैग की जगह वो बोरियाँ पकड़ा देते हैं। ये बहुत गलत बात है।
8: बात तो आपने बहुत सही कही। और सैंडी आप बताओ।
10: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड लेबर एक जुर्म है, और जो लोग 14 वर्ष से कम उम्र में बच्चों को अपने दुकान पर रखते हैं या करवाते हैं, अगर चाइल्ड लेबर हमारे भारत में विश्व में कहीं भी फैलता गया तो हमारे देश का हमारे विश्व का क्या होगा? बच्चों को शिक्षा मिलेगी नहीं तो हमारा देश हमारा विश्व हर चीज़ में पीछे हो जाएगा। तो ये चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए
8: क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं।
10: हाँ दीदी।
8: और अगर वो ही नहीं पढ़े लिखेंगे तो फिर हमारे भारत का भविष्य क्या होगा?
10: ये हमारी नींव कमजोर होगी तो फिर कैसे होगा?
8: बिल्कुल सही सैंडी। और भुवना आप क्या कहना चाहते हो?
9: अब हमारी इंडिया, सब देशों ने डेवलप्ड कंट्रीज है लेकिन हमारी इंडिया डेवलपिंग, स्टिल डेवलपिंग। इस बात का एक वन रीजन है चाइल्ड लेबर। ऐसा बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, और इस चाइल्ड लेबर को हम स्टॉप करना चाहिए। एक क्राइम है ये, सिर्फ इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इसको स्टॉप करना चाहिए और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ वाइटल स्टेप्स लेना चाहिए।
8: बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट कुछ काम इस पर कर भी रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हो पंकज?
5: चाइल्ड लेबर को देख के मुझे ऐसा लगता है हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता। आजकल छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है, लेकिन वो किसी कारण होटलों में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में अपनी पीठ पे बोरियां लाद रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा, जैसे कि दूसरे देश अपने डेवलप्ड होकर, और भविष्य में हम देखेंगे कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और हमारा देश धरती पे ही रह जाएगा।
8: बात तो आपने पंकज बिल्कुल सही कही। हम आगे तभी बढ़ते हैं जब देश का भविष्य यानी बच्चे सुरक्षित हो, देश के साथ साथ उनका भविष्य भी हम बाल श्रम द्वारा बिगाड़ देते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अक्सर बाहर जाते हो, कभी घूमने के लिए, कभी किसी काम से, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए या कोई काम करते हुए देखा है? और देखा है तो तुम्हें कैसा लगा है?
10: हाँ दीदी, मैंने बहुत बार देखा। कभी कभी हम लोग कहीं बाहर जाते घूमने के लिए, किसी होटल पे गए तो वहाँ कोई बच्चा कोई चाय लेके आ रहा है तो कुछ नाश्ता लेके आ रहा है, ऐसे कुछ काम करते हैं, और ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मुझसे भी छोटे होते हैं। जिनको खेलने कूदने की उम्र होती है, जिनको अपनी मम्मी पापा से प्यार मिलना चाहिए, वो होटलों पे काम करते हैं, और ये मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे साथ देते हैं, और ये बात देखकर मुझे रोना भी आता है, थोड़ी खुशी भी होती है, पर खुशी तो उतनी नहीं होती है, रोना बहुत आता है क्योंकि जो बच्चे इनके छोटे छोटे हाथ हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं।
8: बात तो आपने सही कही, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहुत बड़े बड़े काम करने पर विवश हो जाते हैं, लेकिन उनके घर के जो पारिवारिक कंडीशंस हैं वो इस प्रकार की नहीं होती जैसी हमें मिली है। और जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में हम कितने लकी हैं कि हमारे परिवार से ऐसी कोई कंडीशन नहीं, कि हमें सब कुछ मिला और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर सभी हमारी तरह लकी नहीं होते। हाँ आकाश बताओ।
6: हाँ दीदी, मैं जब छोटा था तब मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पोखराज है। वो बचपन में मेरे साथ खेलता था, वो सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पहले तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया, फिर वो अब वो 14 साल का है और हमारे पड़ोस की दुकान में ही वो काम कर रहा है। उसको देख के बहुत बुरा लगता है। उसकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक लम्हा लारी पे सब्जी बेचती है और उसके पापा उन्हीं पैसों से ना घर चलने देते, सिर्फ अपने ही खुशियों के लिए पैसे खरीदते हैं।
10: हाँ दीदी, जैसे आकाश ने बताया, ऐसे ही मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, उनकी मम्मी तो चलो ठीक है, और उनके पापा शायद नशा वशा करते हैं, और बच्चे टैलेंट बहुत है उनमें, उनकी कैचे बच्चा है, अगर कुछ समझाए तो जल्दी समझ जाते, वो पढ़ना चाहते पर पापा उनके काम करने के लिए फोर्स करते, तो वो कचड़े बीनते और ये सब करते, और वो स्कूल तो जाना जाते हैं, पर मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं कभी कभी मेरी कोई पुरानी बुक्स, मेरी जो चीज़ होती है और कुछ दे देता हूँ उनको, तो वो थोड़ा वो अच्छा लगता है।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी, क्योंकि अगर हम अपना छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए तो उन बच्चों को कितना अच्छा महसूस होता है।
10: हाँ दीदी,
8: है ना। बुबना, कभी आपने ऐसा कुछ देखा है?
9: दीदी, हमारी घर में रोज एवरी संडे या सैटरडे जीएचएमसी लोग आते हैं डस्टबिन्स लेने के लिए, तो जब वो आते हैं उनके साथ उनके बच्चे भी, वो ड्राइनेज में बैठते हैं, वही रहते हैं, लेकिन वो खुशी से करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको ज्ञान भी नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि उन लोगों को ये सब हमें कुछ मैसेज देना है कि नॉलेज देना कि ये कर सकते हैं, और उनको ये एज नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास की होगी वो बच्ची, और उनको काम करवा रहे डस्टबिन्स को ले।
8: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, भले उन्हें अभी खुशी है, वो खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें उनके लिए पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, और कई बार ये बात बतानी उन्हें बहुत जरूरी होती है। पंकज, कभी आपने ऐसा कुछ देखा?
5: हाँ दीदी, मैंने भी देखा है। हमारे स्कूल के पीछे छोटे छोटे बच्चों को पीठ पे बोरियां लादकर और प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए या कांच की बोतलें बीनते हुए, मतलब वो प्लास्टिक की बोरियों में भंगार इकट्ठे करते हैं और उसे बेच के दो चार पैसे कमाते हैं, लेकिन वो पैसे जो कमाते हैं वो उनके भी यूज़ में नहीं आते, उनके मम्मी पापा उनसे पैसे ले लेते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं।
8: उनके मम्मी पापा उनसे वो पैसे भी ले लेते हैं जो वो मेहनत करके कमाते हैं।
5: हाँ दीदी,
8: बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मेरे ख्याल से हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसी चीजें होते हुए देखी हैं।
10: हाँ दीदी।
8: और हमें बहुत बुरा भी लगता है। हम बच्चे और क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन पर बच्चों की दुनिया सुनते रहिए।

चांद से फूलों को, शोलों से समाए उनको, छोटे से नन्हे से फूलों

0: रेडियो मधुबन पर हम वापस आ गए हैं लेकर बच्चों की दुनिया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। सैंडी, आप आज सुबह क्रिकेट खेलने गए तो आपने क्या देखा?
1: दीदी, मैंने देखा कि दो बच्चे थे जो बहुत छोटे थे, और मैं बैट और बॉल लेके जा रहा था तो बोल रहे थे भैया मुझे कुछ रुपये दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उन्हें देखकर मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा, और मैंने, मेरे जेब में जूते भी थे, 20-30 रुपये उन्हें दे दिया।
0: हमें बुरा तो लगता है जब कोई ऐसे, स्पेशली जब कोई बच्चा आके हमसे ऐसा कुछ कहता है। तो ऐसे में एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि अगर किसी को भूख लगी है या कोई ऐसा हमारे सामने आता है और हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ खरीद कर या कुछ ला कर उसको दे दें। क्योंकि कभी कभी हमारे दिए हुए पैसे वो ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे या फिर कोई उनसे ले भी सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आए तो आप कुछ ला कर, जिससे उनकी जो भूख है वो शांत हो सके, ऐसा कुछ ला कर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है सैंडी?
1: ओके दीदी।
0: और वैसे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं,

0: अब आप लोग ये बताओ, जब आप लोग देखते हो आपको बुरा तो लगता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप अपनी तरफ से उनके लिए कर सकते हो? भुवना,
1: पहले हम उनके माँ बाप को इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप के कहने से बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो हम उन माँ बाप को इंस्पायर करना कि आपके बच्चा ये कर सकता है, तो वो बच्चे को ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो बच्चा है ना। जब हम इंस्पायर करेंगे, बुक्स देंगे, वो अच्छे से पढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप की फोर्स की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। तो जब हम उनके इंटरेस्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, माँ बाप काम करेंगे और पढ़ेंगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
0: बात तो आपकी बिल्कुल सही है। स्पेशली जो हमारे आसपास के लोग काम करने आते हैं हमारे घर पे, या जैसे भुवना आपने बताया कि कूड़ा बीनने, या फिर ऐसा कुछ है जिनके माँ बाप हमारे घर पे काम करते हैं, आसपास आते हैं, तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, है ना? और आकाश, आप क्या सोचते हो?
2: दीदी, मेरा ये मानना है कि उनके मम्मी पापा को हमें बताना तो चाहिए, लेकिन मैंने भी कई बार कोशिश करी है, लेकिन उनके दिल से चाह नहीं होती कि हमारे बच्चों को भेजे। वो कहते ही हैं, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, बड़े होके कमाना ही तो है, वो भेज देते हैं, अभी से कमाएगा तो बड़े होके और पैसे लाएगा। ये बात उनके दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो उसी जगह पे स्थित हो जाते हैं।
0: मतलब हम समझाते हैं तब भी वो नहीं समझ पाते उस बात को। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो हमारी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें और एक चेंज भी हम ला पाएं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
3: हाँ दीदी,
0: है ना? तो इसलिए हमें कोशिश आकाश जरूर करते रहनी चाहिए।
2: हाँ दीदी,
0: है ना? और सैंडी, आप क्या सोचते हो?
3: दीदी, ऐसा आकाश ने और भुवना ने बताया कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, ये बात तो सही है, पर मैं तो जहाँ तक होता है समझाता ही हूँ कि मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ। फिर एक बच्चे को मैंने बोला भी था तो बोलते कि मम्मी पापा ना बोलते, तो मैंने उन्हें बोला भी था, उनके मम्मी पापा को मैंने समझाया था, तो उन्होंने मुझे डांट भी दिया था कि तुम अपना काम करो, हमारे फैमिली से तुम्हें क्या मतलब। तो मुझे बुरा नहीं लगा, पर मेरी अभी भी कोशिश जारी है। मैं होता तो समझा देता हूँ, और मेरे पास जो भी कुछ होता है कि हाँ कुछ बुक्स हुआ कुछ हुआ, अगर उनको अच्छा लगे तो मैं दे देता हूँ, मेरी कोशिश अभी भी जारी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो होता है, अगर उन चीज़ों से भी हम उनकी मदद कर पाएं तो उनको अच्छा भी लगता है, और थोड़ा बहुत तो उनकी मदद हम कर ही सकते हैं, है ना? तो ये सैंडी बहुत अच्छी बात है। पंकज, आप बताओ।
4: दीदी, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन उनमें इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, हमारे जैसा बनने की। वो भी सोचते हैं कि हम इनकी तरह बन सकते हैं, इनकी तरह हमारी लाइफ हो सकती है, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ लिख के हम अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी बना सकते हैं या खुद की भी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए, जैसे कि अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो उनको अपने पुराने बुक्स दे सकते हैं, उन्हें जाकर उन बुक्स के बारे में, या अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उनके लिए कुछ टाइम निकाल कर उन्हें कुछ बता सकते हैं कि पढ़ाई क्या होती है और पढ़ाई का महत्व क्या होता है।
0: अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल पाएं तो हम जाके उन्हें कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक पढ़ना लिखना तो सिखा ही सकते हैं, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो हिसाब किताब सीख पाएं, और थोड़ा लिखना पढ़ना सीखने से कोई उनके साथ बेमानी या गलत भी ना कर पाए।
4: हाँ दीदी।
0: भुवना, आप बताओ।
1: आजकल स्कूल्स में इतनी सुविधाएं हैं कि बहुत सारे पैसे उनमें ही यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा पैसे भी बहुत सारे अननेसेसरी थिंग्स पे यूज कर रहे हैं। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स हम कुछ खाना, एक एक हमने क्या किया इस बार स्कूल पे, मेरे हमारे स्कूल में एक एक क्लास एक एक थिंग ऑर्फनेज के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए, जैसे 4th क्लास लोग और छोटे छोटे बच्चे के लिए डायपर्स लेकर आए, एटलीस्ट 3-3 डायपर्स, फुल क्लास 3-3 डायपर्स, तो ठीक है, तो हम फ्रूट्स देंगे। पर दीदी, हम कभी भी पैसे नहीं देना चाहिए, कुछ ये देना चाहिए ताकि वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम क्लोथ्स दे सकते हैं, डायपर्स, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर्स चाहिए, वो खरीद नहीं सकते। इसके बारे में हम स्कूल्स को भी ये कर सकते हैं, और हम घर में भी थोड़ी थोड़ी हमारी पुरानी बुक्स होते हैं, पुराने कपड़े, वो सब लोगों आते हैं, उनको इंस्पायर करना चाहिए कि ये देखो इतना अच्छा बुक है, तुम पढ़ो तो पढ़ लिख सकते हो, फ्यूचर में तुम ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, ऐसा करेंगे तो वो सच में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, और हमारे देश में कभी चाइल्ड लेबर नहीं होगा ये कंटिन्यू होगा तो।
0: ये तो आपके स्कूल का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आपने भी बहुत अच्छी बात सोची कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उनके लिए करें तो उनकी बहुत मदद हो सकती है। आकाश,
2: दीदी, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, हमारा एक डोनेशन बॉक्स होता है जो हम हर ईयर पे खोलते हैं। मतलब जैसे इस महीने की हमारी, हमको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कम 10 रुपया भी बच जाता है तो हम उस डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं। और ऐसे करके हमारी 1 ईयर में डोनेशन बॉक्स जब फुल हो जाता है तब हम न्यू ईयर पे सब बच्चों को चिप्स बांटते हैं, कुरकुरेस बांटते हैं, उनके खाने की चीज़ें देते हैं। कम से कम हमारे पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो आराम से खा पी सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, हमें पॉकेट मनी मिलती है उसको भी अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सेव करें और जैसा कि सब लोग मिलकर करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम अलग से भी अगर कुछ करें तो भी हम इस प्रकार से उनकी छोटी बड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। ऐसा ही एक इनिशिएटिव रेडियो मधुबन के यूथ जंक्शन के आरजे विनोद और उषा जी ने मिलके रेडियो मधुबन के बिहाफ से किया। उन्होंने जाकर जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, उन बच्चों को इकट्ठा किया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की और करीबन 20 बच्चों को रेगुलर रोज जाकर पढ़ाया, उनका एडमिशन पास के स्कूल में कराया ताकि वो बच्चे पढ़ भी सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। इससे और कुछ मिले ना मिले, उन बच्चों की कितनी सारी दुआएं भी हमें मिलती हैं, है ना?
5: हाँ दीदी।
0: तो आप लोगों के पास ये जितने भी आइडियाज हैं, इनको आप एक्शन में ला सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। हमेशा कभी भूलना नहीं इस चीज को, जो आपकी भावनाएं हैं उन्हें बना कर रखना। और कभी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको कुछ बड़ा करना चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल में अपने टीचर से और बड़े लोग जो हैं उनसे अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो ताकि कुछ करने की आपको भी मदद मिल पाए और उनके पास भी आपके सजेशंस पहुंच पाए। ठीक है बच्चों?
5: हाँ दीदी।
0: तो अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी विषय पर। आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि नामक पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देना।
1: स्वभाव से ही मानव मन अति चंचल है, वो एक क्षण भी किसी वस्तु पर ठहर नहीं सकता। इस मन की चंचलता को नष्ट कर उसे किस प्रकार अपने काबू में लाना, किस प्रकार उसकी इधर उधर बिखरी हुई शक्तियों को समेट कर सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर देना, यही राजयोग का विषय है।
0: गीता में श्री कृष्ण ने कहा है,
2: जो किसी से घृणा नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो सबके प्रति करुणा संपन्न है, जिसका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट है, जो सर्वदा योग युक्त यतात्मा और दृढ़ निश्चय वाला है, जिसका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित हो गई है, वही मेरा प्रिय भक्त है, जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, जिसने अतिरिक्त हर्ष दुख भय और उद्वेग त्याग दिया है, ऐसा भक्त ही मेरा प्रिय है। जो किसी का भरोसा नहीं करता, जो शुचि और दक्ष है, सुख और दुख में उदासीन है, जिसका दुख चला गया है, जो निंदा और स्तुति में समभावापन है, मौनी है, जो कुछ पाता है उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका

0: कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं।
1: गीता के इसी वचन को स्वामी विवेकानंद ने एक कहानी के माध्यम से कहा।
2: नारद नामक एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन वन से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहां जा रही हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं बैकुंठ जा रहा हूं। तब उसने कहा, अच्छा आप भगवान से पूछते आए, वे मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा। फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वो कूद फांद रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति का कंठ स्वर, चाल ढाल आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने उसे भी पहले के समान उत्तर दिया। वो बोला, अच्छा तो भगवान से पूछते आए, मैं कब मुक्त होऊंगा। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हां पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा मुझको पाने के लिए उसे और चार जन्म लगेंगे। तब तो वो योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और चार जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हां भगवान ने कहा है उसके सामने जो इमली का पेड़ है उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार इसको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब एक देववाणी हुई, मेरे बच्चे तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे।
3: वो दूसरा व्यक्ति इतना अध्यव्यवसाय संपन्न था, इसलिए उसे वो पुरस्कार मिला। वो इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था, कुछ भी उसे उद्योग शून्य न कर सका। परंतु वो प्रथमोक्त व्यक्ति चार जन्मों की ही बात सुनकर घबरा गया। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए सैकड़ों युग तक बाट जोहने को तैयार था, उसके समान अध्य व्यवसाय संपन्न होने पर ही उच्चतम फल प्राप्त होता है।
1: स्वामी जी राजयोग को समझाते हुए कहते हैं,
2: योग से ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान योगी की मुक्ति के पथ का सहायक है। जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान है, ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होता है। जो लोग प्रतिदिन एक बार, दो बार, तीन बार या सारे समय महायोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए। योग दो प्रकार के हैं, जैसे अभाव योग और महायोग। जब शून्य तथा सब प्रकार के गुण से रहित रूप से अपना चिंतन किया जाता है, तब उसे अभाव योग कहते हैं। और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंद पूर्ण, पवित्र और ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है, उसे महायोग कहते हैं। योगी इनमें से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। हम दूसरे जिन योगों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं, वे सब योग इस उत्तम महायोग, जिसमें योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं, के साथ एक श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते। ये सारे योगों में श्रेष्ठ है।
3: इसके बाद स्वामी जी समझाते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। उन्होंने कहा,
2: आप इस बात को ध्यान में रखिए कि धर्म न बातों में है, न सिद्धांतों में और न पुस्तकों में है। वो है प्रत्यक्ष अनुभव में। वो शिक्षा नहीं है, आचरण है। वो सीखना नहीं है, होना है। चोरी मत करो, इसे सब जानते हैं, पर इससे क्या? इसे तो यथार्थ में उसी ने जाना जिसने चोरी नहीं की। दूसरे को हानि मत पहुंचाओ, यह बात हर एक को मालूम है, पर इसके क्या लाभ? जिन्होंने दूसरों को हानि नहीं पहुंचाई, उन्हीं ने इस वाक्य का अनुभव किया, उन्हीं ने उसे जाना और उस सिद्धांत पर अपने चरित्र का निर्माण किया। अतः हमें अपने धर्म का अनुभव करना है। धर्म का यह अनुभव एक लंबी क्रिया है। जब लोग किसी उच्च अद्भुत विषय के संबंध में सुनते हैं, तब वे यही समझने लगते हैं कि वे उसे एकदम प्राप्त कर लेंगे। क्षण भर भी वे ये नहीं विचारते कि उसकी प्राप्ति की जाए, उन्हें उसका रास्ता तय करना पड़ेगा। वे तो वहां एकदम कूद कर पहुंच जाना चाहते हैं। यदि वो स्थान अत्यंत उच्च है तो भी हम वहां पहुंच जाना चाहते हैं। हम ये सोचने के लिए कभी नहीं रुकते कि हम में उतनी शक्ति है या नहीं। नतीजा ये होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। आप किसी मनुष्य को जबरदस्ती उठाकर ऊपर नहीं ढकेल सकते। हम सबको क्रमशः प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। अतः धर्म का यह पहला भाग वैधि भक्ति उपासना की निचली श्रेणी है।
1: हमारी कल्पना शक्ति सीमित है। उस सीमित कल्पना के द्वारा हम असीम यानी ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा,
2: आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप कहते हैं कि परमेश्वर है और वो सर्वव्यापी व्यक्ति है, परंतु सर्वव्यापित्व के संबंध में आपकी क्या कल्पना है? उत्तर देते समय आप केवल अपनी आंखें मूंद लेते हैं और मुझे बताते हैं कि वो सर्वव्यापी किस तरह का है। आप क्या पाते हैं? या तो आप समुद्र का विचार कर रहे हैं, या नीले आकाश का, या किसी मैदान के विस्तार का, या ऐसी कुछ चीजों का जिन्हें आपने अपने जीवन में देखा है। यदि ऐसा ही है तो आप सर्वव्यापी ईश्वर शब्दों से कुछ नहीं समझते। आपके पास उनका कोई अर्थ नहीं। इसी तरह ईश्वर के अन्य गुणों के संबंध में भी समझिए।
3: हम स्थूल से भाव की ओर जाते हैं, अनुभव बाद में आता है।
2: साधारणतः सर्वशक्तिमान या सर्वदर्शी के संबंध में हमारी क्या कल्पना हुआ करती है? कुछ भी नहीं। अनुभव करना ही धर्म है। और जब आप ईश्वर के संबंध में आपकी जो कल्पना है उसका अनुभव करने में समर्थ हो जाएंगे, तब मैं आपको ईश्वर का उपासक कहूंगा। पर तब तक आपको केवल शब्द के हिज्जे ही मालूम है। आप इससे अधिक और कुछ नहीं जानते। उस अवस्था में पहुंचने के लिए जिसमें हम ईश्वर का अनुभवन कर सकेंगे, हमें साकार वस्तु के माध्यम से जाना होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि बच्चे प्रथम साकार वस्तुओं का अभ्यास करके तदुपरांत क्रमशः भाववाचक की ओर जाती हैं। यदि आप किसी बालक को पंजे 10 बताते हैं तो वो नहीं समझेगा, पर यदि आप उसे 10 चीजें दें और 2-2-5 बार उठाने से 10 कैसे हुए ये दिखा दें, वो उसे ठीक समझ लेगा। ये धीरे धीरे चलने तथा देरी का तरीका है। यहां धर्म के क्षेत्र में हम सब बच्चे ही हैं। हर उम्र में चाहे बूढ़े हों, संसार की सारी पुस्तकों का अध्ययन चाहे हमने कर लिया हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम सब बच्चे ही हैं। अनुभव करने की इस शक्ति से धर्म बनता है।
1: मनुष्य अपनी कल्पना से मंदिर मस्जिद बनाकर उसे ही भगवान का प्रतीक मानकर पूजा करता है। स्वामी जी समझाते हैं,
2: हमें स्थूल या साकार रूप में विधि मंत्र स्त्रोत संस्कार और अनुष्ठानों द्वारा प्रारंभ करना होगा। ये स्थूल विधियां हजारों होंगी। सबके लिए एक ही विधि होना आवश्यक नहीं है। किसी को मूर्ति से सहायता मिलती है और किसी को नहीं। किसी को बाहरी मूर्ति की आवश्यकता होती है और किसी को अपने मन में ही मूर्ति की कल्पना करने की आवश्यकता पड़ती है। मन में ही मूर्ति की कल्पना करने वाला कहता है, मैं उच्च श्रेणी का हूं क्योंकि मानस पूजा ठीक है। बाहरी मूर्ति की पूजा करना बुतपरस्ती है, निंदनीय है, मैं उसका विरोध करूंगा। जब मनुष्य गिरजाघर या मंदिर के रूप में मूर्ति बनाता है तो वो उसे पवित्र समझता है, पर यदि वो मूर्ति मनुष्य की आकृति हुई तो उसे वो बिल्कुल घृणित समझता है। अतः मन अपना ये स्थूल अभ्यास भिन्न भिन्न रूपों द्वारा करेगा और धीरे धीरे हमें सूक्ष्म का ज्ञान प्राप्त होगा, सूक्ष्म का अनुभव होगा। एक ही विधि सबके लिए ठीक नहीं हो सकती। एक विधि मेरे लिए उपयुक्त हो सकती है, दूसरी किसी और के लिए। आदि आदि सभी मार्ग यद्यपि उसी ध्येय को पहुंचाते हैं, तथापि वे सभी सबके योग्य नहीं होते।
3: स्वामी जी कहते हैं, अपनी धारणा दूसरों पर थोपना ठीक नहीं। सबका पथ अलग अलग है।
2: हम एक गलती और करते हैं। मेरा आदर्श आपके लायक नहीं है तो मैं उसे जबरदस्ती आपके गले क्यों मढ़ूं? गिरजाघर बनाने का मेरा नमूना या स्त्रोत पाठ करने की मेरी विधि यदि आपको ठीक नहीं जचती तो मैं उस संबंध में आप पर जबरदस्ती क्यों करूं? आप दुनिया में जाइए, प्रत्येक अबोध व्यक्ति यही कहेगा कि मेरी ही विधि ठीक है तथा अन्य सब विधियां आसुरी हैं। संसार में मेरे सिवाय ईश्वर का और कृपा पात्र पैदा ही नहीं हुआ, पर सभी विधियां अच्छी और उपयोगी हैं। मानव प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अतः यह आवश्यक है कि धर्म भिन्न भिन्न प्रकार का हो, और जितने ही अधिक प्रकार के धर्म हो उतना ही संसार के लिए भला है। यदि संसार में 20 प्रकार के धर्म हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि 400 प्रकार के धर्म हो गए तो और भी अच्छा, क्योंकि उस अवस्था में धर्म पसंद करने का अवसर तथा क्षेत्र अधिक रहेगा। अतः हमें तो धर्म तथा धार्मिक आदर्शों की संख्या बढ़ने पर उल्टे प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रत्येक मनुष्य को किसी ना किसी धर्म पालन का अवसर मिलेगा तथा मानव जाति को और अधिक सहायता मिलेगी। ईश्वर करे धर्मों की संख्या यहां तक बढ़े कि प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए किसी के धर्म से अलग एक धर्म मिल जाए। भक्ति योग की यही कल्पना है।
1: प्रत्येक व्यक्ति का भक्ति मार्ग अलग अलग है, हालांकि सभी की मंजिल एक है, ईश्वर प्राप्ति है।
2: अंतिम भाव यही है कि मेरा धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता और ना तुम्हारा धर्म मेरा। यद्यपि ध्येय और उद्देश्य एक ही है, तथापि हर एक का मार्ग अपनी अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग है, और यद्यपि ये मार्ग भिन्न भिन्न हैं, तो ये सभी मार्ग ठीक ही होने चाहिए, क्योंकि वे सभी उसी स्थान को पहुंचाते हैं। उनमें से एक ही सत्य हो और बाकी सब गलत हो, यह संभव नहीं। अपना मार्ग पसंद कर लेना ही भक्ति की भाषा में इष्ट कहलाता है।
3: कहते हैं शब्द ब्रह्म है। स्वामी जी हमें शब्दों की शक्ति समझाते हैं।
2: फिर है शब्द। आप सभी ने शब्दों की शक्ति के संबंध में सुना है, उनमें कैसी अद्भुत शक्ति होती है। धर्म ग्रंथ बाइबल, कुरान और वेद इन शब्दों की शक्ति से भरे पड़े हैं। कुछ शब्दों का मानव जाति पर अद्भुत प्रभाव होता है। फिर उपासना के दूसरे रूप भी हैं, जैसे प्रतीक। प्रतीकों का मनुष्य के मन पर बहुत असर पड़ता है। धर्म के बड़े बड़े प्रतीक ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं, वे विचारों को प्रकट करने के स्वाभाविक तरीके हैं। हम प्रतीकों द्वारा ही विचार करते हैं। हमारे शब्द उनके पीछे रहने वाले विचारों के प्रतीक मात्र हैं। भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न प्रतीकों का उपयोग बिना उसका कारण जाने ही करने लगे हैं। विचार या भाव भीतर रहते हैं और इन प्रतीकों का इन भावों और विचारों से संबंध रहता है। जिस तरह भीतरी भाव इन प्रतीकों को बाहर प्रकट करते हैं, उसी तरह ये प्रतीक भी भीतर उन विचारों या भाव को पैदा कर सकते हैं।
1: ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो ऊंची चीजें मांगो, तुच्छ भौतिक चीजों से क्या फायदा।
2: प्रत्येक धर्म में प्रार्थनाएं हैं, पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आरोग्य या धन के लिए प्रार्थना करना भक्ति नहीं है, वो सब कर्म है। किसी भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना करना निराकर्म है, जैसे स्वर्ग प्राप्ति अथवा अन्य किसी कार्य के लिए प्रार्थना करना। जो ईश्वर से प्रेम करना चाहता है, भक्त होना चाहता है, उसे ऐसी प्रार्थनाएं छोड़ देनी चाहिए। जो ज्योतिर्मय प्रदेश में प्रवेश चाहता है, उसे इस क्रय विक्रय, इस दुकानदारी के धर्म की गठरी बांधकर अलग धर देनी होगी। तत्पश्चात उस प्रदेश के द्वार में प्रवेश करना होगा। ऐसी बात नहीं कि जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करोगे उसे नहीं पाओगे। तुम प्रत्येक वस्तु पा सकते हो, पर यह तो निम्न और गंवार का याचक का धर्म हुआ। वो सचमुच मूर्ख है जो गंगा के किनारे रहकर पानी के लिए कुआं खोदता है, जो हमारी हीरों की खान में आकर कांच के टुकड़ों की खोज करता है। वो मूर्ख नहीं तो और क्या है? कैसा आश्चर्य है, ईश्वर के पास मांगा भी तो आरोग्य, भोजन या कपड़े का टुकड़ा। जो ईश्वर हीरों की खदान है, उसके पास इन सांसारिक कांच के टुकड़ों की मांग। ये शरीर कभी ना कभी मरेगा ही, तब इसकी आरोग्यता के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करने से क्या लाभ? आरोग्य और धन में रखा ही क्या है? धनी से धनी मनुष्य भी अपने धन का थोड़े से ही अंश का उपभोग कर सकता है। हम संसार की सभी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, जब हम उन्हें प्राप्त ही नहीं कर सकते तो क्यों हमें उनकी चिंता में डूबे रहना चाहिए। जब ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा तब इन वस्तुओं की परवाह कैसी। यदि अच्छी चीजें आए तो भली बात है, जब वे आती हैं तो भी धन्य है, जब जाती हैं तो भी धन्य है।
3: भगवान दुकानदार नहीं है, वहां खरीद फरोख्त नहीं चलती, उन्होंने समझाया।
2: हम तो ईश्वर का साक्षात्कार करने जा रहे हैं, हम उन सम्राटों के सम्राट के समक्ष पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम वहां याचक के वेश में नहीं पहुंच सकते। यदि हम याचक के वेश में बादशाह के दरबार में प्रवेश करना चाहें तो क्या हम प्रवेश पा सकेंगे? कदापि नहीं, हम भगा दिए जाएंगे। हमारे ईश्वर सम्राटों के सम्राट हैं और हम उनके समक्ष याचक के चिथड़ों में प्रवेश नहीं कर सकते। और ना दुकानदारों का ही वहां प्रवेश है, वहां क्रय विक्रय से काम नहीं चलता। तुमने बाइबल में पढ़ा ही है, ईसा ने खरीदने और बेचने वालों को मंदिर से भगा दिया, फिर भी लोग प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मैं अपनी तुच्छ विनती तुझ तक भेजता हूं, मुझे इसके बदले एक नई पोशाक दे दे, हे ईश्वर मेरा सिर का दर्द मिटा दे, मैं कल 2 घंटे अधिक प्रार्थना करूंगा।
1: स्वर्ग क्या है, वहां हम क्यों जाना चाहते हैं? ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
2: अपनी मानसिक प्रवृत्ति को इससे कुछ ऊपर उठाओ। इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करने की अवस्था से अपने को परे समझो। यदि मनुष्य मानसिक शक्ति को ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करने में लगा दे तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या रहा। ऐसी समस्त इच्छाओं का, यहां तक कि स्वर्ग प्राप्ति की कामना का भी परित्याग करना भक्त का पहला कार्य है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यहां के ही इन स्थानों के समान है, शायद इनसे कुछ अधिक अच्छा होगा। यहां हमें कुछ दुख और कुछ सुख मिलता है, वहां स्वर्ग में शायद दुख कुछ कम मिले और सुख कुछ अधिक। पर यहां की अपेक्षा वहां हमें ज्ञान का प्रकाश कोई अधिक ना मिलेगा, वो तो केवल हमारे शुभ कार्यों के फलस्वरूप होगा। ईसाई लोग स्वर्ग को घनीभूत सुख भोग का स्थान मानते हैं। ऐसा स्वर्ग भला ईश्वर का स्थान कैसे ले सकता है? स्वर्ग प्राप्ति से हमें ईश्वर प्राप्ति का आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है?
3: हम जीवन भर अनावश्यक वस्तुओं को पाने की लालसा में दौड़ते रहते हैं, स्वामी जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया।
2: प्रश्न ये है कि इन सब कामनाओं का त्याग कैसे किया जाए। ये कामनाएं ही मनुष्य को दुखी बनाती हैं। मनुष्य इन कामनाओं से बंधे हुए गुलाम होते हैं, उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और खिलौनों की तरह इधर उधर पटक दिए जाते हैं। जिस शरीर को कोई भी वस्तु चूर्ण कर दे सकती है, उसी शरीर की चिंता लिए हुए हम सदा बैठे रहते हैं। इसी कारण हम निरंतर भय की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने पढ़ा है कि मृग को केवल अपने डर के कारण प्रतिदिन 60-70 मील की दौड़ लगानी पड़ती है। मीलों वो दौड़े ही जाता है और तत्पश्चात थोड़ा रुककर कुछ खाता है। परंतु हमें ये जान लेना चाहिए कि हम मृग से भी गई बीती स्थिति में हैं। मृग को तो कुछ आराम मिलता भी है, पर हमें आराम कहां। यदि मृग को पर्याप्त तृण मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाता है, पर हम तो अपनी आवश्यकताएं सदा बढ़ाते ही रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की हमारी प्रवृत्ति बहुत दूषित है। हम ऐसे विक्षिप्त और अस्वाभाविक बन गए हैं कि हमें किसी भी स्वाभाविक वस्तु से संतोष नहीं मिलता। हम सदा दूषित चीजों के पीछे, अस्वाभाविक उत्तेजनाओं के पीछे दौड़ा करते हैं। हमें खान पान, आसपास की चीजें और जीवन भी अस्वाभाविक चाहिए। हम सांस लेने के लिए वायु को भी पहले जहरीली बना दिया करते हैं, और डर का तो कुछ पूछो ही नहीं। हमारा सारा जीवन ही डर के तानों बानों से बना है। मृग को तो केवल बाघ, भेड़िया इत्यादि का ही डर रहता है, पर मनुष्य को सारी सृष्टि से डर रहता है।
1: हमारे चाहते अनंत हैं, हमारी प्यास बुझती ही नहीं, मन को कैसे काबू में लाएं?
2: अब प्रश्न ये है कि इससे हम अपने को मुक्त कैसे रख सकते हैं। उपयोगितावादी खड़े होकर ललकारते हैं, ईश्वर और परलोक की बातें मत करो, हमें इनके विषय में कुछ मालूम नहीं, इस संसार में ही सुख की जिंदगी बिताना उचित है। यदि हम ऐसा कर सकती हैं तो मैं सबसे पहले यही करता, पर दुनिया हमें जब ऐसा करने दे तब ना। जब तुम प्रकृति के गुलाम हो तब ऐसा कर ही कैसे सकते हो। तुम जितना ही अधिक प्रयत्न करते हो उतना ही अधिक उलझते जाते हो। न मालूम कितने वर्षों से तुम कितने उपाय कर रहे हो, पर हम अंत में यही देखते हैं कि अवस्था उत्तरोत्तर बुरी होती जा रही है।
3: पुराने दिनों में हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी, ये उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम स्वर्ग जाना चाहते हैं।
2: 200 वर्ष पहले पुरानी दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थी, पर जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान अंक गणित की जोड़ के क्रम से बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं गुणन क्रम से बढ़ती गईं। हम सोचते हैं कि स्वर्ग जाने से हमारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी और इसलिए हम स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं, पर यह तृष्णा अनंत है, वो कभी बुझने वाली नहीं, सदा किसी न किसी वस्तु की कमी बनी ही रहती है। यदि मनुष्य याचक है तो धन चाहिए, यदि धनी हो गया तो उसे अन्य चीज चाहिए, समाज चाहिए और उसके बाद भी कुछ और चाहिए, आराम या शांति कभी मिलती ही नहीं, तो इस तृष्णा को हम कैसे बुझा सकते हैं? यदि हम स्वर्ग को जाते हैं तो हमारी इच्छाओं की और भी वृद्धि होती है। यदि गरीब आदमी धनी हो जाता है तो उसकी वासना तृप्त नहीं होती, धन तो अग्नि में घृत छोड़ने के समान उसकी प्रदीप्त ज्वालाओं की वृद्धि करता है। स्वर्ग जाने का अर्थ है अत्यधिक धनवान होना, और तब तो वासना अधिकाधिक बढ़ती ही है। हम संसार के भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि स्वर्ग के देवता मनुष्यों की तरह कई प्रकार के द्वंद किया करते हैं, वे सर्वदा अच्छे ही रहते हैं ऐसा नहीं। आखिर ये स्वर्ग जाने की इच्छा भी तो सुख भोग की वासना ही है, इस इच्छा का परित्याग करना चाहिए। आप लोगों के लिए स्वर्ग जाने का विचार करना बहुत हीन और तुच्छ है। ये ठीक उसी विचार के सदृश है कि मैं करोड़पति होऊंगा और लोगों पर हुकूमत करूंगा। ऐसे स्वर्ग तो अनेक हैं, पर धर्म और प्रेम के द्वार में प्रवेश करने का अधिकार इन स्वर्गों के द्वारा

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी बचे हैं दोपहर के 4। एक मिनट प्रभु की याद से मन में लाए अच्छे विचार।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मौज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आज के दिन की। और बात करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। 26 जून आज का तारीख है और बात करें तो आज धनिष्ठा नक्षत्र है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंधर्व, रमा राघोबा राणे, धर्मेंद्र प्रधान, योगेंद्र नारायण, तरुण सागर, एस मल्लिकार्जुन और मनप्रीत सिंह गोहरजान, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही गोविंद शास्त्री, दुग्गेवेकर, गोपाल रामानुजू, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ मिलके कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा और आशा करूंगा कि आज जिन दिग्गजों का जन्मदिन है उन लोगों के बारे में जब बातें करेंगे तो उनकी जीवन कहानी से आपको काफ़ी मोटी

मोटिवेशन मिलेगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सुविचार की बात करें तो आज का सुविचार है, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जो आप दूसरों के सोशल मीडिया देखकर प्रभावित होते हो वो केवल उनकी जिंदगी की हाइलाइट्स हैं, असल जिंदगी कुछ और ही होती है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमेशा दूसरों से अपनी तुलना कभी भी मत कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को सीधे ले चलता हूँ कार्यक्रम के इस पड़ाव में एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की जीवन से आपको जोड़ना चाहूँगा। एक ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन को या जिनके जीवन कहानी से काफ़ी मोटिवेशन मिल सकता है। इतिहास के पन्नों में इनका नाम खास सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि 19वीं शताब्दी के बंगाल के बहुत ही पॉपुलर विद्वान और महान कवि और उपन्यासकार थे। 1874 में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की जिसे बाद में आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया और विशेष रूप से वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 में विशेष कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो आइए ऐसे विशेष रचनाकार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। बंगाल भाषा के बहुत ही पॉपुलर लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 को बंगाल के 24 परागान जिले के कंटलपाड़ा नामक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के शीर्षस्थल उपन्यासकार हैं और उनकी लेखनी से बंगाल साहित्य तो समृद्ध हुआ ही बल्कि हिंदी भी बहुत ज़्यादा सम्मान पा गई। वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। वे भारत के अलेक्जेंडर डूमा माने जाते हैं। इन्होंने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा था, ये बहुत पॉपुलर हुआ। और सेकेंडरी उसकी उनकी बात करें तो दूसरी बात यह है बंकिम चंद चटर्जी का जन्म उस काल में हुआ जब बंगाल साहित्य ना कोई आदर्श था और ना ही बंगाल का कोई रूप का सीमा का कोई विचार। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता होने के नाते वे बड़े सम्मान के साथ सदा याद किए जाएंगे और उनकी शिक्षा बंगाल के साथ साथ अंग्रेजी व संस्कृत में भी हुई थी। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा की परंतु राष्ट्रीयता और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। युवावस्था में उन्होंने अपने एक मित्र का अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र बिना पढ़े ही इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया था कि अंग्रेजी ना तो तुम्हारी मातृभाषा है और ना ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेज से दबे नहीं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और साहित्य की बात करें तो साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बंकिम ने साहित्य के क्षेत्र में कुछ कविताएं लिखकर प्रवेश किया। उस समय बंगाल में गद्य व उपन्यास कहानी की रचनाएं कम लिखी जाती थी। बंकिम ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नाम का उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य में उनकी दाग जम गई। फिर उन्होंने बंग दर्शन नामक साहित्यिक याद पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। रविंद्रनाथ ठाकुर बंद दर्शन में लिखकर ही साहित्य के क्षेत्र में आए। वे बंकिम को अपना गुरु मानते थे। उनका कहना था कि बंकिम बंगाल लेखकों के गुरु और बंगाल पाठकों के मित्र भी है। तो है ना कमाल की बात। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ जोड़ूंगा। सुनते रहो बस।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में सुनकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल, एक ऐसे व्यक्ति जिसने राष्ट्रगान को लिखा और राष्ट्रीयता को एक नया पहचान दिया। बंकिम के दूसरे उपन्यास कपल कुंडली मृणालिनी विश्ववृक्ष कृष्णकांता व वसीयतनामा रजनी चंद्रशेखर आदि प्रकाशित हुए। राष्ट्रीय दृष्टि से आनंद मठ उनका सबसे प्रिय उपन्यास है। इसी में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ था। ऐतिहासिक और सामाजिक ताने बाने से बुने हुए इस उपन्यास ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लोगों ने ये समझ लिया कि विदेशी शासन से छुटकारा पाने की भावना अंग्रेजी भाषा या यूरोप का इतिहास पढ़ने में ही जगी। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का अपमान और उन पर तरह तरह के अत्याचार। बंकिम के दिए वंदे मातरम मंत्र ने देश के संपूर्ण आज़ादी का संग्राम को एक नई चेतना से भर दिया। देवी चौधरानी उनका एक अन्य उपन्यास और कमलाकांता का रोजनामा गंभीर निबंधों का संग्रह है। एक और विदेशी सरकार की सेवा और दूसरी और देश के नवजागरण के लिए उच्च कोटि के साहित्य की रचना करना, ये काम बंकिम के लिए संभव था। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें। बंकिम जी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बने और इतिहास में युगो युगो तक अमर रहेंगे, क्योंकि ये गीत उनकी एक ऐसी कृति है जो आज भी हर भारतीय के हृदय को आंदोलित करने का क्षमता रखती है। रविंद्रनाथ ने एक स्थान पर कहा, राम मोहन ने बंग साहित्य को निम्जान दशा से उन्नत किया, बंकिम ने उसके ऊपर प्रतिभा प्रवाहित करके स्वरबद्ध मूर्ति का अपसरित कर दिया। बंकिम के कारण ही आज बंगाल भाषा मात्र प्रौढ़ ही नहीं बल्कि उर्वरा और शैश्यामला भी हो सकी है। आधुनिक बंगाल साहित्य के ये महान इतिहासकार, राष्ट्रीयता के जनक, इस नायक का 8 अप्रैल 1894 को देहांत हुआ। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। आप सुना है रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा शाम का समय है और आप सभी चाय के साथ साथ रेडियो मधुबन को सुन रहे होंगे। बिल्कुल सुनिए चाय के साथ में, और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गाने मैं आज सुनाने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं एक खुशी की बात आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे स्टूडियो में विशेष जयपुर से हमारे खास मेहमान आए हुए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विशेष ऑफिसर हमारे बीच में है, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी लोग जो रेडियो सुन रहे हैं और जो रेंज में सुन रहे हैं उनकी बात अलग है, जो आउट ऑफ द रेंज सुन रहे हैं उन सभी के लिए जो इंटरनेट वगैरह की बात आती है तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी के माध्यम से ही हम सभी को मिल रहा है। इनके वजह से ही हम सभी जो हैं पूरे विश्व में घर बैठे कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। हाँ, इसके साथ में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे सुंदर एप्लीकेशंस बनाए हैं, और जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि किसी का कॉल आया तो उनका नाम मालूम पड़े, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर जो है इनिशिएटिव अभी लेटेस्ट में उन्होंने किया है कि आपको जिसका फोन आएगा भले आपके पास सेव नहीं होगा लेकिन आधार नाम रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये सारे जो सेवाएं हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से होते हैं। तो उनके ही ऑफिसर चांदक सर हमारे बीच में है, मीना सर हमारे बीच में है, संजीव जी हैं और कार सिंह देवल सर भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगेगा आप जब उनके अनुभव सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा चांदक सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर।
4: नमस्कार रमेश भाई, मैं मधुबन रेडियो मधुबन के सभी ग्राहकों को, सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कैंपस में आकर और आपके रेडियो मधुबन में आकर। और जैसा कि आपने पहले बता ही दिया कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है
3: जी, जी, जी।
4: वो जो है वो टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग के लिए रेगुलेशंस एंड रिकमेंडेशंस देता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो अभी आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई, इसमें कुछ चीज़ें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है आजकल, जैसे जो लोगों को अनसॉलिसिटेड कॉल्स आते हैं उसके लिए भी हम लोग कदम उठा रहे हैं, और साथ ही साथ जो मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस है जिससे लोग थोड़े से कभी कभी परेशान होते होंगे, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।
3: सही बात। चंद्रक सर, मैं चाहूँगा कि आप भी रेडियो से कभी बचपन में तो जुड़े होंगे या सुने होंगे, तो अपनी कुछ यादें जो हैं रेडियो से आप आपका जो नाता है या आपका कनेक्शन है वो थोड़ा सा सुनाइए।
4: आपने बहुत अच्छी बात पूछी रमेश भाई। हम लोग जब बचपन में थे उस वक्त तक तो टेलीविज़न आया हुआ भी नहीं था
3: बिल्कुल।
4: और हम लोगों को अच्छे से याद है कि हम लोग जो है बुधवार को बिना का गीतमाला सुनते थे और जो रात में 9:45 बजे समाचार आते थे, समाचार आने के बाद में जब वो ख़त्म होते थे उसके बाद में हम लोग की दिनचर्या ख़त्म हो जाती थी और फिर उसके बाद हम लोग सोने चले जाते थे। तो रेडियो तो हमारे घर में मतलब जैसे सुबह उठते से चालू हो जाता था, और हम लोग के हालांकि पढ़ाई के लिए कुछ समय हम लोग बंद करते थे, अदरवाइज वो एक ऐसा माध्यम था जिससे हम लोग बचपन से जुड़े हुए।
3: बिल्कुल बिल्कुल। चंदक सर, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, कोई गीत आपको जैसे रेडियो पे गीत लगता है तो हमें बड़ा खुशी होता है, और बीच में कोई बंदा बोलता भी है तो हमारा अटेंशन जो है ना ज़्यादा जाता है कि ये बंदा बोल क्या रहा है, है ना। तो ऐसी कुछ बातें हो जाती है, और कभी कभी फरमाइशी प्रोग्राम उसमें चलते हैं तो आपका नाम ले लिया जाए कि चांदक सर ने ये मैसेज किया इस गाने के लिए, तो कैसा लगेगा?
4: मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि कोई गाना
3: या कोई गीत आपकी वो, तो वो दो लाइन वैसे सुनाइए या कोई गीत याद कराइए हमें।
4: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कुछ गाना गा सकूँ, लेकिन जैसा आपने बताया मैं मतलब किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद करता हूँ, और एक जो गीत है चलते चलते मुझे कभी याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, वो मेरा मन पसंदीदा गीत है।
3: चांदक सर बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और अपनी रेडियो की बातें आपने याद करा के अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया है। और मुझे याद है कि मेरे पिताजी वगैरह जो है ये रेडियो के द्वारा ही इनका मनोरंजन होता था, इनका समय बीतता था और एक सस्ता सुलभ माध्यम जो था वो रेडियो ही था।
4: बिल्कुल।
3: और उस समय जो रेडियो सुनते थे, धीरे धीरे हम लोग रेडियो से टीवी में आ गए, टीवी के बाद फिर आज हम लोग ये मोबाइल में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग स्क्रीन टाइम हमारा एंगेज हो रहा है, तो वो जमाना अच्छा था कि अभी ये वाला अच्छा, कैसे आप बोलेंगे?
4: यदि आपने ये मुद्दा उठाया तो मैं इसमें थोड़ी सी शिक्षाप्रद बात भी बताना चाहूंगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: मतलब अभी जो लेटेस्ट सर्वे किया गया उसके हिसाब से स्क्रीन टाइम, एवरेज स्क्रीन टाइम, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हमारा समय जो मोबाइल के सामने या टीवी के सामने या लैपटॉप के सामने, वो एवरेज करीब करीब 7 घंटे हो रहा है। और इन 7 घंटों में 4 घंटे जो है हमारे मोबाइल के सामने गुजर रहे हैं और उसमें से भी 2.5 घंटे जो है वो हम सोशल मीडिया पे अपना लगा रहे हैं। तो आपने ये सही बोला कि मतलब ये चीजें बढ़ने से बहुत सारी चीजें दूसरी भी हो रही हैं और जो मधुरता रेडियो में थी कि मतलब आप अपना अपना काम भी कर सकते थे और
3: साथ कितना फ्री था, अगर रेडियो उधर दूर चल भी रहा है वो सुन भी रहा है, मजे से अपना काम भी कर रहा है
4: और वो अपना काम भी कर रहा है और उसे अकेलापन भी नहीं लगता। अभी भी आप यदि देखेंगे कि अगर कोई मतलब जैसे ही कोई कार में बैठता है या फिर कहीं अकेला होता है तो सबसे पहले रेडियो चालू करता है, क्योंकि टीवी में एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, आपको उसके सामने बैठना है, उसके सामने देखना
3: कुछ
4: है,
3: कर भी नहीं सकते।
4: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
3: चांदक सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो चांदक सर ने याद किया है, वही गीत किशोरदा का अभी आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। और किशोरदा का बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। अब हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान से मैं आपकी बातचीत कराने वाला हूँ, मीना सर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच
1: सर। कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में।
2: रमेश भाई, मैं आरआर मीना जॉइंट एडवाइजर टीआरआई रीजनल ऑफिस जयपुर में कार्यरत हूं
1: जी।
2: और मुझे यहां आपके स्टूडियो में आने से जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और आपके माध्यम से श्रोताओं से जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं अपने आप को, मैं बहुत ही अपने आप को अपार खुश महसूस कर रहा हूँ। और मुझे बचपन की वो बातें याद आ रही है जब हम रेडियो के माध्यम से, चाहे सोमवार का जो है सेवा का टूथ में जो हाँ प्रोग्राम था वो सुनते थे बड़ी बेशबरी से।
1: बिल्कुल,
2: उसके
1: बिल्कुल।
2: बाद में जो सुबह में 8:30 बजे से जो विविध भारती कार्यक्रम होता था
1: जी,
2: उसमें भी हम लोग जो है अक्सर जो है बीच बीच में गाने सुनते रहते थे। तो ये हमारी एक दिनचर्या का जो है
1: हिस्सा,
2: पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही एक अभिन्न दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। अभी जैसा कि सर ने बताया टीआरआई के बारे में
1: जी जी।
2: और जो हमारा आजकल युवा वर्ग है या ज्यादातर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय अपना निकाल रहे हैं। बेसिकली सोशल मीडिया कहने को तो हमें जो है वो एक सोशल कनेक्टिविटी देता है,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन हम जो है उस सोशल मीडिया पे आने के बाद में अनसोशल हो रहे हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
2: कि हम घर में 4 मेंबर बैठे हैं, जैसे ही हमारे पास हाथ में मोबाइल आता है तो हम जो है 3 लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और जो है हर आदमी जो है अपने मोबाइल पर कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली भी हम जो सोशली जो कनेक्ट होने चाहिए थे वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है अनसोशल हो रहे हैं। तो एक तो ये जो है सोशल मीडिया का बड़ा जो है नुकसान हम लोग जो है इसको भुगत रहे हैं। दूसरा जो सोशल मीडिया पर हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, उसका भी एक रिसर्च जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप रोजाना आधा घंटे के लिए सोशल मीडिया पे अगर जो है अपना टाइम निकालते हो तो उससे आपके जीवन में एक तो उत्साह रहेगा, दूसरा कभी डिप्रेशन का जो है आप शिकार नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर जो है इसके विपरीत अगर आप ज़्यादा टाइम निकालते हो, और उसमें जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसने ये रिसर्च जारी किया है कि अगर 2 घंटे से ज़्यादा आप अगर निकालते हो टाइम सोशल मीडिया पे, तो उस केस में आप जो है एक तो अनिद्रा का शिकार होंगे और आपको डिप्रेशन होगा, सोशली आप जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपके जितने भी जो रिच कल्चर है इंडियन रिच कल्चर उससे भी आप जो है डिस्कनेक्ट होते जाओगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सोशल मीडिया को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही कम समय के लिए एक फ़ायदे के लिए जो है यूज़ इसको करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल मीना जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा ये जो शिक्षाप्रद बातें आपने सुनाई हैं और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी ये बात बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में इसके शिकार हो रहे हैं। जैसे ना लोग कहते हैं और गलती से हो गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो है इसमें इसका जो नुकसान है वो ये है कि जब हम इसमें जाते हैं सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमें लगता है कि जो है हम तो जस्ट अभी जो है इस पे आए हैं, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता,
1: टाइम का पता नहीं चलता।
2: और हमारी जो क्रिएटिविटी है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है वो एक रेडीमेड कंटेंट पे ही जो है फोकस हो जाता है,
1: तो हमारी क्रिएटिविटी बंद।
2: यस यस बिल्कुल
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पे हमें जो है ज्यादा ध्यान देना है और हमारा स्क्रीन टाइम को हो सके उतना कम करते जाना है। देखिए रेडियो एक सस्ता और सुलभ माध्यम है। आज भी आप जो है रेडियो का, बहुत सारे भारत के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो आपके लिए अलग अलग कंटेंट और सरकारी योजनाओं के साथ साथ पुराने गीतों को चला रही हैं, और वो आपके माध्यम आपके एंटरटेनमेंट के पूरे ख्याल रखते हुए काम कर रही हैं। तो आप क्यों ना फिर से रेडियो पे आप अपना मनोरंजन करते रहें और कुछ ऐसी ज्ञान की बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के लिए मुझे लगता है कि वो टाइम टू टाइम आपको शेयर करना है। 10 मिनट आप सोशल मीडिया पे क्या करना है, आपको पोस्ट ही तो करना है। पोस्ट करने के लिए 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। हाँ, आप कुछ क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हो तो कंटेंट बना लीजिए और फिर 10 मिनट में आप जो है पूरा पोस्टिंग आपका हो जाएगा, सोशल मीडिया पर चला जाएगा, उसके बाद उसको बंद करना, क्योंकि आज सब ऐसा आ गया है कि मोबाइल पर टाइमर लगाना पड़ रहा है क्योंकि आपको टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो अलार्म्स लगा ऐप्स निकले हुए हैं जो आपको मैसेज देगा 2 बजेगा ताकि आप बंद करें, ऐसा सिचुएशन ना आए। मीना सर, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे?
2: श्रोताओं को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जो है सोशल मीडिया का यूज़ कम करें, लेकिन जो है जो भी आपके चारों तरफ घटनाएं घटित हो रही है उससे वाकिफ ज़रूर रहें, और वो एक इसका जो है माध्यम सोशल मीडिया है। दूसरा जो है, जो रिमोट एरियाज में रेडियो, जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस है, इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि भारत के कोने कोने में जो है संचार सेवाओं का विस्तार इतना नहीं हो पाया कि हर आदमी के पास ये पहुंच जाए, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो है दूर दराज के क्षेत्र में और जहाँ पे कि जो है आपका एक जो पुरानी कल्चर है उसको एक कंटिन्यूटी देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मीना सर,
2: थैंक यू।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हुए मीना सर, मैं चाहूंगा कि आपका कोई पसंदीदा गीत हो तो बताइए।
2: एक्चुअली जो है बहुत सारे गीत सुने हैं, लेकिन मुझे एक थानेदार मूवी का गाना याद आता है।
1: अच्छा,
2: जीना है तो हंस के जियो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही गीत आपने याद कराया है, तो मैं चाहूँगा कि ये गीत जो है आप सभी को मैं सुनाने वाला हूँ। और मीना सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और मुझे लगता है कि जो बहुत ही खूबसूरत मैसेज था, सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा व्यय होता है और साथ में हम सोशली भी नहीं रहते हैं, अनसोशल हो जाते हैं, ये आपकी बात याद रहेगी। आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपके लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: you.

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को. और आशा करूंगा चांद अक्सर और मीना जी से आपने जो बातें सुनी वो आपके बिल्कुल काम की थी. और मैं चाहूंगा कि इस मैसेज को आप अपने तक न रख के अपने दोस्तों को, अपने परिवार में सभी को बताइएगा कि आज हमने ये कार्यक्रम सुना और इसमें ये बातें हमें सुनने को मिली. तो आइए आगे बढ़ते हैं सफर इस कार्यक्रम में. कुछ और मेहमान जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, तो संजीव जी हमारे साथ है, कार सिंह देवल सर भी हमारे साथ है, और आप दोनों भी विशेष टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में ही अपनी सेवा दे रहे हैं. और जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको अपडेट करना, मैसेज करना, ईमेल करना और कोऑर्डिनेशन का जो काम है पूरी तरह से सीएजी वालों से, वो आप करते रहते हैं. और आज माउंट आबू में विशेष रूप से हमारा शांति वन में एक प्रोग्राम कल होने जा रहा है और उसी के संदर्भ में आपका यहाँ आना हुआ. तो संजीव जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए और कम्युनिटी रेडियो में आकर आपको कैसा लग रहा है वो भी सुनाइए.
2: सबसे पहले तो नमस्कार सभी श्रोताओं को और सुनने वालों को
1: जी.
2: मैं संजीव मीना, सीनियर सर्च ऑफिसर इन टीआरआई रीजनल ऑफिस जयपुर में कार्यरत हूँ वर्तमान में
1: जी.
2: बाकी रेडियो में जो कम्युनिटी रेडियो है और बाकी नॉर्मल जो एफएम रेडियोज हैं
1: जी जी जी,
2: उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज उन सब पे ज्यादा फोकस रहता है.
1: बिल्कुल.
2: और उनका जहाँ तक कि कम्युनिटी रेडियो की बात आती है तो इसका हमने सुना है कोविड के टाइम पे भी काफ़ी इम्पेक्ट रहा था लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना. और ये अभी भी एक बिना मतलब इसको कह सकते हैं कि एनजीओ की तरह या फिर बिना किसी प्रॉफिट के भी ये लोगों के सेवाओं में लगा हुआ रहता है कंटिन्यूटी से.
1: बिल्कुल.
2: और रेडियो का तो काफ़ी पुराना संबंध रहा है, जैसे कि मैं जैसे रूरल बैकग्राउंड से हूँ बचपन से, वहाँ पर जैसे टीवी भी नहीं थी उस टाइम पे भी, जैसे रेडियो से कमेंट्री सुनना और गाने सुनना.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
2: और उस तरह जैसे कुछ प्रोग्राम जो मुझे याद है अभी भी उजाले उनकी जी, यादों के, उसमें इंटरव्यू आते थे जैसे कभी लता मंगेशकर, कभी आनंद बख्शी साहब.
1: हाँ बिल्कुल, एक फनकार वो प्रोग्राम चलता था.
2: तो उस तरह की यादें अभी भी जुड़ी हुई है. और जहाँ तक एक हेलो फरमाइश था वो मैं हर बार सुनता था, उसमें वीक में दो बार आता था विविध भारती पर, तो वो यादें तो हमेशा जुड़ी रहेंगी. लेकिन आज आपने यहाँ मौका दिया जो मैं आपके रेडियो स्टूडियो में खुद आके अब मैं अपनी चॉइस से खुद अपना गाना सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं तो काफी खुश हो रहा हूँ इस बात से. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: चलिए संजय जी, बहुत ही अच्छी यादें ताज़ा कराई आपने बचपन की. और मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा गीत जो आपके मानस पटल पर अभी सुनने का दिल करे, तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे.
2: गाने तो काफ़ी हैं, जैसे 90s के मैं ज़्यादा सुनता हूँ गाने
1: जी, जी, जी.
2: लेकिन अभी जैसे यहाँ पर किशोर कुमार साहब के सर ने भी सुनाया था तो मैं भी एक गाना बताना चाहूँगा, जैसे ये जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ये कोई
1: जी,
2: मेरी
1: जी,
2: जंग शायद मूवी का नाम है.
1: बिल्कुल,
2: उससे
1: बिल्कुल.
2: है गाना,
1: बहुत ही बढ़िया गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है. मेरी जंग इस एल्बम का है जो खास फिल्म बनी थी. और आइए इस गाने को सुनते हैं अभी. और ये गाना आप सभी को जो है मुश्किल के दौर में कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें, संभालें और ज़िंदगी को आसानी से जिए, एक मोटिवेशन के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है. तो आइए इस गाने का लुत्फ़ उठाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं अभी कार सिंह देवल सर से भी जोड़ना चाहूँगा, आप भी विशेष ट्राई में अपनी सेवा दे रहे हैं, विशेष रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी इंटरेक्शन होता रहता है फ़ोन से, मैसेजेस से, तो आज हूबहू स्टूडियो में मिलना क्या एक जो है सभी को मौका मिला है। तो कार सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है।
1: मेरे संजीव सर ने जैसे कि बताया,
0: जी
1: मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ और मुझे एक इवेंट याद आता है 2003 के वर्ल्ड कप का।
0: अच्छा।
1: गांव में क्या होता है कि अक्सर लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है।
0: बिल्कुल। हाँ।
1: तो उस टाइम पे क्या टीवी चलते नहीं थे और ये रेडियो जो है वो बैटरी वाले सेल से चलते थे, तो हम उससे कमेंट्री वगैरह सुना करते थे और गानों का मुझे शुरू से ही शौक है।
0: अच्छा।
1: तो हाँ, तो मुझे याद है एक बार मैं जो है गांव में एक 500 रुपए का एक छोटा सा जो FM आता था जिसमें स्पीकर जो इनबिल्ट आता है वो मैं खरीद के लाया था और रात को जब मैं सोता था, छत के ऊपर सोता था वहीं पे रेडियो लगा के पता नहीं कब नींद आती थी।
0: बिल्कुल।
1: तो वो दिन एक्चुअली, अभी तो रेडियो सुने मुझे काफी साल हो गए, लेकिन आप आज आपने फिर से वही दिन याद दिला दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छा, ट्राई के माध्यम से या आप कोई संदेश या मैसेज बताना चाहेंगे?
1: सर, ट्राई के माध्यम से जैसा कि ऑलरेडी मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने चांदक सर ने बताया, एक तो स्क्रीन टाइम का सर ने बताया कि हम ज्यादातर टाइम तो मोबाइल पे गुजारते हैं, तो उससे वही आंखों की दिक्कत है, डिप्रेशन और सब चीजें। तो मेरा भी यही मैसेज है कि कम से कम टाइम जो है हम स्क्रीन पे गुजारे,
0: बिल्कुल,
1: जितना हो सके अपने परिवारजनों के साथ में बिताएं या फिर रेडियो सुने या फिर कुछ ओवर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स वगैरह को दें। धन्यवाद।
0: बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने सुनाया कार सिंह सर। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और एक आध गीत कोई आपका पसंदीदा हो तो वो भी हो जाए।
1: सर, अब गाना तो अभी देखिए थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी काम चल रही है, लेकिन मैं एक गाना मैं जरूर बताना चाहूंगा अगर आप उसको प्ले कर पाए। एक मेरा पसंदीदा गाना है, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी।
0: क्या बात
1: जी, पल भर यहाँ जी और जी, ऐसा ही कुछ है बोल
0: इसके। जी सही है। हर घड़ी
1: है कि हर पल को जो है खुल के जीना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये इस गाने के माध्यम से ही मेरा संदेश भी है।
0: जी। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, हर घड़ी गुजर रही है, तो ये गीत आपको पसंद है। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने अपने ट्राई के सारे ही बंधुओं से बात किया और साथ ही साथ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जो सशक्त माध्यम है रेडियो, आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन के साथ साथ नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, तो साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप रेडियो मत भूलिए, रेडियो को अपने साथ रखिए और साथ में जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे ज़रूरत के अनुसार हमें उसे टाइम टू टाइम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइम लैक होकर अगर यूज़ करेंगे तो शायद आप देखिए आपका रातों की नींद तो ख़त्म हो गई है ना, तो ऐसा ना हो कि आपके जीवन के सारे ही समय सिर्फ मोबाइल पर रहें। और जैसे मीना सर ने एक बात बताई कि हम सोशल होते होते अनसोशली हो जाते हैं, अपने बाजू वाले अपने माता पिता से भी हम फिजिकली बात नहीं कर पाते, कभी कभी मैसेज से काम चला जाते, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके लिए ट्राई जैसे संस्थान जो है सेफ्टी के माध्यम से और सुलभ, आपको कितना अच्छे से ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी आपके हाथ में मिले इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसका उनका भाव ये है कि आपको सुचारू रूप से आपका काम हो, आपको अनसोशल बनाने का नहीं है, आपको जो है आपका स्क्रीन टाइम बढ़ाने का नहीं है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर काम करना है, तो ये इंडिविजुअल मसला है, इसमें कोई भी बंदा जो है आपको गाइड प्रॉपर नहीं कर पाएगा, आपको ही अपने आप को ट्रेन करना है कि मुझे स्क्रीन पे कितना टाइम रहना है, पोस्टिंग कितना टाइम करना है और कितना टाइम मुझे अपनों के साथ सोशली बिताना है। ठीक है ना सर, यही मैसेज है आज का इस प्रोग्राम में और फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खम्मा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कई दिल वाली बातें भी ना, ना वो सचरी जवानी कहीं, जग

0: नमस्कार श्रोताओं, युवा मंच में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं 2000 तो युवा मंच पे जैसे हम हर बार आपकी मुलाकात किसी ऐसे युवा से कराते हैं जो आपको प्रेरित भी करते हैं, तो आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे ओम से। अच्छा, ओम मिश्रा जी जो हैं वो बाय प्रोफेशन एक डेटा साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने MIT लीडरशिप इनोवेशन की बूट कैंप की हुई है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गोल्डन डेलीगेट हैं, कंट्रीब्यूटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज के फिनिशर हैं। यानी आज हम ऐसे एक व्यक्तित्व से आपकी बात करा रहे हैं जो फिजिकली फिट एंड मेंटली फाइन है। आज क्या आप तैयार हैं फिजिकली फिट और मेंटली फाइन होने के लिए? आइए मिलते हैं ओम जी से। नमस्कार ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा मंच पर।
1: किस सोमवार हमको यहाँ पे एक से शेयर करने के लिए हमारे सारे ऑडियंस के साथ, आप सब इसे कुछ सीखें एंड कुछ नया आपके जीवन में हो, चलो हम इस बात पे शुरू करें।
0: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, ये बताइए कि और फिटनेस ये तो समझ में आती है, बट आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें स्पोर्ट्स के साथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी दिल और दिमाग तो हम सुनते ही थे, फिजिकली फिट एंड मेंटली फाइन। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस की तरफ, इसमें आपकी रुचि कैसे जाएगी?
1: सो मेरे बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रही है मेरी
0: जी।
1: मैंने काफ़ी टाइम से अपने स्कूल और मैराथन्स में काफ़ी जाता रहता हूँ। पिछले साल मैंने हाफ मैराथन इंडिया लेवल पे कंप्लीट किया था एंड उसके साथ साथ मैंने इवन अपने कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए गोल्ड मेडल पाने के लिए मैंने ट्राई किया था इसमें और मैंने रिसेंटली 75 हार्ड चैलेंज का भी लेके उसको भी ख़त्म किया है। मैंने टारगेट किया कि मतलब 15th ऑफ अक्टूबर स्टार्ट करूँ एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर 31st ऑफ दिसंबर ये चैलेंज ख़त्म की जाए, ताकि पूरा साल का जो सार है मैं 2023 में अच्छे से निकाल सकूँ।
0: वाह, प्लानेशन के

0: दौरान आपने कोई चीज बताई 75 हार्ड चैलेंज। ये 75 हार्ड चैलेंज क्या चीज है?
1: सो 75 हार्ड चैलेंज एक चैलेंज है जो लोगों का मेंटली टफनेस टेस्ट करता है। अच्छा। कि वो कितना अपने लेवल को पुश कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसमें चीजें करनी होती है जो हर रोज के रोज होती है। सो फर्स्ट है कि आपको रोज 1.5 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज करनी होती है।
0: 1.5 आवर्स पर डे?
1: पर डे।
0: ये क्या एक ही टाइम पे करना होता है स्ट्रेच, या पूरे दिन में आधा आधा घंटे के सपोज तीन स्लॉट्स में भी कर सकते?
1: नहीं नहीं, इसमें दो स्लॉट्स होते हैं, मतलब 45 मिनट्स का एक आउटडोर स्लॉट होता है और 45 मिनट्स का एक इंडोर स्लॉट होता है।
0: अच्छा।
1: और उसके साथ हमको 3 to 4 लीटर ऑफ पानी पीनी होती है, कोई भी नॉन फिक्शनल किताब पढ़नी होती है 10 पेज,
0: और नॉन फिक्शनल
1: के साथ एक सेल्फी रोज लेनी होती है ताकि हम अपने को ट्रैक कर सकें कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है ओवर द पीरियड ऑफ 75 डेज। एंड थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको क्लीन डाइट खानी होती है।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो ये मुझे अगले सवाल पे ले आता है कि क्लीन डाइट से फिर आप क्या समझते हैं?
1: सो क्लीन डाइट का मतलब ये है कि ज़्यादा ना मसालेदार या ऑयल में ज़्यादा ये हो कि चीज़ वगैरह हो, वो सब ना होना चाहिए। ज़्यादा रियलिस्टिक बाय ज़्यादा जिसमें प्रोटीन वगैरह हो, जिसमें मतलब हम क्या खा सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हो गया, सुबह उठ के स्प्राउट्स, देन डेट्स हो गया खाने, दलिया नहीं तो ओट्स मील, ये ब्रेकफास्ट में आ गया। फिर लंच के लिए हमने ले लिया रोटी दाल और उसके साथ थोड़ा पनीर की सब्जी। फिर रात में, रात से पहले शाम में हमने छेना खा लिया, फ्रूट्स की बाउल खा ली।
0: माय गुडनेस, आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर सकता हूँ, कहीं बात ही नहीं की।
1: रात को सोने से पहले दूध पी के सो जाता था ताकि सुबह उठ के फ्रेश पेट, खाली पेट स्टार्ट कर सकूं।
0: नो वंडर आप इसको 75 हार्ड चैलेंज बोलते हैं, मेरे से तो 5 दिन भी ना हो। तो 70, ये बताइए इसमें आपको रैंक कौन करता है, या ये सेल्फ असेस्ड है, या जैसे आपने कहा कि हर दिन आप अपनी सेल्फी भी लेते हैं प्रोग्रेस चेक करने के लिए, खाना आपको जैसे एक फिक्स्ड या बड़ा रेजिमेंटेड सा डाइट खाना होता है, इतनी एक्सरसाइज करनी होती है, किसी दिन सपोज आपने चीट कर दिया, कौन जज करता है?
1: सो ये एक सेल्फ कॉन्शियस रूल है, मतलब गेम वो 75 हार्ड चैलेंज का
0: जी।
1: कि अगर आपने कभी चीट भी किया या आपका कोई भी एक इनमें से पांचों चीज में से कोई छूट भी गया
0: जी,
1: तो आपको डे वन से स्टार्ट करना पड़ेगा।
0: और कोई वर्ल्ड वाइड संस्था है, मतलब कैसे जुड़ते हैं और हाँ, कैसे प्रमोट करते हैं?
1: यूएस में एक जन ने स्टार्ट किया और उसके बाद काफी लोग इसमें फेल होने लगे, तो ये काफी ये जो चैलेंज है वायरल चला गया। इसका मोटिव था कि लोग काफी मोबाइलों पे आते हैं, स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं और अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं देते
0: जी, जी।
1: तो उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब अपने को फिट रखना प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे इंडिया में आने लगी। इंडिया में आने के बाद काफ़ी लोगों ने इसको सीरियसली लेकर ट्राई किया, फिर इंडिया में भी लोग फेल होने लगे। उसके बाद एक यूट्यूबर थे, इन्फ्लुएंसर अंकित वर्णापुरिया करके,
0: अच्छा, वो
1: राम राम भाई सारियाने बोलते हैं, उन्होंने ये कंप्लीट किया। फिर काफ़ी लोग उसके बाद कंप्लीट करने लगे।
0: वो क्या भारत के पहले थे जो कंप्लीट करने वाले?
1: एक उनमें से एक थे जो भारत के।
0: अच्छा।
1: जो कंप्लीट किया एंड या तो उसके बाद ही मैंने भी सीखा कि ये लोग हम लोग भी कर सकते हैं, तो मैंने भी ये चैलेंज उठाया एंड रोज के रोज करते हुए फाइनली ऑन 28th of December 2023 मैंने कंप्लीट कर दी।
0: अरे 75 डेज का चैलेंज, वाह, मान गए आपको। तो एक तो ये आपने 75 डेज की फिटनेस वाली बात कही, अब हम आपसे एआई के बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम आएंगे एआई पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, वेलकम बैक टू 107.8 एफएम रेडियो मधुबन। आप सुन रहे हैं युवा मंच, जिसमें आपके साथ हैं आपके सबसे युवा आरजे रवि, और साथ में हमारे हैं आज के युवा गेस्ट श्री ओम, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि आप सुन रहे होंगे, हमने जाने से पहले कुछ बातें करी थी एआई के बारे में। इसी ब्रेक के दौरान मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा था, एआई आओ आए आ। आपके मन में भी क्या यही गाना आया? लेकिन एआई का मतलब ये नहीं है, एआई का मतलब है, चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं।
1: सो एआई को लेके अभी हम देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है, एंड हम जब भी YouTube वगैरह खोलते हैं ये काफ़ी बार आता रहता है, AI क्या है, ChatGPT क्या है, ये प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, ये लोग पूछते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग YouTube में कुछ भी सर्च करते हो, सपोज़ फॉर एग्जांपल अब जूता खरीदना है, जूता के लिए आप सर्च करते हो कौन सा है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आते हो आपको दूसरे जूतों के ब्रांड के बारे में बताता रहता है। तो ये कैसे होता है? ये सब है AI को लेके।
0: ओम जी, आपने तो मेरे मन की सवाल पूछ ली, बल्कि मैं जो है बहुत ही क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो एक बार जब मैंने क्रिकेट देखा तो उसके बाद से मुझे ये आश्चर्य हुआ कि हर बारी वो क्रिकेट की वीडियोज ही कैसे दिखाता है। अब जाकर मुझे आपकी ये चीज समझ में आई। तो AI के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे काम करता है?
1: सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करता है कि जैसे हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल कि कोई भी एक चीज़ को हम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं उसका पीछे का जो चीज़, मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। तो मशीन क्या करता है कि जब भी हम कोई एग्जांपल सर्च करते हैं वो डेटाबेस में जाता है, उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होता है, जितना भी डेटा होता है, वो लाके आपको जो रोमांचक लगे वो इन्फॉर्मेशन शो करता है। ये कैसे करते हैं? सो इसके पीछे एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। आपका डेटा लेता है, समझता है आपको क्या चाहिए और उसके रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है, रिकमेंड करता है। सो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जैसे कि आप अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हो या आप इंस्टाग्राम कर रहे हो, आप सपोज कोई एक भूत का फिल्म देखे या कोई एक कार्टून का फिल्म देखे ऐसा कुछ, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे आप उसको, आप फिर से वो आपको वही चीज़ें रिकमेंड करता है। तो वो क्या करता है कि आपके सारा डेटा लेता है, चेक करता है कि आपको क्या क्या पसंद है और उसको रिलेटेड क्या क्या बैकएंड में और है वो आपको थोपता है, ताकि आप क्या करो इससे उस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टिको, उस पर ये अमेजन पे टिको ज़्यादा टाइम या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे
0: जी।
1: तो उस टाइप सो इस उसको ये जो पूरा प्रोसेस है इस पर लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: जी जी, अच्छा, पर एक बात बताइए, अगर चलो ये तो हमारे फेवरेट चीज़ों के लिए तो समझ में आ गई, बट आपको अगर उससे हटके या कुछ अलग चीज़ें देखनी हो तो क्या ये भी संभव है उसमें?
1: यस, उसमें ये भी संभव है। हमने देखा है कि सब बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, रिसर्च किए हैं इसको लेके, कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है स्पोर्ट्स, फिर अचानक से वो सर्च करने लगे अबाउट कार्स, तो वो क्या करता है कि स्पोर्ट्स और कार्स को मिलकर स्पोर्ट्स कार्स दिखाता है जिसमें आपको दोनों में रुचि है।
0: अच्छा,
1: एंड कल जाके अगर आपने सपोज सर्च किया Formula 1 जो गाड़ियों का स्पोर्ट्स रेस है, तो उसके रिलेटेड जो क्लॉथिंग ड्रेसिंग सेंस है या उसके रिलेटेड जो फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उसमें, वो सब शो होना स्टार्ट होता है, नॉट ओनली इन यूट्यूब बट इवन इन गूगल और इवन इन अदर लाइक स्पॉटिफाई में म्यूजिक सेट, वहाँ से आने स्टार्ट हो जाता है। सो ये सब इंटरकनेक्टेड है, एंड ये ट्राई करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म में हुकअप करके रख सके, तो ये उनका बिजनेस मॉडल है।
0: अरे वाह, तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट मेंटली फाइन रहने के लिए आप खुद क्या करते हैं?
1: सो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि काफी जो युवा लोग हैं वो इन मोबाइल्स पर बहुत टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं
0: जी,
1: जाने और अनजाने में, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जिंदगी में इंपॉर्टेंट पल होते हैं जो गवा देते हैं लोग जस्ट बिकॉज ये मोबाइल में हुक्ड अप रहते हैं ऑल द टाइम।
0: बल्कि अगर आपको इंटरप्ट करके मैं अपनी बात कहूँ तो कई बार रात को सोते हुए भी ये लगता है कि चलो यार एक यूट्यूब का शॉर्ट्स तो देख के सोएं, और वो करते करते क्या होता है फिर वो रात को काफी टाइम खींच जाता है।
1: हाँ,
0: सेल्फ डिसिप्लिन मेरे ख्याल बहुत जरूरी होती
1: है, बहुत ज्यादा होती है। एंड मैं जब 75 हार्ड चैलेंज कर रहा था तब भी ये एक बहुत बड़ी पाबंदी थी मेरे पे कि ये कैसे मैं ओवरकम करूँ। तो मैंने उस टाइम क्या किया था कि हर हर डिवाइस, हर मोबाइल में, एंड्रॉयड हो कि एप्पल की हो, उनकी एक है डिजिटल वेलबींग करके एक है, मतलब सेटिंग्स पे अगर उस पर क्लिक करें तो वो आपको वार्निंग देती रहती है कि देखो आपने इतना टाइम स्पेंड कर दिया अपने मोबाइल पे। तो इससे क्या होता है ना, एक सेंस ऑफ गिल्टीनेस आप में जनरेट करने की कोशिश किया जाता है।
0: जी, एक एक रुचि की बात बताऊं, अगर आप देखें तो ये स्क्रीन के साइज जो है ये प्रोग्रेसिवली कम होते जा रहे हैं। मतलब मुझे याद है जब बचपन में हम जाते थे 3 घंटे की फिल्म देखने तो सारे 300-350 लोग इकट्ठे बैठ करके और फिल्म देखते थे बड़े से पर्दे पर।
1: जी,
0: वो फिर छोटा होते होते टीवी बना, टीवी छोटा होते होते लैपटॉप बना, लैपटॉप छोटे छोटे होते होते अब तो एंड्रॉयड फोन बन गया जिसके अंदर आप वही सारी चीजें इतने से स्क्रीन पे देखते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आपकी आंखों में एफर्ट उतना ही ज्यादा या स्ट्रेस ज्यादा होगा।
1: राइट। और सिंस आपने इसकी बात की है तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी इसके पीछे रहते हैं, ये जो लोगों को स्क्रीन टाइम में पकड़ के रखने के लिए। तो हम जो जीमेल का देखते हैं या कोई खाने का ऐप जैसे स्विगी वगैरह देखते हैं, उसमें जो आइकॉन्स होते हैं डिफरेंट बटन्स,
0: जी,
1: उनके पीछे भी काफ़ी कैलकुलेशंस किए गए, मेंटल कैलकुलेशंस किए गए थे कि साइकोलॉजिस्ट को यूज़ करके कि कहाँ पे कौन सा बटन प्लेस करें, कहाँ पे कौन सा कैसे कलर करें।
0: अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कौन स्क्रीन पे कौन सी बटन किस फॉन्ट की और किस कलर की होगी और कहाँ प्लेस होगी।
1: हाँ, ये भी पूरा साइकोलॉजी पे डिपेंड करके किया गया ताकि लोग बार बार आते रहे और उस पोजीशन उसको सीमलेसली टच करते रहे।
0: वाह, क्या बात है। इससे जुड़ा एक और इश्यू कल देखा था, जैसे कि अभी तो काफी लोग यूट्यूबर्स भी हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, और कंपनीज क्या है, एडवर्टाइजिंग से ही, लिहाजा यही बात है कि उसी से कमाते हैं। कंपनीज से वो कमाते हैं एड डालने के लिए और आपसे कमाते हैं एड फ्री देखने के लिए।
1: राइट
0: है ना।
1: यस।
0: अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और अब आप देखते होंगे कि जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही तो नेचुरल इंटेलिजेंस कितनी कम हो गई है इन दिनों में, कितना बदल गया है इंसान, है ना। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक बार आपका स्वागत है युवा मंच में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी येट युवा ओम मिश्रा जी हैं साथ में, और हम उनसे बात कर रहे हैं। ही इज एन AI एक्सपर्ट एज वेल एज
1: अ फिटनेस एंथुजियास्ट।
0: हमने बात की थी कि किस तरह से आजकल हमारी जिंदगी में कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और हर वक्त आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में किस तरह से एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कितने की बात है ना, वेरी आयरोनिकल कि मनुष्य ने कंप्यूटर को बनाया और आज कंप्यूटर आपको किसी भी काम करने से पहले पूछता है कि या तो कैप्चा एंटर करो या प्रूव दैट यू आई एम नॉट अ रोबोट, यानी आप अपने आप को एक मनुष्य प्रूव करो। तो कल को ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि कंप्यूटर्स माइट रूल आवर वर्ल्ड, बट इसके लिए हमें अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। और इस सिलसिले में आइए हम ओम जी से पूछते हैं कि हाउ डज ही मेंटेन हिज मेंटल बैलेंस। आप क्या करते हैं अपने मेंटल फैकल्टीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए?
1: जी रवि जी, तो ये जो मेंटल हैबिट्स आ गए अपने पास, सो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब अराउंड 2010 के आर पास मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, उसके बाद ही मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आत्मा क्या होती है
0: जी।
1: एंड उसके बाद मैंने खोजते खोजते मैं शिवानी बहन तक पहुंचा, वीके शिवानी बहन। तो उनके एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि आत्मा जो है, हम सब आत्मा, तब मेरा मन में लगा कि हम जीवित हैं, हम आत्मा भी हैं, ये कैसे हो सकता है
0: जी।
1: तब मैंने और उनके थ्रू मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, और फिर मुझे पता चला कि हमारे घर के पास भी एक सेंटर है ब्रह्म कुमारीज का,
0: बहुत अच्छा।
1: और फिर मैं वहाँ तक गया एंड मैंने 7 डेज के कोर्सेज किए, एंड उसके बाद ही मैं बाबा का ज्ञान में आ पाया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने मुरली सुनना स्टार्ट किया,
0: बहुत सुंदर।
1: स्टार्टिंग में मुझे उतना समझ में नहीं आया क्योंकि सिंधी में था मोस्ट ऑफ इट, एंड मुझे हिंदी आती थी, सिंधी का कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आते थे।
0: अच्छा।
1: पर धीरे धीरे जितना मतलब कंठस्थ होते गए हम एंड उसके अंदर जाते गए, मुझे गहरा समझ में आई मतलब मुरली की। एंड रोज मुरली सुनने के बाद मैं लाइफ में काफ़ी मिरेकल्स होने लगे।
0: अरे वाह। एंड कुछ इसके बारे में कोई कुछ एक एग्जांपल जो शेयर करना चाहिए?
1: का बहुत शौक था जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने, लेकिन मैं कुछ उस टाइम पे IIT JEE के प्रिपरेशन के टाइम पे मैं काफ़ी मोटा हो गया था, एंड आई वाज 120 kgs दैट टाइम। एंड लाइक मेरे क्लास में सब टाइप के लड़के थे, लंबे पतले छोटे मोटे सब थे, एंड सब मैं भागने गया, एंड ताज्जुब की ये बात है कि मैं सिलेक्ट हो गया।
0: अरे
1: फाइनल के लिए,
0: बड़ी खुशी की बात है। तो ये आप एट्रीब्यूट करते हैं अपने उस मेंटल फैकल्टीज की वजह से?
1: यस। मैं खुद शॉक था कि इतना वेट होने के बाद भी, इतने क्लास में इतने टाइप के लोग होने के बाद भी मैं सिलेक्ट हो गया।
0: अरे वाह।
1: एंड फिर मैं गया फाइनल डे में, एंड फाइनल डे हम भागे, एंड आई गॉट 100 meters में गोल्ड मेडल मिला मुझे।
0: क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। वाह वाह वाह वाह। और
1: एंड इसके बाद से ही स्पोर्ट्स पे तो इच्छा थी ही, एंड मैं और एक रोमांचक चीज़ थी कि मैं उसके बाद JEE का एग्जाम दिया, मेंस दे के आया। अब मेंस देने के बाद आई वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो न्यूज़पेपर के थ्रू टैली करते थे आंसर शीट के ठीक हुआ है कि नहीं।
0: अच्छा।
1: और उनको लगा कि मैं पास नहीं होऊंगा, तो मैं दूसरे एग्जाम्स के लिए बैठाने लगे, दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए,
0: मतलब वो एक प्लान बी तैयार करने लगे कि
1: प्लान बी एग्जैक्टली
0: इसमें सक्सेस ना हो तो।
1: यस। तो फिर लेकिन मुझे अपने पे भरोसा था, मुझे बाबा पे भरोसा था।
0: वाह।
1: मैं मेडिटेशन करता गया
0: जी,
1: और फिर जब रिजल्ट आई वो भी शॉक हो गए कि मैं सिलेक्शन हो गई।
0: तो ये पहली बार आपके साथ हुआ कि फिजिकल और मेंटल फैकल्टीज दोनों साथ में ही, 100 meters का गोल्ड मेडल और IIT के एंट्रेंस एग्जाम में।
1: यस।
0: क्या बात है।
1: तो मेंस वैसे मेरा क्लियर हो गया और मैं एडवांस के लिए प्रोसीड किया। तो ये थी मेरी वहाँ। और आज के आज टाइम पे जहाँ पे हम मोबाइल में इतने डूबे हुए हैं
0: जी,
1: तो मैं अपना ये मेंटल हेल्थ संभालने के लिए मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करने के बाद मुरली सुनता हूँ, बाय नॉट फेलिंग इट बाय एनी चांस।
0: वाह।
1: तो इससे क्या होता है कि मैं दिन एक पॉजिटिव नोट में शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे शरीर के चारों तरफ एक गोल्डन कवच आ गई है
0: एक ऑरा, एक कवरिंग है आपके, पॉजिटिव कवरिंग आपके बॉडी के ऊपर।
1: फिर दिन में कुछ भी हो,
0: यानी आपने अपने ख्यालों को इतने सुंदर खूबसूरत तरीके से बनाया है कि वो सारा दिन वो कवच आपके ऊपर ही अवेलेबल रहे। आइए इसी बात पे हम सुनते हैं एक बड़ा सुंदर सा गाना, ख्यालों को यूं खूबसूरत बनाऊं।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ किखाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: वेलकम बैक टू युवा मंच, और आपका युवा आरजे रवि के साथ हैं युवा ओम। अभी जैसे आपने सुना, ख्यालों को खूबसूरत बनाए, जैसे हम देख रहे थे कि आजकल कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा बोलबाला है हमारी ज़िंदगी में, और एक ऐसा स्टेज आ रहा है जब कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। बट कंप्यूटर को बनाया किसने? मनुष्य ने। अगर मनुष्य को कंट्रोल कंप्यूटर्स को करना है तो लिहाजा उसको अपने थॉट को भी कंट्रोल करना है, और थॉट को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है मेडिटेशन, जो हमें ओम जी ने बताया। आइए अभी उनसे पूछते हैं कि वो अपना बैलेंस किस तरह मेंटेन करते हैं, और आगे अगर इस फील्ड में किसी को जाना है तो वो क्या और कैसे जा सकते हैं।
3: सर कौन से फील्ड के बारे में आप बोल रहे हैं? फिटनेस?
2: अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आप तो हरफन मौला हैं। आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी एक्सपर्ट हैं और फिजिकल फिटनेस। आपको श्रोताएं बता दें कि हम दोनों के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट की रखी हुई है, उनके आर्म्स लेंथ के बाहर बैठा हूं ताकि कहीं गलती से नज़दीक ना बैठ जाऊं। वैसे मैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछना चाहता था पहले, कि अगर आज का कोई युवा इस फील्ड में जाना चाहे तो उसको क्या, व्हाट शुड ही फॉलो, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे इसको परस्यू करना चाहिए?
3: जी रवि जी, सो किसी को अगर इस फील्ड में आना है डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों में, तो वो सबसे पहले अपना पाइथन पढ़ना स्टार्ट करें। पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है।
2: पाइथन? आज तक तो पाइथन में सिर्फ सांप को समझता।
3: एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पाइथन है, तो उसको लोग पढ़ना स्टार्ट करें। उसके लिए यूट्यूब पे काफ़ी फ्री रिसोर्सेज हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, लोगों को पैसे दे के खर्च करके पढ़ने की जरूरत नहीं।
2: आपका कहना है कि यूट्यूब सिर्फ मेरे जैसे क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए नहीं है, इंस्ट्रक्शनल भी है।
3: जी जी,
2: सबसे पहले पाइथन पढ़ना शुरू करें, उसमें से इंस्ट्रक्शनल वीडियोस देखना शुरू करें। आगे
3: उसके बाद एक कैगल करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कम्युनिटी बैठती है।
2: अच्छा।
3: वहाँ पे लोग अपना कोड वगैरह डालते हैं और लोग वहाँ पे दूसरों का कोड भी पढ़ते हैं, और वहाँ पे लोग कॉम्पिटिशन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं।
2: अरे वाह।
3: और उससे नौकरियाँ भी लगती हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, तो
2: यानी सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर ही आपकी नौकरी तक लग सकती है?
3: यूट्यूब में पढ़ के कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके
2: जी।
3: हाँ, जरूर। और उसको छोड़ के भी, और एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन बोल के, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म।
2: ओके।
3: तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी जॉब पोस्टिंग आती है। ये
2: तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है?
3: हाँ हाँ हाँ।
2: अच्छा,
3: तो लोग अपना रेज्यूमे बना सकते हैं एंड प्रोफाइल वहाँ पे पोर्टफोलियो बना के डाल सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए।
2: जी,
3: तो उसके थ्रू काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बाकी कंपनी से काफ़ी करियर पेजेस होते हैं।
2: अच्छा।
3: उसमें भी डिस्प्ले होता है कि किसको AI इंजीनियर चाहिए या AI कंसल्टेंट चाहिए, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और
2: तो यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, तो ये क्या प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, या जैसे अगर कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया तो जैसे पुराने ज़माने में होता था, चलो टाटा बिरला ज्वाइन कर लिया तो थ्रू आउट आप उस कंपनी के साथ रहेंगे, वैसा होता है, या आजकल प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है कि एक प्रोजेक्ट दिया आपको वो ख़त्म, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट सा?
3: या तो दो टाइप के जॉब होते हैं, एक तो फुल टाइमर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं
2: जी,
3: लेकिन उस जो जॉब डिस्क्रिप्शन GD जिसे बोलते हैं उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि वो जॉब किस टाइप का है। मोस्टली जो जॉब्स के लिए लेते हैं लोग वो फुल टाइमर्स जॉब्स होते हैं।
2: अच्छा।
3: और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के लिए भी वहाँ पे काफ़ी naukri.com हो गया कि monster.com हो गया, उन सारे वेबसाइट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस मिलते हैं, बट जनरली लोग जो जाते हैं वो फुल टाइमर्स के लिए जाते हैं, एंड मोस्टली जॉब्स जो होते हैं वो फुल टाइमर्स की होती है।
2: तो एक बात बताइए, मतलब ये अब जैसे मुझे अचानक कोई बोले कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट तो ओवरनाइट तो नहीं आ सकता?
3: नहीं, नहीं।
2: तो ये बल्कि स्कूल टाइम से ही किसी बच्चे की प्रवृत्ति अगर ऐसे हो तब इट विल बी ईजियर, या ऐसा फील्ड है जो आप से यू कैन ब्लूम लेट, आप बाद में भी आ सकते हो?
3: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फील्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको बचपन से ही कंप्यूटर में होना है। आप इवन आपका किसी का करियर अगर एग्रीकल्चर में है
2: जी,
3: या किसी का करियर अगर इसमें क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल मटेरियल का है, सिविल इंजीनियर है, वो लोग भी आ सकते हैं इसमें. जस्ट आपको पाइथन और पाइथन में आपको थोड़ा पॉलिश करना है अपना स्किल को
2: जी,
3: और उसके बाद थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के आपको कैगल हो गया या हो गया लिंक्डइन पे अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा. उसके थ्रू आप हाईलाइट कर सकते हो कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे कि जॉब के लिए.
2: अच्छा, तो इसमें स्टार्टिंग में कई रिजेक्शंस भी होती होंगी.
3: ज़रूर.
2: क्योंकि कहते तो हैं ट्राई ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड. अच्छा, अभी हम आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे,
3: फिटनेस,
2: फिजिकल फिटनेस.
3: Yes.
2: अब देखिए हमारे कंट्री भी धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है अभी. जैसे आप देख रहे हैं एक जमाना वो था जब एक सिंगल मेडल लाने के लिए ओलंपिक्स में हम पूरी मतलब देश एक हो जाता था. मुझे याद है 96 में लियांडर पेस ने टेनिस में, 2000 में शायद करनाम मलेश्वरी जी थी जो वेटलिफ्टिंग
3: राइट
2: है ना, और उसके बाद शायद हर साल मतलब हर चार साल में एक या दो मेडल ही थे. और बलगत पिछले ओलंपिक्स में ही शायद हमने 6 या 7 जीते थे, अभी तक हम डबल फिगर्स तक नहीं पहुंच पाए.
3: बट
2: एक चीज ये जरूर हो रहा है कि द कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. तो फिजिकल फिटनेस के लिए आप अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहे तो आप क्या सलाह देंगे उसको?
3: जरूर. सो फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉलेजेस के लिए स्कूल्स के लिए एक स्पोर्ट्स कोटा करके रखा है.
2: अच्छा,
3: ताकि लोगों को उसके थ्रू जॉब्स मिल सके आगे जाके. और उसको छोड़ के कॉलेजेस एंड
2: पर इसके लिए तो आपको कुछ एक लेवल तक कंप्लीट किया होना चाहिए ना, तभी तो आप उस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे.
3: वो कोटा आप अगर आपने स्कूल लेवल में या इंट्रा स्कूल लेवल पे आपने किया है तो आप उसके लिए लेवल अप हो सकते हो. बाकी उसको छोड़ के भी अगर आप कभी काफ़ी कम्युनिटीज होते हैं, जैसे फिटर कम्युनिटी एक है स्पोर्ट्स को लेके फिटनेस को लेके, वो काफ़ी लोगों को इंकरेज करती है कि वो आगे चल के स्पोर्ट्स को प्रमोट करे. नॉट ओनली लाइक मतलब क्या रीजन वाइज स्टेट वाइज इवन अंडर 19 अंडर 20 ऐसे करके वो लेवल अप करते रहते हैं. और बाकी एक है कि मतलब कम्युनिटीज तो एक हो गई स्पोर्ट्स के लिए, बाकी अब स्टेडियम्स काफ़ी हैं जो स्टेडियम्स के थ्रू भी लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलती है. स्टेडियम्स एंड इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी ट्रेनिंग्स होती है. जैसे मुंबई काफ़ी फेमस है क्रिकेट्स के लिए, एंड आप हैदराबाद आओगे तो इट्स वेरी फेमस फॉर बैडमिंटन. यहाँ पे गोपीचंद बैडमिंटन है,
2: वेरी नाइस.
3: सो उस टाइप का मतलब हर सिटी में एक एक स्पेशलिटी होती है स्पोर्ट्स को लेके. एंड अब कोलकाता जाओगे तो फुटबॉल को भी वो काफी इंकरेज.
2: मैं बोल रही वाला था अब कोलकाता और फुटबॉल का नाम अभी तक आया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है.
3: सो वहाँ पे डिफरेंट क्लब्स होती हैं, क्लब्स जहाँ पे लोगों को इंकरेज करते हैं. एंड और एक है कि एक यूथ क्यूबिनेटर करके एक है कम्युनिटी जो स्पोर्ट्स के लिए हेल्प भी करती है लोग, यूथ क्यूबिनेटर्स करके.
2: ओके, तो ये तो आपने जनरल बात बताई. अब मैं बिल्कुल आप पे ही आता हूँ. आपने हैदराबाद की बात बताई, आपने कलकत्ता की बात बताई, तो आप अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाउ यू केम टू बी एसोसिएटेड विद दीज टू सिटीज?
3: राइट राइट. सो कमिंग टू कोलकाता, मैं लाइक इट्स द प्लेस वेयर माई पेरेंट्स वर्क, तो वहाँ से मैं तो वहाँ पे मेरा स्कूलिंग वगैरह हुई थी. तो उधर मेरी काफ़ी स्पोर्ट्स के लेके लाइक फुटबॉल में मेरी काफ़ी रुचि रही है बचपन से, फुटबॉल एंड क्रिकेट. तो मैं काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग था अपने कॉलेज में सॉरी स्कूल में क्रिकेट में, इंट्रा क्रिकेट एंड क्रिकेट खेलने में. बाद में जाके मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट आ गई, तो मैं काफ़ी फुटबॉल इंटर हाउस हो गया, इंटर स्कूल हो गया, फुटबॉल में भी कंट्रीब्यूट करने लगा. एंड जैसे जैसे मैं वहाँ से निकल के यहाँ हैदराबाद आया, बिकॉज मेरी जॉब लोकेशन हैदराबाद थी
2: जी,
3: तो मैं उसके बाद मैराथन्स में काफ़ी इंटरेस्ट होने लगा. तो लास्ट ईयर में 21 किलोमीटर्स की मैराथन कंप्लीट की.
2: यहाँ पे मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा. मैराथन भी मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी मतलब अप एंड कमिंग, बहुत पॉपुलर हो रहा है. मैंने देखा है स्पेशली मिडिल लेवल एज के लोग भी आजकल रनिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं. क्या कारण हो सकता है इसका? इज इट बिकॉज इट इज लाइक वेरी चीप, You don't need much training, ऐसा कुछ है? क्योंकि देखिए कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए आपको जैसे कुछ बैट बॉल रैकेट कुछ तो खरीदना पड़ता है, लेकिन रनिंग के लिए क्या है, आपको रनिंग शूज खरीद लिए तो, और आपके अंदर जिगर होना चाहिए.
3: राइट. सो मैराथन को लेके ना रिसेंटली वर्ल्ड वाइड एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है. जैसे कि आपको पता होगा कि आयरन मैन करके एक कॉन्सेप्ट है.
2: जी जी.
3: जो पहले आती है मतलब पहले होता है उसमें अपना साइकिलिंग, फिर स्विमिंग, फिर रनिंग.
2: जी,
3: सो रनिंग जो है ना, मतलब अभी काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, बहुत सारे एनजीओज भी हैं, वो लोग कम टुगेदर करके डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं रनिंग को फोकस करके. जैसे कि एक पिंक मूवमेंट हुई थी पुणे में,
2: जी,
3: वो ब्रेस्ट कैंसर को बचाने के लिए उसके हाईलाइट करने के लिए हुई थी, तो वो भी मैराथन के बेसिस पे हुई थी हर साल.
2: बल्कि यहाँ फिर से थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, जैसे आपने क्रिकेट की बात कही, तो ग्लेन मैकग्रा वो हर साल अपने वाइफ जो कि ब्रेस्ट कैंसर से शी हैड डाइड, उनके बिहाफ पे एक टेस्ट हमेशा वो खेलते हैं, जिसमें वो उसको पिंक टेस्ट भी बोलते हैं.
3: राइट राइट राइट,
2: बिकॉज आई थिंक द कलर पिंक इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर.
3: यस यस,
2: सॉरी, हाँ मैंने आपको इंटरप्ट किया था. बताए.
3: और लास्ट ये है कि अभी एक रिसेंटली हैदराबाद में भी एक डेविल सर्किट करके स्टार्ट हुई है, जहाँ पे डिफरेंट पीपल ऑफ मैराथन दे कम टूगेदर एंड दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर टू सी लाइक हु इज द फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आयरन मोस्ट मैराथन पर्सन इन द वर्ल्ड. सो हैदराबाद इंडिया में, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, इसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं. और इसको छोड़ के भी अभी इंडिया में एक इंडिया लेवल का मैराथन भी आने वाला है, जहाँ पे लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी एक मैराथन होगी, लंबा मैराथन, तो उसके भी अभी प्लानिंग चालू है मैराथन कम्युनिटी के अंदर.
2: पर एक बात बताइए, इतनी लंबी मैराथन हो भी सकती है? मैराथन मतलब एज इन 42 का ही होता है ना?
3: राइट राइट राइट, 42 का होता है, लेकिन ये क्या है कि एक ग्लोबल लेवल पे नया इंडिया के अंदर एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ताकि कुछ वंदे भारत मैराथन उसका नाम होगा ऐसा, जहाँ पे वो लोग मतलब नॉट ए सिंगल डे, ब्रेक्स होंगे, चेक पॉइंट्स होंगे, चेक पॉइंट्स कवर करते हुए मैराथन के लोग आएंगे लास्ट तक. तो जैसे कि अल्ट्रामैन है, अल्ट्रामैन में क्या होता है कि पहले वो जाते हैं साइकिलिंग करके, साइकिलिंग करने के बाद वो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करने के बाद लास्ट का पड़ाव जो होता है वो भागने का होता है, 17 घंटे के अंदर करना होता है. सिमिलरली अल्ट्रामैन एक आया है जो 3-4 दिन तक स्ट्रेच करता है मैराथन,
2: तो एक इवेंट एक दिन में, ऐसे
3: ऐसे इस टाइप का आई. तो सिमिलरली इंडिया में एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं उसको, जो कश्मीर टू कन्याकुमारी का एक रनिंग होगा, उसमें स्विमिंग होगा, उसमें इवेंट ये होगा कि क्या बोलते हैं, बाइकिंग होगा, तो ये सब मिला के कॉम्पिटिशन आने वाला है.
2: वेरी नाइस. तो हमने सुना आपसे कि आप अपना फिजिकल फिटनेस और मेंटल बैलेंस दोनों कैसे मेंटेन करके रखते हैं, तो श्रोताओं आइए एक गाना सुन लिया जाए, कर्म करो ऐसे. अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह मेंटल और फिजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है, ताकि आप ऐसे कर्म करें ताकि लोग आपको याद रखें. आप सुन रहे हैं युवा मंच 107.8 FM.

0: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर युवा मंच, और आज हमारे साथ जुड़े थे ओम मिश्रा जी, जो कि न केवल एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं बल्कि फिजिकल फिटनेस के एक्सपर्ट भी थे, और उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से हमें बताया कि किस तरह अपनी बॉडी को फिट, माइंड को ट्यून्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अगर किसी ने जाना है तो कोई युवा किस तरह बिना पैसे खर्च किए आराम से कैसे उस फील्ड में जा सकता है। यानी उन्होंने आम के आम, गुठलियों के दाम दोनों कवर करते हुए बड़े प्यार से बताया, पर मुझे लगता है एक सेशन इनके लिए कम था। मुझे खुद भी आज इसको होस्ट करते हुए मैंने खुद कई ऐसी नई चीज़ें सीखी जो मुझे कभी वैसे ही पता न थी। तो ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना इन ओम मिश्रा जी को हो सकता है हम बाद में भी बुलाएं। दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा अगली बार ज़रूर बताइएगा, और हमें रहेगा आपके फ़ोन का इंतज़ार 94 1415 1415 पे, अगली बार ज़रूर कॉल करिएगा। तो आज हम लेते हैं अलविदा आपसे युवा मंच पर, और हम करते हैं धन्यवाद ओम मिश्रा जी का। ओम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच वंडरफुल इनसाइट्स विद अस, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अवेलेबल रहेंगे, कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े। अच्छा, बिफोर एंडिंग मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू लीव विद अस?
1: जरूर रवि जी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि हम जो इतना इस आधुनिक दुनिया में इतना खो जा रहे हैं, कभी कभार हम अगर अपना थोड़ा सा भी टाइम अपने फिटनेस को दें, इवन इफ लाइक थोड़ा सा, मतलब 15 मिनट भी हो, 10 पुशअप कर लो या थोड़ा सा जॉगिंग के चले जाओ, तो इससे क्या होता है कि पूरा बॉडी ना वार्म अप रहती है नेक्स्ट डे के लिए। तो बस यही थोड़ी सी गुजारिश है लोगों से कि वो
0: आपके इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, आजकल फोन स्मार्ट हो गया है और आदमी डंब हो गया है। ये बात ना हो। तो यहाँ हम क्लोज करते हैं आज का युवा मंच प्रोग्राम, और ओम जी को थैंक्स देते हुए आप सभी सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: छू लो उस गगन को। गुड इवनिंग रेडियो मधुबनी 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूं और आपके लिए आज कार्यक्रम में बंकिम चंद्र चैटर्जी के जन्मदिन के साथ साथ उनसे जुड़ी बातें जरूर लेकर आई हूं। जी हां, शताब्दी 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकांड विद्वान और महान कवि और उपन्यासकार 1874 में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना करने वाले इस व्यक्तित्व के विषय पर कुछ जानकारियां अवश्य देने वाली हूं। साथ ही साथ कविता भी लेकर आऊंगी, आज पूछूंगी आपसे सवाल भी, कहानियां भी दो आप तक लेकर आऊंगी और बीच बीच में आपसे बातें भी करती रहूंगी। हमारे साथ जुड़े रहना, सुनते रहना, मुस्कुराती रहना।
1: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए।

इस खूबसूरत गीत के साथ साथ मैं मोना वापस आ गई हूँ और आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। बात कर रहे हैं अमेजिंग जानकारी से जुड़ी हुई। 26 जून का दिन है और ये विशेष दिन क्यों? क्योंकि 1838 में इनकी मृत्यु हुई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकांड विद्वान तथा महान कवि और उपन्यासकार थे। 1874 में प्रसिद्ध देशभक्त गीत वंदे मातरम की इन्होंने रचना की, जिसके बाद आनंद मठ नामक उपन्यास में इसे शामिल किया गया। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इस गीत को गाया गया। बांग्ला भाषा में के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ये दिन विशेष है। बंगाल के 26 परगना जिले के कंठालपाड़ा नामक गांव में एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। उपन्यासकार तो ये थे ही, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत सारी चीजों को लिखे। इन्होंने दुर्गेश नंदिनी नाम का जो एक उपन्यास लिखा, उसको क्या कहें, उसमें बहुत सारी चीजें बेहतर रूप से प्रदर्शित की। बंकिम चंद्र का जब जन्म हुआ, तब बांग्ला साहित्य का न तो कोई आदर्श था, न ही रूप या सीमा का कोई विचार। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता होने के नाते वे बड़े सम्मान के साथ सदा याद किए जाएंगे। उनकी शिक्षा बांग्ला के साथ साथ इंग्लिश और संस्कृत में भी हुई। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवाएं भी की, परंतु राष्ट्रीयता और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भी भर रहा था। युवा अवस्था में उन्होंने एक मित्र का इंग्लिश में लिखा हुआ पत्र बिना पढ़े एक टिप्पणी के साथ लौटा दिया, इंग्लिश न तो तुम्हारी मातृभाषा है और न मेरी। सरकारी सेवा में रहते वो कभी अंग्रेजों के दबाव में नहीं आए। उनके कई उपन्यास आज भी लोगों तक पहुंचे हुए हैं। आनंद मठ, कपाल कुंडलिनी, मृणालिनी, वृक्ष, विश्ववृक्ष, कृष्णकांत, रजनी, चंद्रशेखर, ये कई उपन्यास प्रकाशित भी हुए और वंदे मातरम का राष्ट्रगीत देश दुनिया तक प्रचलित हुआ। चलिए दोस्तों, उन्हें याद करते हुए एक छोटी सी कविता बाद में पेश करती हूँ, लेकिन उससे पहले ताकत बड़ी है मुस्कान की ये मीठी आवाज आपके लिए लेकर आती हूँ उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन उससे पहले आज का सवाल, इनमें से कौन सा शहर उस देश की राजधानी है जिसकी भारत से भूमि सीमा नहीं लगती है? जी हाँ, भारत से उनकी भूमि की सीमा नहीं लगती है। इनमें से वो कौन सा शहर है, उस देश की विशेष राजधानी है जिसकी भारत की भूमि से सीमा ही नहीं लगती? ए टोक्यो, बी काठमांडू, सी बेजिंग। सही जवाब झटपट देना 9414151415। टोक्यो जापान की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है और बेजिंग चीन की राजधानी है। इन तीनों में से, ये तीनों एक्चुअली किसी देश की राजधानी है और इन देशों का भारत की भूमि से किसी का संबंध जुड़ा हुआ है या भारत की भूमि को टच करता है और किसी का नहीं, तो वही ढूंढ के आपको बताना है। 9414151415 पर बताना है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह दीजिए
2: वेलकम बैक दोस्तों। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं उड़ान कार्यक्रम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यारी सी कविता आप तक पहुंचाते हैं। बंकिम चंद्र चैटर्जी भारत के महान साहित्यकार और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता रहे। उनकी अमर रचनाएं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों में असीम देशभक्त और ऊर्जा का संचार किया। बंकिम चंद्र चटर्जी थे एक भारतीय महान, जग में ना था कोई उनके समान। वंदे मातरम का दिया है हमको अमूल्य दान, स्वतंत्रता आंदोलन में दिया साहित्य का योगदान। बंगाल की पावन माटी के वे अनमोल रतन थे, उनको जान से भी प्यारा था अपना यह वतन। आनंद मठ उपन्यास की उन्होंने की रचना थी, देशभक्त को जगाना ही था उनका सपना भी। सुजलाम सुफलाम की जब उन्होंने बही धारा, गुलाम भारत के हर कंठ ने उसे सहर्ष पुकारा। वह गीत नहीं स्वतंत्रता का था उद्घोष, वह एक गीत नहीं स्वतंत्रता का था उद्घोष, जिसने जगा दिया सोए हुए जन का भी जोश। साहित्य की दुनिया में उनका सदा रहेगा मान, बंकिम चंद्र चटर्जी को कोटि कोटि देशवासियों की तरफ से प्रणाम। जी हाँ, नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे उड़ान और आज का पुनः सवाल आप दोस्तों के लिए, इनमें से वो कौन सा शहर है जो किसी देश की राजधानी है और जिसकी भारत से सीमा नहीं लगती? आपको ये सवाल का जवाब देना है 9414151415 पर। आप सुन रहे उड़ान, सुनते रहो मुस्कुराते।
3: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
4: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सायोनारा सायोनारा। जी हाँ, ये गीत सीधे उसी देश से पहुंचाए हैं जहाँ का ये विशेष गीत है। और इस गीत में आई थिंक प्रोबेबली जो हीरोइन थी वो आशा पारेख थी। खैर, इनमें से कौन सा राज्य शहर उस देश की राजधानी है जिसकी भारत से सीमा नहीं लगती? ए टोक्यो जापान, बी काठमांडू नेपाल, सी बेजिंग चाइना। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। बुद्धि की जीत। अब सीधे कहानी आप तक पहुंचा रही हूँ आज के उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: इसी गांव में रमेश नाम का एक चतुर किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ छोटे से घर में रहता था। रमेश के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह फसल उप जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश बुद्धि का बड़ा ही तेज था। वह आसमान में देखकर बता देता था कि आज बारिश होगी या नहीं। इसी कारण गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। तब एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके खेत में सुमेर सिंह नाम का गांव का जमींदार आया।
2: रमेश भाई, आखिर तुम क्यों इस छोटे से खेत में अपना पसीना बहा रहे हो? आखिर तुम कितना कमा लेते हो इस छोटे से खेत में फसल उप जाकर? मैं तो कहता हूं तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो और मेरे यहां काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी कीमत भी दे दूंगा और मजदूरी में तुम्हें 200 रुपए दूंगा।
1: जमींदार का खेत रमेश के खेत से जुड़ा हुआ था, इसलिए जमींदार रमेश की जमीन को किसी भी तरह से हथिया लेना चाहता था। लेकिन रमेश अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहता था। तब रमेश ने जमींदार से कहा,
3: जमींदार साहब, मैं इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। अगर मैं यह जमीन आपको दे दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो भूखा मरना पड़ेगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं यहाँ खेत को कभी नहीं बेचूंगा। यह खेत मेरे दादाजी की निशानी है। जमींदार साहब, मैंने एक तरकीब निकाली है। मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि मुझे दुगनी कमाई होगी। और देखना, आप भी किसी दिन मैं आपका वाला खेत भी अपने खेत में मिला लूंगा।
1: जमींदार रमेश की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा,
2: अरे बाप रे, अब ये कौन सी खेती करेगा कि इसकी फसल दुगनी हो जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। ये तो वैसे भी बड़ा चतुर आदमी है। अरे रमेश, वो सब तो ठीक है, मगर तुम कौन सी खेती करने जा रहे हो?
3: ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरे पास जमीन बहुत कम है, इसलिए मेरा हिसाब बैठ नहीं रहा है। आज रात मैं इसी खेत में आकर हिसाब लगाऊंगा।
1: इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। ये बात जमींदार के सर में दर्द देने लगा। वह सोच रहा था कि कौन सी ऐसी फसल है जो कम खेतों में दोगुनी हो जाएगी।
2: मुझे रमेश के घर जाकर पता लगाना पड़ेगा। मैं अब भी उसके घर जाता हूँ।
1: शाम हो चुकी थी। रमेश फावड़ा लेकर अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है,
4: ये क्या, रात में फावड़ा लेकर कहाँ जा रहे हैं?
3: क्या सुधा, तुम शांत रहो। जोर जोर से बोलकर गांव वालों को जगा दोगी क्या? क्या तुम्हें पता है मैंने कम खेत में ज्यादा फसल होने वाली एक तरकीब निकाली है? तुम देखना, मैं इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि 5 साल में भी खत्म नहीं होगा।
1: रमेश की बात जमींदार एक पेड़ के पीछे से छिपकर सुन रहा था। जमींदार के दिल दिमाग में बेचैनी छा गई। वह सोच रहा था कि ऐसी कौन सी खेती है जो कम खेत में दुगना हो जाएगा। इसलिए जमींदार भी रमेश के पीछे पीछे खेत पर चला गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगा। रमेश ने कहा,
3: कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? यह जमींदार का खेत भी ना मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अगर मेरे खेत का फसल ज्यादा हो गया तो जमींदार के खेत में चला जाएगा और फिर जमींदार बिना मेहनत के मेरी फसल ले लेगा। इसलिए मैं जमींदार से कहूंगा कि अपने खेत में दीवार बना लो ताकि मैं फसल अपने ही खेत में लगा सकूं।
1: जमींदार यह बात सुनकर कहने लगा,
2: अच्छा बेटा, तो यह बात है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। तू खेती तो अपने खेत में करेगा, मगर फसल को काटूंगा मैं।
1: यह कहकर जमींदार वहां से अपना घर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही रमेश जमींदार के घर गया।
3: जमींदार साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था, मुझे एक जरूरी बात आपसे करनी।
2: हाँ हाँ, तुम कोई भी जरूरी बात मुझसे कहो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूंगा। ठीक है, बात खत्म, तुम जाओ अपने घर, मुझे और बहुत से जरूरी काम करना है।
3: लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो आपसे ऐसा नहीं कहा, फिर आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
2: हाँ, पता है मुझे तुम मुझसे यही कहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी कम है और तुम्हारी दुगनी फसल का हिसाब तुम्हारे वह छोटे से खेत में नहीं बैठ रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो।
1: रमेश वहां से अपने घर वापस चला गया। फिर रात हुई तो जमींदार फावड़ा लेकर अपने खेत पर जाने लगा।
2: अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत की मेड़ को काट कर आगे बढ़ा देता हूँ, ताकि रमेश को पता ना लगे और वह मेरे खेत में भी फसल लगा देगा और मुझे भी इसका लाभ मिल जाएगा।
1: इतना कहकर जमींदार रात भर अपने खेत में काम करता रहा और अपने खेत की मेड़ को आगे बढ़ा दिया। अगले दिन सुबह होते ही रमेश और उसकी पत्नी अपने खेत पर काम करने के लिए जाने लगे। खेत में पहुंचकर रमेश की पत्नी ने कहा,
4: सुनो जी, आज अपना खेत कुछ बड़ा सा लग रहा है।
3: हाँ सुधा, लग तो मुझे भी लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली, अब तो और भी ज्यादा फसल लगेंगे। चलो अब खेतों में बीज बो देते हैं।
1: अब रमेश और उसकी पत्नी मिलकर दोनों फसल की बीज बोने लगते हैं। वे दोनों पूरे खेत में बीज बोने के बाद फसल होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। जब फसल तैयार हुई तो वह धान की फसल थी। पूरा खेत धान की फसल से भर गया। जब फसल काटने की बारी आई तब जमींदार ने रमेश से कहा,
2: रमेश जरा रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें पता है जिस खेत में तुमने फसल लगाई है वह खेत की बनी हुई जमीन मेरी है।
3: क्या बात करते हैं जमींदार साहब, मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी, फिर आपने अपने खेत की मेड़ को काट कर जगह बढ़ा क्यों दिया?
2: रमेश मुझे वह सब नहीं पता, लेकिन यह बड़ी हुई जगह मेरी है, मैंने ही खेत की मेड़ को काट कर आगे बढ़ा दिया था, ताकि तुम्हारी फसल की जड़ मेरे खेत में आ जाए।
3: अच्छा तो ये बात है, लेकिन जमींदार साहब मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम था और कम खेत में दुगनी फसल कैसे संभव होगी, लेकिन आपने तो मेरे मन की बात सुन ली और कर भी दिया। जमींदार साहब, न मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा, न आपके पास आया, तो आपने अपने खेत की मेड़ को आगे बढ़ाया क्यों? इसलिए इस फसल पर आपका कोई हक नहीं है, जहां तक मेंढ है वहां तक आपका खेत, बाकी मेरी समझ गए जमींदार साहब।
1: रमेश की बात सुनकर जमींदार आश्चर्यचकित हो गया और रमेश के दिमाग को मान गया, लेकिन फिर भी जमींदार हार मानने वालों में से नहीं था और इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। तब कुछ महीनों बाद रमेश में बीमार पड़ गया और गेहूं की फसल की बुआई होने लगी। समय निकला जा रहा था। जमींदार उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर गया।
2: क्यों रमेश, देखा ना बेईमानी का नतीजा, पड़ गया ना बीमार, अब तुम्हारे खेत को कौन जोतेगा? गेहूं की बुआई का समय निकल जा रहा है, अभी तक तो तुम्हारे खेत में हल भी नहीं चला, अब देखो तुम भूखे मरोगे, तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं होगा।
3: मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा, मेरे पास दादाजी का खेत है ना, वह मुझे कभी भी भूखा नहीं मरने देगा, ऐसा वरदान है उसे खेत में। कैसा वरदान रमेश, मैं क्यों बताऊं आपको, आप जाओ यहां से।
1: रमेश की आश्चर्यजनक बात सुनकर एक बार फिर जमींदार के सर में दर्द हो गया। जमींदार रमेश के घर से गया तो सही, मगर बाहर जाकर वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। शाम हुई तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। रात में रमेश की पत्नी ने पूछा,
4: सुनो जी, दादाजी हमें ऐसा कौन सा वरदान देकर गए हैं जो हमें भूखा नहीं मरने देगा, और अभी तक तो हमारे खेत में हल भी नहीं चला है, फिर ये सब क्या है?
3: अरे तुम जोर जोर से चिल्लाओ मत, ये बात गोपनीय है, अगर कोई सुन लिया तो हमारा राज सबको पता चल जाएगा और हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, हमारे खेत में दादाजी ने सोने से भरा एक मटका छुपा दिया था जिसे हमने खोद कर निकालना है, इसलिए मैंने अभी तक अपने खेत की जुताई नहीं की। करूं खेती करके जब इतना सारा धन मिल ही जाएगा तो।
2: अच्छा बेटा, अब तू देख, आज रात को ही तेरे खेत से सारा सोना निकाल लूंगा, फिर देखता हूँ कैसे तू जिंदा रहता है और क्या खाता है।
1: फिर क्या था, जमींदार रात को ही रमेश के खेत में फावड़ा लेकर पहुँच गया।
2: ऐसा करता हूँ कि हल से पूरा खेत ही जोत देता हूँ, फिर आसानी से मुझे मटका मिल जाएगा।
1: फिर जमींदार ने हल चलाकर सारा खेत जोत दिया, पर कोई मटका नहीं मिला। जब रात बीती और सुबह हुई तो जमींदार गुस्से में आकर रमेश के घर गया।
2: क्यों रे रमेश, कहाँ है सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे खेत में सोने का मटका है। मैंने सारा खेत तो खो दिया पर मुझे कहीं भी मटका नहीं मिला।
3: कहीं नहीं मिला, पर ऐसा कैसे हो सकता है जमींदार साहब? आपने पूर्व उत्तर की दिशा में सही से नहीं देखा होगा, मैं अभी जाकर देखता हूँ।
2: अरे बेवकूफ, जाते कहाँ हो, मैंने सभी जगह पर खुदाई करके देख लिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पर मुझे कहीं पर भी मटका नहीं मिला।
3: क्या आपने सारा खेत जोत दिया है? अरे ओ भाग्यवान, जल्दी से बीज लाओ, जमींदार साहब ने हमारा पूरा खेत जोत दिया है, अब मुझे हाल चलाने की जरूरत नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान गरीबों की सुन ही लेते हैं।
2: अरे ओ बेवकूफ, तुमने मुझसे झूठ कहा था, वहाँ कोई सोने का मटका नहीं है।
3: मालिक, अगर वहाँ कोई सोने का मटका होता तो मैं वहाँ सोना निकालकर गांव का जमींदार नहीं बन जाता क्या? वह तो मैंने अपनी पत्नी सुधा का दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, यह बात आपको किसने बताई?
1: जमींदार लड़खड़ाते हुए बोला,
2: मुझे कौन बताएगा, मैं क्या तुम्हारे घर पे था जो मुझे पता चल जाएगा? वह तो मुझे सपने में आया था, इसलिए मैं तुम्हारे खेत में सोने का मटका ढूंढने गया था।
3: अच्छा, तो यही बात है।
1: बेचारा जमींदार वहाँ से बेवकूफ बनकर चला गया। इस तरह से रमेश ने अपने खेत को बड़ा भी कर लिया और उसे जमींदार से अपने खेत में हल भी चलवाया। अगर बुद्धि हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए

0: अनादि अनंता, न मन हूँ न बुद्धि न चित अहंकार। इस खूबसूरत गीत के बाद आगे बढ़ते हैं, पुनः एक बार सवाल और दोहराते हैं। इनमें से कौन सा शहर उस देश की राजधानी है जिसकी भूमि भारत से नहीं लगती है? जी हाँ, आपके ऑप्शन है टोक्यो जापान, बी काठमांडू नेपाल, सी बेजिंग चाइना। सही जवाब झटपट देना 9414151515 पर देना। आलस्य इंसान को बर्बाद कर देता है। चलिए छोटी सी कहानी और लेकर आ रही हूँ उड़ान में।
1: एक राजा के राज्य में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही बड़ा आलसी था। वो कोई भी काम समय पर नहीं करता था, हर काम को टालता रहता था। यहाँ तक कि वो इतना बड़ा आलसी था कि उस राज्य को वहां के राजा के नाम से नहीं बल्कि इस आलसी आदमी के नाम से जाना जाता था। अब आलसी होने की वजह से वो आदमी बहुत ही गरीब था, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं किया करता था। और अगर कोई इंसान उसे काम पर रखता भी तो ये आदमी अपने आलसी होने की वजह से काम को ठीक से नहीं करता था। तो एक दिन वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, तभी उतने में ही वहां से उस राज्य के राजा की सवारी जा रही थी। जब राजा ने इस आदमी को पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा तो उसने इस आदमी को पहचान लिया कि ये तो वही आदमी है जिसकी वजह से हमारा पूरा राज्य दूसरे राज्यों में बदनाम है। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस आदमी को सोना चांदी दे देता हूं, जिसके बाद ये आदमी धनी हो जाएगा और हमारा राज्य जो बदनाम है इसकी वजह से उसका भी नाम ठीक हो जाएगा। तो राजा उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को जगाते हुए उससे कहता है कि तुम एक काम करो, आज सूरज डूबने से पहले राज्य दरबार में आ जाना और जितना तुमसे हो सकता है उतना सोना चांदी राज्य दरबार से लेकर चले जाना। अब यह सुनने के बाद वो आदमी बहुत ही खुश हो जाता है और वो तुरंत भागते हुए वहां से अपने घर पर जाता है और ये सारी बात वो अपनी बीवी को बताता है। जब उसकी बीवी ये सुनती है तो उससे कहती है कि तुम अभी जाओ और सोना चांदी लेकर आओ। लेकिन वो आदमी अपनी बीवी से कहता है कि पहले तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि मैं अभी बहुत भूखा हूँ और मेरे अंदर अभी कुछ भी एनर्जी नहीं बची है। अगर मैं कुछ खा कर जाऊंगा तो और भी ज्यादा सोना चांदी दरबार से लेकर आ सकूंगा। तो उसकी बीवी को बात सही लगती है और वो उसके लिए जल्दी से कुछ बनाने लगती है। अब वो आदमी इतना ज्यादा खाना खा लेता है कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसकी बीवी जैसे तैसे करके उसे घर से जाने के लिए कहती है। अब वो आदमी अपने घर से थोड़ा दूर ही आया था कि वो सोचता है कि अभी तो सूरज डूबने में काफी समय है, क्यों ना मैं एक काम करता हूं, इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय के लिए एक नींद ले लेता हूं। और वो ये सोचते हुए वहां पर सो जाता है। अब दिन जो है गुजर जाता है, सूरज डूब जाता है और शाम हो जाती है, लेकिन वो आदमी अभी भी उसी जगह पर सो रहा था। तभी उस रास्ते से फिर से वहां से राजा गुजर रहा होता है और जब वो फिर से इस आदमी को पेड़ के नीचे सोता हुआ देखता है तो सोचता है कि मैंने तो सुबह इसे कहा था कि सूरज डूबने से पहले तुम जितना चाहो उतना सोना चांदी दरबार से ले जा सकते हो, लेकिन ये तो यहां पर अभी भी सो रहा है। यही बात अगर मैं किसी दूसरे आदमी से कहता तो अब तक राज दरबार पहुंच चुका होता। तो राजा फिर से उस आदमी के पास जाता है और उसे जगाता है। अब वो आदमी जैसे ही नींद से जागता है तो देखता है कि सूरज डूब चुका था और राजा उसके सामने खड़ा हुआ था। राजा उस आदमी से कहता है कि जब मैं सुबह यहां से जा रहा था तब भी तुम यहां सो रहे थे और फिर मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया, उसके बावजूद भी तुम अभी भी यहां पर सो ही रहे हो। तुम्हारे आलसी होने की आदत ने उस मौके को भी गवा दिया, इसीलिए मुझे आज पता चल गया कि लोग तुम्हें सबसे बड़ा आलसी क्यों कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में समय की कदर नहीं करता है, आलसी होता है, अपने काम को टालता रहता है, वो आदमी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है और जहां के वहीं रहता है। दिन महीने साल बदलते जाते हैं, लेकिन उस इंसान की प्रोग्रेस नहीं होती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आलस्य एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम सबको पीछे करने की एक पद्धति बोल दे है, तो प्लीज आलस्य न करें, खूबसूरत दिनों का लुत्फ उठाएं, एंजॉय करें, साथ ही साथ अपने कर्म को, कार्य को सही समय पर, सही वक्त पर खत्म करने की कोशिश भी करें। दोस्तों आज गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। सोमवार को जरूर 6 बजे शाम को पहुंचूंगी, लेकिन उससे पहले आज के सवाल का जवाब भी दूंगी। इनमें से वो कौन सा शहर है जो जिस देश की किसी देश की राजधानी है जिसकी सीमा भारत से मिलती है? वेल, बीजिंग। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना की सीमा भारत से मिलती ही है, बिल्कुल, और बीजिंग उस चीन की राजधानी है। काठमांडू की बात करें तो नेपाल का बॉर्डर भारत से जुड़ा हुआ है, तो सही जवाब नेपाल भी नहीं है। टोक्यो जापान की राजधानी है, जी हाँ, जापान बहुत दूर है, एक आइलैंड देश है, पैसिफिक ओशन में है, जिसकी सीमा भारत के प्रांत से नहीं लगती। भारत के प्रांत से चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब लगता है, लेकिन टोक्यो या जापान नहीं लगता। सही जवाब जापान है। आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को मिलने का वादा करती हूँ और ठीक शाम 6 बजे आप दोस्तों के लिए जरूर पहुंच जाऊंगी। आपके बीच आने में मुझे खुशी होती है। शनिवार और रविवार आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप कार्यक्रमों को सुनते रहिए, नई सीख के साथ जुड़िए और हमारा घर ऑन एयर जरूर सुनिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मारो गांव मारो अंचल यानी मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है। हमारे आई लोग बाप सब हिस्सा लेते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे प्रशासन गांव के संघ सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज जो नरोगा में आए खासकर मुंगथला ग्राम पंचायत में जो हमारा सहायिका है चाहे LDC मैम है सभी जो स्टाफ सहयोग दिए उनका तत्वावधान में एक कार्यक्रम आज नरोगा जो मुंगथला में पहुंचे। यहाँ के सभी आई लोग माताएं को वंदना करते हैं स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। तो एक लोकगीत सुनाएंगे सामूहिक रूप में, भजन हो गीत हो क्योंकि आपको मनोरंजन भी चाहिए। मनोरंजन के बिना खुशी का बिना हमारा शरीर स्वास्थ्य नहीं होगा। और प्रभु याद में हम जब रहते हैं हमारा आस्था विश्वास भक्ति भावना परमात्मा तक पहुंचता है ऊपर वाला तक पहुंचता है। चलिए सभी आपने के लिए ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। वेरी गुड, ताली बजा करता सभी खुश होते हैं और हमें भी खुशी करा देते हैं। चलिए बहुत खुशी का जो बात है तो हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा जो मैम है तो उनको स्वागत करते हैं। मैडम थोड़ा अपना परिचय थोड़ा दीजिए, कहेंगे इतना गैदरिंग करे आपका सारा सा आपका पूरा नाम बताइए।
1: सभी को नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी कुंवर, मेरे गांव का नाम मुंगथला, मैं जनचेतना में काम करती हूँ और SBM समूह में भी काम करती हूँ और राजीविका में भी काम करती हूँ।
0: जनचेतना जैसे सब कुछ चेतना जागरूक कराने के लिए जनचेतना का नाम जैसे काम भी उस तरह कराते तो आज यहाँ पर आए तो एक माताओं का एक गीत हो जाए भजन संध्या वो भी मुंगथला का आवाज। चलिए देर किस बात की, समूह आवाज सुनेंगे माताओं को स्वागत करते हैं। शुरू हो जाए, आपका नाम बताइए।
2: बता,
0: तुलसी भाई के लिए स्वागत। हाँ अभी

0: ताली बजाओ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भजन मंडली को और माताओं का झुंड है। भाई लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, सब पीछे है, लेकिन माताएं भी कम नहीं है, इसलिए कहते वंदे मातरम। बोलो वंदे मातरम। माओ का भजन सुन के हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी पूरा झूम उठे, क्योंकि आस्था विश्वास भक्ति को लेकर हम जीवन जीते हैं। उनका बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। कोई भी दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं। ये मनुष्य को तो ध्यान करते हैं थोड़ा समय के लिए, पति को थोड़ा समय के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन तुरंत भगवान को याद आता है। तो इस कार्यक्रम को जब लेकर मुंगथला ग्राम पंचायत में पहुंचे, यहाँ के जो मेट का साथ साथ सभी जो हमारा रोजगार करने के लिए श्रम कर रहे हैं, जिसका चलते हमारा गांव आदर्श बनेगा और आदर्श तालाब भी बन जाएगा, है कि नहीं। बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आप जब आए तो ये लोग अच्छा प्रस्तुति है। तो पीछे से कोई बोल रहा है और एक गीत भजन हो जाएगा, तो देर किस बात की, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। अच्छा

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चले कार्यक्रम का आगे बढ़ाते, और एक प्रस्तुत ये गरा से भाषा का गीत होना चाहिए। तो गरा से भाषा का एक गीत भजन होगा, क्योंकि हमारा जो आई लोग गरा से गीत गाओ। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वो लोग सोच रहे हैं हमारा आई लोग, वो गरा से गीत गाएंगे बाद में। अभी फिर एक संगीत होगा भजन, उनको पुनः स्वागत करके ताली बजाओ।

0: करी हे माँ।
1: सही में कितना सुंदर प्रस्तुति और इतना झुंड में गा रहे तो हमें पूरा, हमें क्या है, पूरा आमथला तक पूरा पहुंच रहा है। मूंगथला, आमथला, मोरथला, मोरथला, मूंगथला, आमथला, जितना थला सभी थला तक हमारा आवाज पहुंच रहा है, क्योंकि माताएं काम नहीं है और वो काम धाम तो करते रहते हैं नरगा में, पैसा सरकार देता है, इसका साथ साथ मनोरंजन करने के लिए आज रेडियो कार्यक्रम को सजा रहे, ये कम बात नहीं, क्योंकि मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम जो है आईलो का कार्यक्रम है, सामुदायिक का कार्यक्रम है, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जहां भी जाते हैं एक इशारा से सब रेडी हो जाते हैं, क्योंकि रेडियो अपना रेडियो है, अपना रेडियो में अपना आवाज आ रहा है, तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक ब्रेक लेते हैं और एक प्रस्तुति होगा गरासिया भाषा में, आज तो पूरा संगम है गरासिया और मारवाड़ी, सुनेंगे एक आदिवासी गीत लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सबको राम राम, राम राम,
4: राम राम,
3: राम राम। हमारा लीडर है तो राम राम करते हुए।

सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये था गारासिया भाषा जो आदिवासी गीत है, सामूहिक रूप में नरगा में अपना अपना आवाज सुनाए। माताओं को आई लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक अंतिम प्रस्तुति की और हम लोग चलेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है क्योंकि आसपास का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे अपना लोकगीत जो भावनाएं लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे मूंगफला का आवाज़ वो भी गरसिया भाषा और मारवाड़ी भाषा में. अभी चलते हैं बीच में ही धामसरा स्थित भैरुजीर मंदिर के पुजारी से और माताओं से एक आदिवासी लोक गीत भजन सुनेंगे वो भी गरसिया भाषा में. तो राम राम करते हुए उनको स्वागत करते हैं सामूहिक रूप में प्रस्तुति देने के लिए. तो राम राम शुरू हो जाइए.

बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर प्रस्तुति दिए। बीच में ही धामसरा स्थित भैरुजी मंदिर के पुजारी और आसपास जो माताएं भजन में ओतप्रोत रहते हैं, भक्ति भावना को लेकर जुड़े रहते हैं, तो उनका आवाज सुने। चले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, खासकर मूंगफला का आवाज को फिर से उजागर करने के लिए।

0: मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम ओम शांति।
1: चले कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हो और एक कार्यक्रम वो भी आदिवासी गीत क्योंकि मारवाड़ी दो गीत हुआ भजन और अभी आदिवासी बोला हम लोग क्यों भाई एक गीत क्यों गाएंगे तो और एक गीत गाएंगे तो चले नहीं गीत मन नहीं भरता है और एक होना चाहिए तो चले सभी को राम राम करते हैं स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए क्योंकि भाकर क्षेत्र में जब जाते हैं चाहे निचला गढ़ हो चाहे उपला गढ़ हो चाहे निचला खेजड़ा हो उपला खेजड़ा हो चाहे कोई भी जहां भी रहते आदिवासी हमारा भाई बंधु क्योंकि शुरू से ये लोग पहले आदिवासी थे लेकिन हम तो बाद में आए। चलिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे वो भी सामूहिक रूप में। क्या नाम तुम्हारा?
2: हमारा
1: नाम
2: मारा मीरा
1: मीरा
2: भाई गलवी भाई
1: नाम
2: बेसुबेन।

0: फेमर हूँ नाम
1: गुली भाई
0: और आई
2: रेशमी
0: सभी को राम राम करते हैं। बहुत अच्छा सुंदर नाम बताए
3: मुंगतला
0: मुंगतला के सभी अच्छा चलो सभी मुंगतला।

Happy Gloria.

0: Mori
1: pusore onore Mge more re lalar Mori pusore onore Mge more
2: बहुत बहुत धन्यवाद माताओं को आयोग को क्योंकि इतने सुंदर रूप में प्रस्तुति की आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए इतने जो मेहनत की है क्योंकि मारवाड़ी का साथ साथ ये जो आदिवासी और हम सब आदिवासी आज बन गए हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे हैं इस रेडियो कार्यक्रम में जहां भी सुनते हैं जैसे भी सुनते हैं सभी ऐसे सीख जाते हैं गीत कोई सिखाना नहीं पड़ता आदिवासी गीत ऐसे सुनते सुनते संगठन में सीख जाते हैं बहुत अच्छा लगा आज जब मुंगथला ग्राम पंचायत में जो नरोगा काम चल रहा है उसमें माताएं आई लोग बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और हम सबको मनोरंजन कराने के लिए भक्ति भावना आस्था को लेकर समूह रूप में गीत गाए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है क्योंकि जब गांव और अंचल में जाते हैं तो हमारा गांव और आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देता है जिस मंच का माध्यम से हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं और प्रशासन का जो योजना है चाहे नरोगा हो चाहे पालनहार योजना हो चाहे आवास जो योजना है सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा पब्लिक तक पहुंचाते हैं और गवर्नमेंट का जो नीति नियम दिशा को आगे बढ़ाते हैं तो इस कार्यक्रम को लेकर जब हम मुंगथला ग्राम पंचायत में पहुंचे यहां के जो नरेगा की माताएं अपना श्रम देकर रोजगार करते हैं सरकार का जो मंच है आत्मनिर्भर बने आदर्श बने गाँव इस संदर्भ में हमारे साथ इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए जो उसका जो मैट है तो उनको भी स्वागत करते हैं जो टीम लीडर है तो राम राम आपका शुभ नाम बताइए
3: लीला देवी
2: आप ये जो महिलाओं के इतना सुंदर रूप में एक संगठित रूप में काम देते हैं और उनको तदारक करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं सुपरवाइजिंग करते हैं तो आपको इसमें संतुष्टि खुशी लगता है
3: खुशी लगती है
2: क्या खुशी लगता है कैसे खुशी लगता है
3: खुशी तो लगते हैं सब रोजगार मिलता है इनको तो खुशी तो मिलती है
2: सही बात रोजगार भी चाहिए बिना रोजगार से हमारा परिवार कैसे चलेगा पैसे तो चाहिए ना सरकार का जो मंशा है हमारा माताएं बाहर न जाए अपना गाँव में कुछ काम करें और परिवार को भी संभालते हैं घर में जो खाना पीना बच्चों को पालन का साथ साथ जो समय निकलता है तो सरकार जो पैसा दे रहा है काम कराने कतर देता है ऐसे मुफ्त में नहीं दे रहा है बहुत अच्छा है सबको खुशी मिलता है रोजगार मिलने से तो कितने लोग आते हैं और एक लेबर को कितना दिन मिलता है
3: 180 रुपए की रेट
2: रेट में सरकार का जो निर्धारित पैसा क्या उनका बैंक खाता में जाता है ना उनको कैश देते हैं
3: बैंक खाते में जाते हैं
2: इसका मतलब सभी आई लोग का बैंक खाता
3: है सबका
2: अरे वाह ताली बजा भाई ताली बजा पैसा कहीं इधर उधर नहीं होगा लीक नहीं होगा सीधा डायरेक्ट पूरा हाथ में आएगा
4: खाता
2: अपना पास बहुत बहुत धन्यवाद और आज इस तरह प्रोग्राम में जो सभी माताएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए सभी मैट भी सहयोग दिए और हमारा एलडीसी मैम भी सहयोग दिए सरपंच भी हमको सहयोग दिए तो वो सभी को नाम का सा धन्यवाद देते और ये प्रोग्राम कैसे लगा
3: अच्छा लगा
2: होना चाहिए मनोरंजन भी कभी कभी
3: होना चाहिए
2: तो आज रेडियो कार्यक्रम में लोग सजा ये मैडम का ये उनका सुभावना है बार बार होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और हम कभी मौका मिलेगा तो हम आ जाएंगे हमारा काम तो ऐसे क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का भागीदारी देखने को मिल रहा है सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए आज माताएं का आवाज मीन्स मुंगथला का आवाज सुनने को मिला इस तरह कार्यक्रम जो सुनते हमारा गांव और अंचल में किस तरह मनोरंजन का साथ साथ काम करते वो चीज देखने को मिल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए हमें दीजिए इजाजत फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी गाँव का किसी स्कूल का

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God. And friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना. Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं. We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर, no, we don't fear God. Then there's a second good reason why we have not understood God. Because, friends, more than 80% of the war that is fought today is directly or indirectly in the name of God. Chahe wo America Afghanistan war ho, America Iraq war ho, Jammu Kashmir problem ho, Gujarat problem ho, Delhi blast ho. Have we really understood God? Kisi ne kya khub kaha hai? Kaaba hai ghar Rahim ka, Kashi hai ghar Ram ka, dono hi baat to ek hai, jhagda hai bas naam ka. We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus manate hain Diwali aur hamare Islam bhai behne manate hain Ramzan. Lekin thoda sa common sense to hum samajh sakte hain, are Diwali mein hai Ali A-L-I, to Ramzan mein hai Ram R-A-M. Diwali mein hai Ali, Ramzan mein hai Ram. Diwali mein hai Dil D-I-L, to Ramzan mein hai Jaan Z-A-N. Are us prem ke saagar ko दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। तो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं, उस एक परमात्मा के संतान हैं। And that is a beautiful relationship that we can establish with the Almighty God. And this is what is very very important. और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना क्या? और समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: एवं
1: हम
2: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ किकरे बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। वैसे जिंदगी को एंजॉय करने के काफी सारे तरीके हैं और सबके पास अपना अपना कुछ जरूर होता है। मैंने एक गाना सुना था, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। अब कभी कभी हम कुछ ऐसा भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जो रियलिटी से बहुत दूर होता है और वो हमें बहुत परेशान कर देता है। कभी कभी अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाते, कभी कभी दूसरों के इमोशंस को गलत समझ लेते हैं। तो आइए जिंदगी से प्यार थोड़ा और बढ़ाते हैं और रियलिटी चेक देते हैं खुद को। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं कल्पना जी, सीधे ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया, शुक्रिया आरुषि, और एक बार आपके साथ जुड़ के बहुत बहुत मजा आ रहा है।
0: थैंक यू सो मच दीदी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपने टाइम निकाला। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जिनको आप पहचानते हैं क्योंकि जाने माने रेडियो मधुबन के आरजे भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, नमस्कार। कल्पना जी आपको भी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को। और लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आते हैं तो जिंदगी से प्यार करने के नए तरीकों के बारे में जानने का हमें भी मौका मिलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपर्ट्स हैं तो हम आपको बताने आए हैं, मगर इस बातचीत में हम कुछ ऐसी नई चीजें सीखते हैं जिससे हमें भी बहुत कुछ नया सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है और खुद की जिंदगी को बेहतर नजरिए से देखने का एक अनूठा मौका मिलता है।
0: बिल्कुल, और ये मौका सबको मिलना चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम से आप जरूर जुड़े, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। दीदी मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इमोशंस बोलते ही ऐसा लगता है बड़े कॉम्प्लेक्स महसूस होता है कि क्या हम फील कर रहे हैं, और आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात होती है, बहुत वर्ड सुनते हैं, पर ऐसे तो आसान है। दुखी होते हैं पता चलता है, सुखी होते हैं पता चलता है, हंसते हैं रोते हैं, लेकिन इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी हम जब बड़े होते जाते हैं तभी आ जाती है या बचपन से होती है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी।
1: इमोशंस तो बचपन से ही हम एक्सप्रेस करते आए हैं
0: जी।
1: जैसे छोटे बच्चे भी जब खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, छोटा बच्चा जिसे बात भी करने नहीं आता है, जो पालने में लेटा हुआ है, वो भी कभी मुस्कुराता है और कभी रोने लगता है। तो अगर छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो उसकी किस तरह की इमोशंस होगी? नेचुरली कुछ चाहिए,
0: चाहिए
1: तो उसके इमोशंस हैं। अगर छोटे बच्चे के हाथ से कोई खिलौना छीन ले तो उसकी क्या इमोशंस होगी?
0: गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा,
1: गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन अंदर सोच क्या चल रही होगी कि ये मेरा है,
0: मेरा टॉय,
1: मुझे खेलना है और आपने मुझे छीन लिया। तो इमोशन हो गया एंगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हैप्पीनेस है, लव है, ये सारी इमोशंस है जो हम मनुष्य होने के नाते समय प्रति समय पैदा होने से लेकर मृत्यु तक फील करते ही है। हम कभी सैड होते हैं, सैड किस लिए होते हैं कि भाई कुछ तो बुरा हो रहा है, हम मैं एग्जाम में फेल हो गई या मुझे कम मार्क्स मिले, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी एंड कम मार्क्स मिले, तो मुझे दुख होता है, सैडनेस होती है। एंड देन गुस्सा आता है, कभी कभी मेरे साथ कोई मिसबिहेव करता है, इरिटेट होते हैं। समझो कि आप रास्ते में चल रहे हो, आजकल ये सारी बातें देखने सुनने को लोगों को मिल रही है कि रास्ते में चल रहे हो, किसी ने आपको छेड़ लिया और आप कुछ कर नहीं पाए, तो आपको क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा, बहुत बुरा भी लगेगा,

0: और ऐसे लगेगा कि अरे ये क्या चीज है, ये कितनी लाचारी है, कितनी गलत बात है। तो एक जोश भी आएगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, परंतु कुछ कर नहीं सकते हैं तो अगेन फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। तो ये सारी इमोशंस हम कभी ना कभी अपने लाइफ में, इनफैक्ट हर रोज एक्सपीरियंस करते ही हैं,
1: एक साथ भी फील करते हैं दीदी सब कुछ।
0: हाँ जी।
1: तो ओके, जैसा आपने कहा कि बचपन से जब बच्चा है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो इमोशंस हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो अवेयरनेस की जरूरत कहाँ पड़ने लगती है? मतलब हमें बचपन में समझ में आ रहा है कि बच्चा ये फील कर रहा है, इस वक्त ये फील कर रहा है, क्लियर है, लेकिन बड़े होते होते ऐसा क्या हो जाता है कि हमें समझ में आना बंद हो जाता है, या फिर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि वो इमोशंस को समझ ही नहीं पाते कभी कभी? श्रीनिधि जी, आप आंसर करना चाहेंगे?
2: मैं समझता हूँ, अभी कल परसों ही हम एक चर्चा में हिस्सा ले रहे थे और वह ये चीज एक प्रश्न के रूप में उभर कर आई कि जब हम सभी जानते हैं कि हम सब भावनात्मक जीव हैं, हम सब अलग अलग प्रकार के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब हम बचपन से इन अनेक एक्सपीरियंसेस को, इन भावनाओं को महसूस करते आए हैं, जैसे विकल्पना जी कह रहे थे कि हम कभी सैड फील करते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कभी एंग्शियस फील करते हैं, अलग अलग प्रकार के इमोशंस को महसूस करते आए हैं, तो जब ये अनुभवी हो चुके हैं हम, तो क्यों जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम इन्हीं इमोशंस को डील करने में स्ट्रगल करने लगते हैं? और ये स्वाभाविक रीति से ये प्रश्न उठता भी है। जैसे बच्चों का उदाहरण दे रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि कई बार बच्चे अपने इमोशंस को स्वाभाविक समझ लेते हैं, यानी गुस्सा होना या इरिटेट होना हम मान लेते हैं कि स्वाभाविक है, और मुझे चॉकलेट नहीं मिला तो गुस्सा होना और मुझे टैंट्रम्स दिखाना और चिड़चिड़ा होना ये होना ही चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं बच्चे। और जब तक आप बच्चों को इस विषय पर सही तरीके से काउंसिल न करें, या उनके अपने इस इमोशन को समझने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करें, या उस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए उस इमोशन को सही तरीके से, आप ये कहें कि उसको हम अलग अलग तरीकों से उस इमोशन को ब्रेक करके ये क्या इमोशन है, इसे कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, ये समझाते नहीं या डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते पेरेंट्स, या उनके आसपास जो बड़े हैं वो ये चीजें नहीं करते, तो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट करके चलने लगता है कि भाई ये ठीक ही है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि ऐसे घरों में या ऐसे परिवारों में जहाँ पर बच्चों को इस प्रकार की इमोशनल एजुकेशन नहीं दी जाती, या बच्चे जो कर रहे हैं उनके टैंट्रम्स को चुपचाप सह लिया जाता है, तो कई सालों बाद हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे उसी स्वभाव के हो जाते हैं। और कई बार पब्लिक में लोग ये कहते भी है कि क्या इनके माँ बाप ने इनको इतना भी नहीं समझाया कि पब्लिक में भी ऐसे बिहेव कर रहा है, और हम देखने लगते हैं कि बच्चे को उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है, कि हम उन बच्चों को ऐसा कह के डिस्क्राइब भी करने लगते हैं, अरे भाई इसके तो टैंट्रम्स बहुत होते हैं, अरे ये तो बड़ा नखरे वाला बच्चा है भैया, इसके तो बचपन से इसको जैसे पाल पोस के बड़ा किया भगवान ही जाने, ये इसको जो चीज चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए तो मतलब ये सारा घर से पे उठा लेगा। तो ये चीजें होती हैं कि अगर हम इन इमोशंस को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में एजुकेट ना करें बच्चों को, तो आगे बढ़ के एक समय ऐसा आ जाता है जब वो सोशल इंटरेक्शंस में इन इमोशंस को कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, उसके उसको प्रोसेस करने का पॉजिटिव तरीका क्या है, वो ना जानने के कारण वो लाइफ में चैलेंजेस महसूस करते हैं। इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पियर का है, और ये एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है। नेपोलियन को हम सभी नेपोलियन द ग्रेट के नाम से इतिहास में जानते आए हैं, फ्रांस के बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर हुए हैं, मगर बचपन में उनके मन पर बिल्लियों के प्रति एक ऐसा डर बैठा हुआ था जिसके कारण वाटरलू का युद्ध उन्हें हारना पड़ा। ब्रिटेन के साथ युद्ध में हारने की वजह कोई कमजोर रणनीति नहीं थी, जिस समय वो रणनीति बना रहे थे उस युद्ध के लिए, उस समय पर किसी ने उनके शिविर में बिल्ली छोड़ दिया, और क्योंकि वो बिल्ली वहां से गुजर गई तो नेपोलियन का सारा ध्यान उस बिल्ली पर था, वो सही निर्णय नहीं कर पाए, और उस समय पर उनका मन बिल्ली के भय से ही आक्रांत था, जिसके कारण वो सही रणनीति नहीं कर सके, जिसकी वजह से युद्ध में हार हुई। ये बात अक्सर हिस्ट्री में कोट की जाती है। तो ये पता चलता है कि आप फियर हो, एंग्जाइटी हो, या इरिटेशन हो, या अनेक प्रकार के हेट्रेड हो, जेलसी हो, बच्चे ये स्वाभाविक रीति से इमोशंस उभर कर आते हैं, बट इन इमोशंस को मैनेज करने के तरीके या इन इमोशंस के प्रति हमारी अवेयरनेस होना कि हाँ ये इमोशन ये है, इस इमोशन का ये नाम है और ये प्रोसेस करने का एक पॉजिटिव तरीका है या दूसरे तरीके से भी मैं इसको हैंडल या मैनेज कर सकता हूँ। अगर ये नहीं समझाया जाता या उस प्रकार की अवेयरनेस नहीं होती तो आगे चल के ये चीजें व्यक्ति इन्हीं इमोशंस के कारण, खुद के ही इमोशंस के कारण सकम करने लगता है, उन इमोशंस के कारण सफर करने लगता है,
1: करते हैं। कल्पना जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, जैसा सफर करने लगते हैं हम, मुझे लगता है सबको एक्सपीरियंस है, सफर करते हैं इमोशंस के कारण, भावनाएं कई बार कंट्रोल में ही नहीं आ पाती, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम राइट भावना को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो क्या वो वही फील कर रहा है उस वक्त, या वो पेन फील कर रहा है और दिखा कुछ और रहा है, या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इमोशन अंदर कुछ और है और हम एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं, क्या ये कंफ्यूजन होते हैं या फिर वो इमोशन पता चलता है कि कौन सा है?
0: कोई भी इमोशन जो है वो बिना रीजन के नहीं होता है। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी ने मुझे जो चाहिए वो नहीं दिया है, जो भी रीजन है मेरे इमोशन के पीछे वो मुझे पता होता है क्यों मेरा ये इमोशन है। अगर मुझे किसी से नफरत है या मुझे किसी से प्यार है तो क्यों है। सो ये हर इमोशन के पीछे का रीजन तो पता होता है हमें और वो औरों को भी पता होना चाहिए। जहां तक इमोशनल अवेयरनेस की बात आते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं को समझने की बात आते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है उनको सडनली उदास क्यों फील हो रहा है, क्यों उनका मूड खराब हो रहा है, क्यों चिड़चिड़ाहट हो रही, कोई रीजन नहीं, छोटा सा कारण बनता है और चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। सो जब हम उनको पूछते हैं कई सारे प्रश्न, जैसे कि आपकी नींद पूरी हुई है क्या, कितने दिनों से आप सही तरह से सोए नहीं, क्या आपको भूख सही लगती है, क्या कुछ दिनों से आपकी भूख कम हुई है या फिर आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, क्या बात है, या कहीं कोई ट्रिगर ऐसा हुआ है, हर्ट हुआ है, क्यों आपको सैडनेस फील हो रही है। तो जब ये सारी बातें हम पूछते हैं तो कई बार पता चलता है कि नींद हुई नहीं है, काफी दिनों से नींद ही नहीं आई। कई बार पता चलता है कि खाना से ठीक से नहीं मिला है। कई बार ये पता चलता है कि उनके घर में किसी की सडन डेथ हुई है। सो नेचुरली रीजन तो है, परंतु कई बार कारण पता नहीं चलता है कि क्यों। कई बार और भी एक है, हमारा जो मूड है ना, फीलिंग्स और मूड है वो हमारी गट हेल्थ के साथ बहुत जुड़ी हुई। जो भी हमारा भोजन हम करते हैं, अगर उसका सही तरह से डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका एलिमिनेशन नहीं हो रहा है टाइम पर, अर्थात हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है काफी दिनों से, वो भी हमारे मूड पर असर करता है। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है कि मेरी फीलिंग्स जो इस समय है वो क्यों है, किस लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे हैं, हम तीनों मिलके आपस में बात कर रहे हैं, श्री जी है, आप है, मैं हूँ। अगर मैं इसी समय अपने आप से पूछूं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, है ना, अगर उस मीटर को मैं चेक करूं, इमोशनल मीटर को, कि 0 से 10 के बीच में मैं इस समय कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव फील कर रही हूँ। अगर हम 10 को नेगेटिव समझे और 0 को पॉजिटिव समझे, तो कहाँ तक मैं रिलैक्स हूँ, कहाँ तक मैं खुश हूँ, कहाँ तक मैं ओरिएंटेड हूँ, ये मुझे अगर समझ में आ रहा है तो उसे कहेंगे हम इमोशनल अवेयरनेस।
1: ओके, अगर मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ कुछ करते हुए या बात करते हुए भी अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर हम जब रो रहे होते हैं तब समझ में आता है हम उदास हैं, या फिर बुरा फील हो रहा होता है तब समझ में आता है उदास हैं, पर बात करते करते ऐसे तो शायद रैंडम नहीं सोचा कि क्या फील कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करना होगा शायद हमें थोड़ा और अपने इमोशंस को, कि किसी से बात करते वक्त भी क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये दीदी।
0: एक जरूरी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो मुझे अभी याद आई, मैं भूल ना जाऊँ, कि कई बार कहा जाता है गर्ल्स के पास सिक्स सेंस होता है, है ना। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी नए व्यक्ति से, तो हमें फील होता है, हमें रियलाइज होता है कि इस व्यक्ति के साथ बात करते समय मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो इमोशंस है, वो थोड़ी डिस्टर्ब है।
1: बिल्कुल,
0: इंट्यूशन आता है। सो जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, ये सही नहीं है, उसी समय अगर हम उस चीज को हैंडल कर पाते हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए उस व्यक्ति के सामने से हट जाते हैं या फिर अवॉइड करते हैं या फिर अपने आप को बचाने का कोई तरीका सोचते हैं, तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
1: मतलब हम बेटर हैंडल कर पाएंगे सिचुएशंस को और खुद को अगर हम इमोशनली अवेयर हैं तो।
0: जी,
1: वंडरफुल। श्रीनिधि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज आप बहुत सारे यूथ से इंटरैक्ट करते हैं, कभी क्या आपको लगता है कि हर बार वो सही इमोशंस या हम उस एज में आइडेंटिफाई कर पाते हैं या उसको मिसइंटरप्रेट भी कर लेते हैं, गलत भी समझ लेते हैं?
2: ये बहुत ही मजेदार बात है जब आप पूछ रहे हैं आरुषि जी, और युवाओं के सिलसिले में जब आप ये बात पूछते हैं तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी अपने इमोशंस को लेबल करना नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ एक्चुअली में क्या चीज है।
1: ओके,
2: मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे एक जानकार थे, उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में जेलेसी के इमोशन को फील नहीं किया था।
1: अच्छा।
2: जब उन्होंने ये चीज देखा कि कोई उनके किसी चीज पर जेलस हो रहा है कि भाई उनको ये चीज मिल गई है और इसके कारण वो उनसे नफरत कर रहे हैं या उनसे एक डिफरेंट तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो मेरे पास आए, बोल रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैंने उनको कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। तो मुझे उनको ये समझाने में काफी मेहनत लगी कि आपने और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक चीज के लिए अप्लाई किया, आपको ये चीज मिली, उनको ये चीज नहीं मिली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मगर चूंकि वो चीज आपको मिली और उनको नहीं मिली है, इसलिए वो आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उन्हें एक जेलसी फील हो रही है इस मोमेंट पे, वो एक डिसकंफर्टिंग फीलिंग है उनके लिए भी, और क्योंकि वो एक डिसकंफर्ट महसूस कर रहे हैं और वो आपसे बातचीत करेंगे तो आप इस बात की खुशी का इजहार करेंगे कि देखो मुझे तो ये चीज मिल गई, और इसलिए वो आपको अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही स्वाभाविकता से ये बात कही कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ।
1: अच्छा।
2: मैंने कहा बिल्कुल आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा, हो सकता है ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आए नहीं हो, या हो सकता है आपके घर में पहले से परवरिश ऐसी दी गई हो कि किसी को कोई चीज मिलती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करना आपको सिखा दिया गया है, आप शायद कंपेयर ही नहीं करते अपने आप को कि उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, ये क्वेश्चन ही आप रेज नहीं करते, शायद बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, घर में आपके घर में ज्यादा बच्चे रहे होंगे तो आप शेयरिंग करना सीख चुके होंगे, या किसी को कोई चीज मिलती है तो ना मिलने पर भी उसका बुरा ना मानना आप स्वाभाविक रीति से अनुभव करते आए होंगे। तो ऐसा बहुत सारे इमोशंस के साथ होता है, और युवा काल एक ऐसा काल होता है कि जहां पर आप अभी अभी चीजों को एक एडल्टहुड में एक्सप्लोर करने लगे हैं, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप वयस्को जैसा बर्ताव करें, आप एक मैच्योर इंडिविजुअल जैसा बर्ताव करें, और कभी कभार इस प्रेशर के चलते भी आप अपने इमोशंस को सेग्रीगेट नहीं कर पाते। जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि भाई एक एक्टिविटी जो अक्सर वर्कशॉप्स में हम लोग कराते हैं वो ये है कि शुरुआत में हम कहते हैं कि एट द मोमेंट हाउ आर यू फीलिंग, तो लोगों को अलग अलग चीजें बताने का, उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। कभी कभार उस फीलिंग के ऊपर ही आपको, जब कल्पना जी कह रहे थे कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 How happy are you feeling? How excited are you feeling? How anxious are you feeling? आप इन चीजों को पूछते हैं तो पहली दफे लोग कभी इस बारे में सोचते हैं कि हाँ यार, मतलब on a scale भी मैं अपने आप को माप सकता हूँ।
1: बिल्कुल। ये भी possible है।
2: हाँ, ये भी possible है। क्योंकि इससे पहले कभी किया नहीं होता, इससे पहले किसी ने उस चीज पर बातचीत नहीं की हुई होती, और इसलिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानना आवश्यक है। कई बार बच्चे लफ्जों में चीजों को समझने लगते हैं, कई बार आजकल मैं बच्चों को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। मैंने पूछा भाई किस बात के लिए डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो बोलता है आज मैं इतना सब कुछ पढ़ना है मेरे को और मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो हालांकि कोई 11-12 साल का बच्चा अगर आपसे ये कहे कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है तो हमें लग सकता है कि ये तो होना नहीं चाहिए, कि 12 साल की उम्र में तुम्हें किस बात का डिप्रेशन होना चाहिए, किस बात के लिए तुम्हें डिप्रेस्ड फील करना चाहिए। अब वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है या वो पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर महसूस हो रहा है, उसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और वो उस चीज को डिप्रेस्ड फील कर रहा है। कई बार हम इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना भी नहीं जानते, क्योंकि हम कुछ शब्दों को सुन लिए होते हैं टेलीविजन में, मीडिया में, या हमारे टीचर्स या बड़ों को, घर वालों को बातचीत करते सुन लेते, तो हमको लगता है कि भाई ये सैड होना ही डिप्रेस्ड होना है या मूड ठीक नहीं होना ही डिप्रेस्ड होना है। तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत आवश्यक है कि हम इमोशंस को समझें। आज मैं इस घड़ी कैसा महसूस कर रहा हूँ, उस इमोशन का एक नाम है, वो क्या चीज है। अगर मुझे वो समझ आ जाए, वो अवेयरनेस आ जाए, तो फिर शायद मैं उसे बेहतर तरीके से मैनेज करने के बारे में भी सोच पाऊंगा।
1: एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये और हमारे पास इस एपिसोड में टाइम कम बचा है, लेकिन हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे इस पे बातचीत करना। मैं कल्पना जी से भी आने वाले एपिसोड्स में ये जानना चाहूंगी कि क्या जैसे हम जेलस फील कर रहे हैं तो 2 नंबर पे हैं कि 10 नंबर पे हैं, वो रेटिंग क्या हमें करनी चाहिए और उससे क्या फर्क करता है डील करने पे, ये सब कुछ जानेंगे। फिलहाल दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी प्रेजेंटली जो भी हमने बातें सुनी उससे हम अपने करंट इमोशन को समझ पाए या उसको अनुभव कर पाए, इसके लिए क्या कुछ मेडिटेशन हम कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो हमें मदद करे?
0: बिल्कुल, जैसे कि मेडिटेशन का मतलब ही है कि अपने अंदर में जाकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करना। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हम चारों तरफ से अपने अटेंशन को कट ऑफ करके उसको पूरी तरह से खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, कितना इंटेंसिटी है उस फीलिंग की, क्या वो फीलिंग सही है या नहीं है, या वो फीलिंग जैसा मुझे फील हो रहा है वही है या कुछ और है,
1: कुछ और है।
0: जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, ये हम ओपन अप करके फिर छोड़ देंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, कि जैसे हम कहते हैं कि मुझे इससे प्यार हो गया है, वो आकर्षण हो सकती है, इन्फैचुएशन हो सकता है, वो प्यार हो जरूरी नहीं है, तो उस चीज को समझना। तो चलिए इस चीज के लिए हम थोड़े से,
1: मुझे लगता है दीदी ये बहुत लोग जानना चाहेंगे क्योंकि फील करते हैं कि प्यार है और वो सच में है या नहीं, ये बहुत लोग जानना जरूर जाएंगे, तो अगले बार में जाने को मिलेगा।
0: सो चलिए हम अपने भीतर चलते हैं और थोड़ा सा चारों तरफ से अपने अटेंशन को कलेक्ट करके अपने ऊपर एकाग्र करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी श्रोताओं से कि वो गहरी और लंबी सांस ले, जहां भी है 2 मिनट के लिए रुक जाए, आराम से बैठ जाए। ये 2 मिनट का अभ्यास हमें आने वाले 2 घंटे के लिए बहुत पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी देकर जाने वाला है। अपनी आंखों को आराम से बंद करें, सांसों पर ध्यान दें, गहरी और लंबी सांसें लें, सांस के स्पर्श को नाक के भीतर महसूस करें, थोड़ा सा अपने आप से मेंटली डिटैच हो जाए, जैसे हम दूर से रोड पर चलने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वैसे दूर से अपने मन में चलने वाले विचारों को देखिए, केवल देखिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करें, भावनाओं में न बहे, जस्ट विचारों को आते हुए जाते हुए देखते रहे, किसी विचार को पकड़े नहीं, जाने दे। अब एक सुंदर विचार को अपने मन में दोहराए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस समय आज मैं बहुत खुश हूं। रिपीट करें इस विचार को अपने मन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। और देखिए उस विचार से ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही, मेरा मन अपने

0: यहाँ खुशी का कारण ढूंढ रहा है। गर्मी के इन दिनों में ठंडी हवा चल रही, चारों ओर हरे भरे पेड़ पत्ते फूल और उनकी खुशबुएं हैं। मेरी खुशी के कई सारे कारण हैं, परंतु मैं बिना कारण के भी खुश होना जानती हूं, मुस्कुराना जानती हूं। गहरी और लंबी सांसें। इसी विचार के साथ आज सारा दिन व्यतीत करें, मैं खुश हूं। कारण ढूंढे खुशी के लिए, और ना हो तो बिना कारण के भी खुश होना अपनी आदत बना ले। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी। एक थॉट में हम कैसे स्थित हो सकते हैं अपने, और मल्टीपल आने वाले थॉट से अवेयर होते हुए जाते हुए भी कैसे देख सकते हैं और कैसे टिक सकते हैं उस इमोशन में जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम चाहते भी हैं, तो उसका प्रोसेस आपने बताया, एक्सपीरियंस भी कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर और राज जानना चाहते हैं, अपने इमोशंस को और बेहतर पहचानना चाहते हैं, अपने जीवन को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो जुड़ना मत भूलिए लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। मुलाकात होगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिल से कहिए लव यू जिंदगी।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वंदे मातरम गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें स्वशासन की सामूहिक इच्छा और लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव झलकता था। शुरुआत में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ ये गीत जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय जागृति का गीत बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के मुख्य इलाकों और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम का स्वर ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में गूंज उठा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के अनेक वीर क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र भी था। फिर वो अमेरिका में गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी रहे करतार सिंह सराबा ही क्यों ना हो। वंदे मातरम का नारा उन्हें वतन पर मर मिटने का हौसला देता था। आज के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी करतार सिंह की कहानी, जो मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ा दिए गए।
1: दीदी, सच में वंदे मातरम गीत में बड़ी शक्ति है। आज भी सुनती हूँ तो अंदर एक जोश भर जाता है।
2: हाँ बन्नू, सोचो आज जब ये गीत हमारे दिलों को इतना झंझोर देता है, वैसे में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसने देश के अनेक युवाओं में क्रांति की लौ जगाने का कार्य किया। वंदे मातरम गीत न सिर्फ क्रांतिकारियों में नया जोश, शक्ति और उम्मीद भरता था, बल्कि वो उनका बीज मंत्र बन गया था। गदर आंदोलन के दौरान भी इस गीत ने क्रांतिकारियों के हृदय में जल रही ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: आप श्रोताओं को याद होगा कि कैसे 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने एकत्रित होकर गदर पार्टी का गठन किया था। उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। वीर क्रांतिकारी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना पार्टी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखते ही देखते वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वो उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों से भयभीत रहने लगे थे। लेखकों में एक नाम था करतार सिंह, जो अखबार के लिए देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखा करते थे। साथ ही साथ अखबार की गुरमुखी संस्करण की छपाई का जिम्मा भी संभालते थे। बहुत कम समय में गदर पार्टी गदर आंदोलन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई और इसने समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: गदर पार्टी के ये करतार सिंह आखिर कौन थे दीदी, जिनके लेख अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं सुहाते थे?
2: अरे बन्नू, उनके बारे में बताऊंगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी तुम।
1: अच्छा, ऐसा क्या था उनमें?
2: बेजोड़ साहस, बेखौफ युवा जिसे किसी का डर नहीं था।
0: सोहन सिंह भाकना करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में मर मिटने को तैयार करतार ने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा था। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया था। यह साल 1914 की घटना होगी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध में तल्लीन हो गया था। तब गदर पार्टी के नेताओं ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया।
3: क्यों ना गदर पत्रिका के जरिए कुछ बड़ा किया जाए?
4: कोई सुझाव हो तो बताओ।
3: एक दमदार आलेख प्रकाशित करते हैं।
0: इस तरह 5 अगस्त 1914 के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय शीर्षक से एक लेखक प्रकाशित हुआ। पत्रिका की हजारों प्रतियां सैन्य छावनियों, गांवों और शहरों में वितरित की गई। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कलकत्ता जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई को संपन्न करा सकें।
4: हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
3: आप लोग ऐसे सलामिन जहाज से कोलंबो और वहाँ से कलकत्ता पहुँचेंगे।
4: मेरे साथ और कौन कौन जा रहे हैं?
3: आपके साथ सत्यन सेन, विष्णु सेन, विष्णु गणेशन पिंगले और गदर के स्वतंत्रता सेनानी भी होंगे।
4: ठीक है, फिर हम जाने की तैयारी करते हैं।
3: जुगंतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ कलकत्ता पहुंचकर आप और पिंगले बनारस जाएंगे और वहां राज बिहारी बोस से मुलाकात करेंगे। उन्हें सूचित करेंगे कि 20,000 और गदर सदस्य जल्द ही आने वाले हैं।
0: हालांकि इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई और बड़ी संख्या में गदर पार्टी के नेताओं को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: होना क्या था, गदर के क्रांतिकारी कहां से पीछे हटने वाले थे। गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने लुधियाना के पास लादोवाल में एक बैठक की। बैठक में सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया।
0: तय योजना के तहत सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक छापे के दौरान हुए बम विस्फोट में दो गदरी वार्याम सिंह और भाई राम रखा मारे गए। उधर 25 जनवरी 1915 को राज बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और 12 फरवरी को साथियों के साथ एक बैठक की।
5: साथियों, हाल ही की घटनाओं से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। हमें बहुत सोच समझकर और संभलकर विद्रोह का निर्णय लेना है।
6: आपने क्या सोचा है?
5: अगर आप सभी की सहमति हो तो 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। पहले हम मियां मीर और फिर फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा।
6: ठीक है, हम सब आपके साथ हैं।
0: पार्टी के सदस्य योजना अनुसार तैयारी में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कोई पुलिस मुखबिर है जो सभी योजना पर पानी फेर सकता है।
7: जनाब, गदर पार्टी वाले बड़ी योजना बना रहे हैं।
8: What is their plan? Tell me.
7: साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप गारंटी दें तो मैं बताऊं।
8: Don't test my patience. Just tell their plan.
7: वे सभी 21 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगे। छावनियों पर कब्जे की बात कर रहे थे। दिल्ली अंबाला किसी को नहीं छोड़ेंगे।
8: Oh, how dare are they?
0: किरपाल सिंह की मुखबिरी के कारण 19 फरवरी को ही बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने देशी सैनिकों को निहत्था कर दिया। इससे विद्रोह विफल हो गया। क्रांति की विफलता के बाद जो सदस्य गिरफ्तारी से बच गए थे उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया।
9: मुझे कहाँ जाना है सोहन सिंह जी?
3: आप हरनाम सिंह तुंदिलाल, जगत सिंह और कुछ अन्य साथी अफगानिस्तान जाएंगे। ईश्वर सिंह चीन जाएंगे।
0: सोहन सिंह ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन करतार सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 मार्च 1915 को वो दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा के चक नंबर 5 में चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भनक रिसालदार गंडा सिंह को मिल गई और उन्होंने करतार, हरनाम सिंह तुंदिलात और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। गदर पार्टी में खलबली मच गई।
1: आगे क्या हुआ दीदी? गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ?
2: बन्नो, तुम क्यों घबरा रही हो? क्रांतिकारी सदा अपनी जान हथेली पर लेकर चला करते हैं। उन सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा सजा भी बड़ी होनी थी।
1: क्या सजा मिली दीदी?
2: फांसी।
1: ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ।
2: हाँ, लेकिन सच यही है।
1: किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की?
0: ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह और उनके साथियों पर जो षड्यंत्र के आरोप लगाए थे उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिर्फ विदेशी हुक्मरानों को एक खुली चुनौती थी जिसे राजद्रोह का नाम दिया जा रहा था।
9: सारे आरोप गलत हैं। मुझे अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। ये तो सत्ता हथियाने वालों की महज एक चुनौती थी जिस पर मुझे गर्व है। प्रत्येक दास को विद्रोह करने का अधिकार है। अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता।
0: करतार सिंह की अपनी दलील थी लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे कहां मानने वाली थी। उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। करतार सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
9: आप अपनी करो, मैं अपनी, सारा दोष मेरा है।
10: I'm really surprised to see this man. He is so fearless.
0: न्यायाधीश इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह व्यवहार करते देखकर चकित थे। करतार की उम्र को देखते हुए उन्होंने उनसे अपना बयान बदलने की सलाह दी। उनसे अपील करने को कहा गया। तब करतार ने पलटवार किया।
9: मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते ना, तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता।
0: करतार को वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें एहसास था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे।
9: सुनो, अगर हमें कुछ औजार मिल जाए ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
11: कौन करेगा हमारी मदद?
9: कोई ना कोई देशभक्त तो मिल ही जाएगा, उसे ढूंढो।
11: ठीक है, देखता हूँ।
0: और एक दिन करतार के साथियों को एक मददगार मिल गया जिसने उन्हें सलाखों को काटने वाला एक औजार उपलब्ध करा दिया। सभी बड़े सावधानी से अपनी योजना को अंजाम देने में लग गए, लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दिया। किसी गद्दार ने जेल अधिकारियों को इसकी खबर दे दी।
12: साहब, करतार और उसके साथी जेल से भागने की योजना बना रहे हैं।
13: तुम पागल हो, इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता।
12: जनाब जनाब, आप उसके सेल में छापा तो डालिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दो कोड़े लगा देना।
13: Oh, you foolish! चलो देखता हूँ।
0: जेलर अचानक से करतार सिंह के सेल के पास पहुंचता है और ताला खोलने को कहता है।
13: तुम साहब एक साइड खड़े हो जाओ। सिपाही, तलाशी लो पूरे सेल की।
14: जी जनाब।
12: लगता है किसी ने गद्दारी कर दी है।
14: सर जी, ये देखिए इस मिट्टी के गड्ढे के नीचे क्या मिला।
13: औजार? चप कर लो सबको और अलग अलग सेल में डाल दो।
0: जेलर करतार को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। फिर सुनवाई की तारीख आती है। एक बार फिर से सभी जज के सामने थे।
15: करतार, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
12: नहीं जी, जो कहना था मैं कह चुका हूं।
10: Then I must announce the judgment.
15: करतार और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
0: इस तरह जज ने सजा सुना दी और फिर वो मनहूस तारीख आई, 17 नवंबर 1915, जब करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर के केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी। लेकिन उसका साहस ऐसा था कि कैद के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था।
1: इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, वो तो सच में बड़े निडर थे।
2: हाँ बन्नो, करतार सिंह की रगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो कैसे भी उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती उसे सहर्ष स्वीकार करते थे।
1: देश को तो उन पर नाज है, उनके परिवार वालों को भी बेटे पर फक्र होगा।
2: तुम जानना चाहोगी कि करतार सिंह ने भावी क्रांतिकारियों के सामने कितनी बड़ी मिसाल पेश की? यहां तक कि शहीद भगत सिंह भी उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पास से करतार सिंह सरबा की तस्वीर बरामद हुई थी। वे हमेशा इस तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे।
0: ये थी एक महान युवा क्रांतिकारी के शहादत की कहानी। वो क्रांतिकारी जिसका जन्म पंजाब के लुधियाना के समीप सरभा गांव में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वो एक जट सिख परिवार से थे। बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दादा ने उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद करतार सिंह का लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। वहां 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद जुलाई 1912 में उन्हें बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सैन

फ्रांसिस को भेज दिया गया। हालांकि उनके वहां अध्ययन के भिन्न भिन्न प्रमाण हैं। बाबा ज्वाला सिंह के एक ऐतिहासिक नोट में उल्लेख है कि जब वो दिसंबर 1912 में एस्टोरिया ओरेगन गए तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल कारखाने में काम करते हुए पाया। विश्वविद्यालय के पास करतार सिंह के दाखिले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। जो भी हो, वंदे मातरम के मूल मंत्र को अपने दिल में बसाए इस वीर क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराने का ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक और वीर क्रांतिकारी के शहादत की कहानी।

क्योंकि जो व्यक्ति अपने ज्ञान, समय और प्रेम से दूसरों के जीवन में उजाला भरता है, वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। कैसे, जरा विचार करेंगे? और जी हाँ, अगर गंजापन और खलवाट है तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाले हों। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और आज व्यंजन में मूंग की दाल के अब आगे आप पूर्ति करेंगे कि क्या आपको पसंद है। ठीक है, मूंग की दाल का नाम लिया है, इसके क्या चीज आपको खानी है जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर हम तो बैठे ही है। और आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर से आशियाना कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, दोस्तों, जीवन में बड़ा बनने से पहले उपयोगी बनिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ज्ञान, समय और प्रेम से दूसरों के जीवन में उजाला भरता है, वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। उनके आश्रम में दो दीपक हर शाम जलाए जाते थे। एक दीपक मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता और दूसरा आश्रम के बाहर रास्ते पर, ताकि रात में आने जाने वाले लोगों को रास्ता दिखाई दे। एक दिन मंदिर वाला दीपक गर्व से बोला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे भगवान के सामने जलाया जाता है, लोग मुझे देख करके हाथ जोड़ते हैं, लेकिन तुम तो बाहर धूल मिट्टी में पड़े रहते हो। बाहर वाला दीपक मुस्कुराकर बोला, भाई, हम दोनों का तेल भी एक है, बाती भी एक है और रोशनी भी एक है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी रोशनी राह भटके लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है। ये बात सुनकर के मंदिर वाला दीपक चुप तो हो गया, लेकिन उसका अहंकार अंदर का खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद तेज आंधी आई, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए, इसलिए अंदर का दीपक सुरक्षित रहा, लेकिन बाहर वाला दीपक तेज हवा से बुझ गया। अगली सुबह संत ने दोनों दीपकों को देखा। उन्होंने बाहर वाले दीपक को साफ किया, फिर से जलाया और कहा, जो दूसरों के जीवन का अंधेरा मिटाता है, वही सबसे बड़ा दीपक होता है। मंदिर वाले दीपक ने यह बात सुनी और उसका अहंकार समाप्त हो गया। उसने समझ लिया कि सम्मान स्थान से नहीं, सेवा से मिलता है। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, जीवन में बड़ा बनने से पहले उपयोगी बनिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ज्ञान, समय और प्रेम से दूसरों के जीवन में उजाला भरता है, वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। और इतना सा कहना चाहूंगी कि दीपक कभी यह नहीं सोचता कि उसकी रोशनी किसके लिए है, वह बस जलता है। उसी प्रकार हमें भी बिना किसी अपेक्षा के प्रेम, सहयोग और सेवा का प्रकाश फैलाते रहना है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और सफलता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से बढ़ेंगे एक गीत की तरफ। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

शुभ तो जो के गट में हो अरे तोता ज्ञान दाई नहीं आवे न जैसे मन में देनु चरावे

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अगर गंजापन है, बाल उड़ गए हैं या फिर खलवाट आ गई है तो बहुत ही सुंदर उपाय आज आपको देने वाली हूँ। देखिए, खलवाट रोग हो जाने पर अक्सर गंजापन आने लगता है। इसे अंग्रेजी में एलोपेसिया कहते हैं और सामान्यतया इसे गंजा रोग कहते हैं। ठीक है, इस रोग के हो जाने पर बाल बड़ी तेजी से उड़ने लगते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, मतलब झड़ने लगते हैं, और बालों में जड़े हुए स्थान पर नए बालों की उत्पत्ति समाप्त हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है पता है? उस स्थान पर रोम कूपों का बंद होकर सिर की खाल का चिकनी और सपाट बन जाना होता है। बस इसी चिकनी बाल उड़ी खाल के निकल आने को खलवाट रोग कहते हैं। इस रोग के होने के कोई ऐसे विशेष कारण तो नहीं होते, फिर भी रक्त विकार, किसी विष का सेवन कर लेना, उपदंश, दाद, एक्जिमा वगैरह वगैरह, इनके हो जाने के कारण ऐसा होना संभव हो जाता है। वैसे मानसिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों और वृद्धावस्था की ओर पर्दापण कर चुके व्यक्तियों में इसका होना स्वाभाविक रूप से माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, ऐसी स्थिति है, खलवाट है, गंजापन आ गया है, बाल झड़ रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केले के गुदे को नींबू के रस में पीस लीजिए और लगाइए, इससे काफी लाभ मिलेगा। केला ले लीजिए, केले की थोड़ी पेस्ट कर दीजिए और इसमें नींबू का रस मिला लीजिए और सिर में लगाइएगा। आधा घंटा लगा के रखना है, फिर सिर धो लीजिए, इससे काफी लाभ मिलेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दूसरा उपाय भी बहुत ही अच्छा है। अनार के पत्ते पानी में पीसकर सिर पर लेप करिए, इससे भी गंजापन दूर होगा। अनार के पत्ते पानी में पीसकर सिर पर लेप करने से भी गंजापन दूर हो जाता है। और अगला नुस्खा सुनिएगा, नमक का ज्यादा सेवन करना बालों के लिए नुकसानकारक है, गंजापन आ सकता है। तो पीसा हुआ नमक, काली मिर्च एक एक चम्मच, नारियल का तेल 5 चम्मच मिला करके उड़े हुए बाल उस स्थान पर लगाइए, बाल आना शुरू हो जाएगा। नमक का अधिक सेवन करने से गंजापन आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, खाइए कम, ठीक है, लेकिन पिसा हुआ नमक, काली मिर्च एक एक चम्मच लीजिए, नारियल का तेल 5 चम्मच लीजिए और ये सब मिक्स करके आप जड़े हुए स्थान पर, जहां बाल जड़ गए हैं ना, उस स्थान पर लगाइएगा, तो नए बाल आना शुरू हो जाएगा। और भी सुनिएगा, बहुत ही सुंदर उपाय, गंजेपन पर हरे धनिया का रस लगाइए, बाल निकलना शुरू हो जाएगा। गंजेपन पर हरे धनिया का रस लगाने से भी नए बाल निकल आते हैं। और लास्ट उपाय है, सिर में खलवाटता या फिर बाल उड़ करके चकते हो गए हैं तो आप नीम का तेल लगाइए, इससे बाल उगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे उपाय बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर आपको अधिक से अधिक 2 बार, कम से कम 1 बार बोल के सुनाना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योग का सच्चा योगी कहलाए। ये आज का टंग ट्विस्टर है, 2 से अधिक बार नहीं सुनाना है और मिनिमम आपको 1 बार तो सुनाना ही है। तो चलिए, सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जो लोग धन का दुरुपयोग अथवा अनुपयोग करते हैं, समझो वो उसका नाश ही कर रहे हैं। दुनिया आपको इसलिए याद नहीं करती कि आपके पास बड़ा धन है, अपितु इसलिए याद करती है कि आपके पास बड़ा मन है। और आप केवल धन का अर्जन ही नहीं करते, अपितु आवश्यकता पड़ने पर विसर्जन भी करते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ खुशनुमा जीवन का, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए। जो योगी योग्यता से योग अपनाए, वही योग का सच्चा योगी कहलाए। ये आज का टंग ट्विस्टर है, दो से अधिक बार नहीं सुनाना है और कम से कम एक बार तो आपको सुनाना ही है। तो आप विषय में भी जुड़ सकते हैं, टंग ट्विस्टर भी सुना सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और आज का टंग ट्विस्टर आप सुना सकते हैं। क्या बात है, कहाँ खो गए आज भाई? जैसे कल निर्जला एकादशी थी, आज भी बड़ी द्वादशी है, तो आज भी पूजा पाठ में व्यस्त है। चलिए अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, भक्ति करना बहुत जरूरी है। और लेकिन ये तो हम सुबह सुबह कर लेते हैं, अभी तो रेडियो मधुबन की घड़ी में 10:42 हो गए हैं, तो पूजा पाठ से तो निवृत्त हो ही चुके हैं होंगे, नाश्ता वास्ता भी हो गया होगा, क्योंकि कल का पारना जो आज है ना, कल एकादशी थी, उसका पारना आज खोलेंगे, तो कुछ अच्छा हेल्दी कुछ खाया ही होगा, और हेल्दी खाते तो एनर्जी आती ही है। तो बस एनर्जी आ गई है, तो आप जुड़िए रेडियो मधुबन से और अपनी बात को रखिएगा। बहुत ही सुंदर विषय है कि जो लोग धन का दुरुपयोग अथवा अनुपयोग करते हैं, समझो वो उसका नाश ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो रहा है। देखे कहाँ, मतलब कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू है, गरीबी है तो अमीरी भी है। गरीबी है उनको दो वक्त का भोजन नसीब नहीं होता, अमीरी भी है जहां पर भोजन बचा हुआ फेंक दिया जाता है, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन ये तो ठीक है, पर जब हम अमीर है, बहुत पैसा है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे दो वक्त का भोजन जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो हम थोड़ा सा फेंके नहीं और इस तरह मदद कर सकते हैं। ताज़ा भोजन सुबह का बन गया है, पता है ज़्यादा बन गया, खाने वाले नहीं है, कुछ आप ऐसे कोशिश करिए कि पहले से ही जान लीजिए कि कौन, मतलब अपने, क्योंकि जो जिस गांव में शहर में रहता है उनको थोड़ा सा तो पता ही होता है, बड़े बड़े शहरों में पता नहीं होता, लेकिन कस्बा और गांवों में तो पता होता ही है कि भाई कौन सा अगर मध्यम है, कौन सा निम्न है, जहां अति गरीबी है, पता ही होता है। तो उनको संदेश दे दो। हेलो
1: हेलो जी, इंटरनेट बंद है हमारे।
0: हाँ जी, हाँ जी, अभी कोशिश की जा रही है कि इंटरनेट के द्वारा आप सुन सको, कोशिश जारी है।
1: नहीं सुन पा रहे आज।
0: अच्छा अच्छा,
1: अच्छा। मोबाइल से सुनते हैं
0: जी। तो आज का विषय, चलिए विषय में सुना रही हूँ, अगर आपको किसी को रेडियो मधुबन नहीं सुनाई दे रहा है तो आप जुड़िएगा, फोन लगाइएगा, तो फोन पर आपको टंग ट्विस्टर भी सुना दूंगी और विषय भी फिर से दोहरा दूंगी, ठीक है? और जो सुन पा रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ऐसे तो लोकल कम्युनिटी सुन ही पा रही है, तो जरूर आप जुड़िएगा जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वो। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि जो लोग धन का दुरुपयोग या फिर अनुपयोग करते हैं, समझो वो उसका नाश करते हैं। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: जी, नमस्ते सुरेश भाई, मुल्तान से।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
2: बस हम भी अच्छे हैं, इंटरनेट तो बंद है, लेकिन अभी जो हमको एप्लीकेशन भेजी है रोहित भाई ने, तो हम इसे सुन रहे हैं।
0: जी जी जी,
2: चलो सुनाई देता रहे, तो सुन रहे हैं कार्यक्रम
0: जी,
2: और अच्छी बातें हो रही है
0: जी।
2: और पहले तो मैं टंग ट्विस्टर सुना दूं दीदी।
0: हाँ जी जरूर।
2: तो अच्छा आपने योग के बारे में कल सिस्टर बनाया है, अच्छा लगा। योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योगा का सच्चा योगी कहलाए। योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योग का सच्चा योगी कहलाए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: ठीक है जी, और जो आपने बात से बहुत अच्छी की है दीदी, आज कई लोग भूखे सो रहे हैं
0: जी,
2: और कई लोग इतने पैसे उड़ा रहे हैं होटल और के अंदर
0: जी,
2: तो इसका पैसा आपके पास है तो इसका अच्छा उपयोग कीजिए। आपको भगवान ने प्रसाद दिया है आपके पास, अब तो कई सारे पैसे हैं तो इस पैसे अपने अच्छे कार्य में लगाएं। आज कई लोग ऐसे भूखे सो रहे हैं, कोई ऐसे है कि इसको पढ़ना है तो इसके पास कुछ फीका पैसा नहीं है, कपड़े के पैसा नहीं है, बुक पैसा बुक लाने के लिए पैसा नहीं है, तो इसका ही उपयोग करिए दीदी। वरना तो आपके पास पैसा है तो कोई मतलब नहीं है। आज देखो मैं बात बता दीदी, हमारे जो समाज वाले बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं कि पैसा तो कोई ऐसे इंसान होता है तो पैसे की भी मदद करते हैं, फ्री भी भर देते हैं, और इसको चोपड़ा कोई बुक लानी हो तो वो समाज वाले लाके उसको करवे भी
0: देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पहल है।
2: तो ये दीदी एक कोशिश अच्छी हो रही है हमारे समाज में, और जो कोई परिस्थिति ऐसी है, किसी की परिस्थिति नहीं है, कमाने वाला घर में नहीं है, तो इसको 10,000 रुपया का राशन लेके एक महीना का दे देते हैं।
0: क्या बात है,
2: सर पहुँचा देते हैं।
0: बहुत सुंदर।
2: तो ये पैसा दीदी, ये पैसा कोई समाज वाले नहीं देते, पैसे वाले देते हैं।
0: अच्छा,
2: क्योंकि ये पैसा कोई देते हैं समाज वाले को देते हैं, और समाज इसका उपयोग करते हैं, कोई ऐसा लोग होते हैं तो इसको
0: जी जी। तो मंथली हर महीने मतलब 10,000 का सामान उनके घर भिजवाया जाता है
2: जी।
0: बहुत बढ़िया, 10,000 का तो भले जरूरत ही नहीं पड़ती होगी।
2: कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई बूढ़ा आदमी है, घर में परिस्थिति विकट है
0: जी,
2: वो ये लोग सर्वे करते हैं कि भाई किसको जरूरत है। हाँ, जिसको जरूरत है इसको देते हैं, जरूरत नहीं है इसको नहीं देते।
0: हाँ, वो तो
2: कमाने वाले है
0: जी,
2: कमाने वाले घर में है तो उसको नहीं देते, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको देते। तो ये मदद की दीदी सबकी मदद है,
0: बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं तो कहूँ हर समाज को ऐसा करना चाहिए, हर समाज को।
2: हाँ, हर समाज को ऐसा करेंगे तो दीदी क्या है, बच्चे बढ़ पाए, और किसी को ऐसी परिस्थिति हो तो वो आराम से उसका घर चला सके, रोटी खा सके, यानी कि भोजन की भी व्यवस्था, सभी किराना का सामान देते हैं तो वो खुद बना के आराम से कर चला देते हैं। ऐसी करो दीदी, ये पैसा कोई समाज वाले को छापते नहीं देते, लेकिन वो जो पैसे है वो कोई अमीर है, कोई जरूर पैसा ज्यादा है इसके पास, वो ही देते हैं
0: जी।
2: तो मेरा कहना दीदी यही है कि आपके पास पैसे हैं तो आप काम में भी, कोई ऐसे लड़के ऐसे कोई बच्चे हैं, ऐसे कोई भूखे लोग हैं तो इसको मदद करो आप, वरना आप ऐसे होटलों में उड़ा देंगे, कोई ऐसे कोई दूसरे कार्य में उड़ा देंगे तो पैसा तो कोई मतलब नहीं है दीदी। धन से नहीं, आप धन से आपके पास है तो मन से आप अच्छा बनो। आपके पास धन है तो आप धन का उपयोग करो तो आपके लोग याद करेंगे कि नहीं भाई उसने हमको ये दिया तो आज मैं इस तरह अच्छी रीते अच्छी पहुंच पर हूँ और अच्छा मोया कर परिवार चल रहा है
0: जी।
2: तो बस दीदी मेरा तो यही कहना है कि आपके पास पैसे है तो दूसरे की मदद करो।
0: बिल्कुल,
2: वरना पैसा आप वैसे होटलों में देखे, देखो आज 1,000 रुपया होटलों में लोग खर्च रहे हैं
0: जी।
2: एक बार होटल में खाने के लिए जाते हैं दीदी, दो दो तीन तीन चार चार 1,000 का बिल बन जाता है
0: जी। बिल्कुल,
2: खाना कुछ नहीं, आधा खाना छोड़ के जाते हैं।
0: आधा खाना छोड़ना और खाने में क्या है, हम घर पर तो वैरायटी खाना बना सकते हैं, 1,000 रुपए में ही अच्छी चीजें बन जाती है, और वह 5,000 दो तो भी सब्जी रोटी और बस सब्जियां तरह तरह की और अटड़म सटड़म पता नहीं क्या क्या
2: जी। तो ये हमने देखा है दीदी, कभी होटल में देखते हैं तो लोग झूठा खाना छोड़ के चले जाते हैं, पैसा बचा देते हैं, तो इससे फायदा नहीं है, इससे अच्छा है आप घर पे बनाए खाए, और जैसे ऐसा होता है दूसरों को मदद कीजिए, बस मेरा दीदी यही कहना है। नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से. बहुत ही सुंदर बात आपने रखी है अपनी. देखे इनके समाज में कितना अच्छा कार्य हो रहा है. हर समाज में होना चाहिए. बहुत सारे समाज में होता भी होगा, लेकिन जो नहीं करते उनसे भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए एक समय होटल का काम कर दीजिए आप. ठीक है कि भाई महीने में 4 बार जाते हो तो 3 बार जाइए. एक बार की बचत करके आप ऐसे समाज के गरीब बच्चों की मदद करिए. समाज के बच्चों की करिए, अन्य बच्चों की करिए, जो भी आपको जिसके भी मदद करना चाहो आप कर सकते हो. ठीक है, जो पढ़ाई में होनहार है और कैपेबल नहीं है किताबें खरीदने के, फी भरने के, तो उनकी मदद कर सकते हैं. कहते हैं ना विद्या धन सबसे श्रेष्ठ दान है, ये विद्या दान. एक बच्चा जब पढ़ लिख करके होनहार होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो वो जिंदगी भर दुआ देगा. इसलिए थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करिए, त्याग कर दीजिए एक टाइम का, तो भी वो बचत काफ़ी है. बहुत सारे लोगों ने नियम बना रखा है कि भाई हर संडे तो हम बाहर ही जाएंगे, संडे को घर पर नहीं खाएंगे. चलिए कोई बात नहीं, वो आपका पर्सनल मैटर है, जाइए रुके. लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि अगर धन का दुरुपयोग ना हो करके सदुपयोग हो तो सोने पे सुहागा, दुआएं भी मिलेगी, हमारा मन प्रसन्न रहेगा कि चलिए हमने किसी के लिए अच्छा किया है. बाकी खुद का तो सभी करते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन जब दूसरों का अच्छा करते, दूसरों के लिए कुछ हम करने की कोशिश करते हैं, तब सही मायने में खुशी मिलती है कि हाँ आज हमने कुछ नेक किया है. बाकी तो क्या है, कुत्ते बिल्ली वो भी तो अपने लिए जी रहे हैं ना, तो हम तो इंसान हैं, अपने लिए जी सकते हैं. लेकिन जीना वो क्या जो खुद के लिए जिए. अरे जियो तो ऐसा जियो जो गहरों के लिए जिए. तो कुछ ऐसा नहीं है कि पहचान वालों के हम मदद करें, कुछ अनजान लोगों की जो आपकी नज़र में सही मायने में गरीब है उनके भी मदद आग बंद करके कर लीजिए, फिर देखिए दुआएं कितनी मिलती है. चलिए इस विषय पर और भी बातचीत करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक गीत सुनने का. तो पहले मैं टंग ट्विस्टर सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योग का सच्चा योगी कहलाए. तो ये टंग ट्विस्टर है, अधिक से अधिक दो बार, कम से कम एक बार बोल के सुनाना है. नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के टंग ट्विस्टर को सुना सकते हैं, आज के विषय को स्पष्ट कर सकते हैं. फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM.
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं. 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार.
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। जो लोग धन का दुरुपयोग अथवा अनुपयोग करते हैं, समझो वो उसका नाश ही कर रहे हैं। दुनिया आपको इसलिए याद नहीं करती कि आपके पास बड़ा धन है, अपितु इसलिए याद करती है कि आपके पास बड़ा मन है। और आप केवल धन का अर्जन ही नहीं करते बल्कि आवश्यकता पड़ने पर विसर्जन भी करते हैं, क्या कहेंगे आप। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, जिसको भी मैं फिर से दोहरा रही हूँ। योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योग का सच्चा योगी कहलाए। दोनों में ही जुड़िएगा, विषय को भी स्पष्ट करिएगा, आज का टंग ट्विस्टर भी सुनाइएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। क्या बात है, कहाँ खो गए हमारे श्रोता बंधु। चलिए, कहीं नहीं खोए, आ जाइएगा रेडियो मधुबन की तरफ, फोन लगाइए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है या कोई और समस्या है तो रोज आप फोन लगाते ऐसे ही लगाइएगा। और बात चल रही थी धन के दुरुपयोग की, और सुरेश भाई ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि भाई समाज में इस तरह की मदद भी होती है। बहुत सारे समाज में ऐसा भी शुरू हो गया है कि जैसे बहुत जनों के पास कपड़े बहुत होते हैं, ठीक है, जो अननेसेसरी होते हैं, पहने अच्छे अच्छे कपड़े ऐसे ही रख लेते हैं, नए नए खरीदते जाते पहनते रहते हैं और पुराने कपड़े सोचते हैं कहाँ देवे क्या करे, फिर अच्छे है भाई पहनेंगे, फिर पहनने का नंबर ही नहीं आता है। तो ऐसे कपड़े समाज में लेना शुरू कर दिया और उन लोगों को देते जो समाज के ही लोग, जो गरीब है, जो नहीं खरीद सकते उनको दे देते हैं। तो ये भी एक अच्छी पहल, अभी किसी ने फोन करके बताया था, ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत जनों को नसीब नहीं होता है कि 3-4 ड्रेस के अलावा उनके पास ज़्यादा हो, तो अच्छी बात है, उनको भी मदद मिल जाती है और हमारा भी सफल हो जाता है। अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं जो 2-3 बार पहनते हैं बहुत जने, उसके बाद पहनते नहीं हैं, तो आप ऐसे दे दिया करो, अच्छी बात है, ठीक है। ये भी चलो नया नहीं दे सकते तो ये भी नया जैसा ही है, क्योंकि पैसे वाले लोग क्या है, ब्रांडेड खरीदते हैं, 2-3 बार पहनने के बाद शौक खत्म और भाई पुरानी हो गई, कॉमन हो गई, तो आप किसी को दे सकते हैं। हेलो,
1: हेलो शबेन जी।
0: हाँ जी, नमस्ते कंचन भाई, कैसे हैं आप।
1: नमस्कार बहन जी, बस ये दुकान पे है, आज इंटरनेट बंद था तो सुन नहीं पाते थे, तो क्या है विषय और प्रश्न भी क्या है वो पता नहीं चलता था, तो अभी अभी जो सुरेश भाई ने लिंक भेजी
0: जी
1: पर सुना, लेकिन सुनता था लेकिन कॉल चालू किया तो वो बंद हो गया लिंक।
0: अच्छा जी, मैं विषय सुना रही हूँ। जो लोग धन का दुरुपयोग या फिर अनुपयोग करते हैं, समझो वो उसका नाश करते हैं। दुनिया आपको इसलिए याद नहीं करती कि आपके पास बड़ा धन है, बल्कि इसलिए याद करती है कि आपके पास बड़ा मन है। और आप केवल धन का अर्जन ही नहीं करते अपितु आवश्यकता पड़ने पर विसर्जन भी करते हैं, क्या कहेंगे आप।
1: हाँ, बहुत अच्छा है ना
0: जी,
1: बहुत अच्छा की धन तो किसी के पास होता है नहीं होता है ऐसा पता है बिंदी, लेकिन धन का कोई अभिमान नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: आज है कल चला जाएगा, कोई अगला जन्म का अच्छा कर्म किया हो तो ये प्राप्ति होती है, तो इसका उपयोग कैसे करना चाहिए वो ये करना चाहिए, ठीक है, सही उपयोग करना चाहिए
0: जी,
1: समय सर इसका करना चाहिए।
0: देखिए कंचन भाई, बहुत सारे समाज वाले जैसे सुरेश भाई भी बता रहे थे, अभी हमारी भी किसी से बात हुई कि समाज में भी अच्छी पहल कर रहे हैं, जैसे पैसे वाले हैं तो वो गरीब परिवार वालों की मदद कर रहे हैं, बच्चों जो पढ़ाई में होशियार हैं उनकी फीस भर रहे हैं, किताबें खरीद के दे रहे हैं, समाज को दे देते हैं पैसे, फिर समाज वाले उनकी मदद करते हैं, ये भी एक अच्छी पहल है।
1: हमारा एक गुरु जी का आश्रम है, ठीक है, तो वहाँ काफी जरूरत होती है तो पैसे वाले है कई लोग हमारे गांव में
0: जी।
1: हम भी हमारे जितना हो सकता है इतना ये करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई है जिसके पास धन है पैसे है तो वो बड़ा दान करते है
0: जी,
1: ए, बड़ा बड़ा ए, करते है इसमें इस संसार में इसकी जरूरत है ये नहीं है इसकी जरूरत है तो ये दान करके लाके खरीद के रख देते है। तो ये इसके समक्ष इसका उपयोग करना चाहिए। कई कई अब हम नहीं आके एक सुनते कि भाई धन कहाँ डांट देते है जमीन में ये कर देते है लेकिन ये दान पुण्य नहीं करते। तो ये समय सर इसका सही उपयोग सही जगह पे ही करना चाहिए
0: जी।
1: ये मैं तो थोड़ा
0: जी और आज का टंग ट्विस्टर सुन लीजिए। योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए। जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योग का सच्चा योगी कहलाए। ये टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाना है, भले एक बार भले दो बार।
1: ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, मेरे रिकॉर्डिंग होता है आप
0: जी।
1: बोल रहे हैं, मैं कॉल किया तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाता है तो अभी मैं एक दो बार सुन के फिर सुनाऊंगा।
0: ठीक, चले, बहुत बहुत आभार। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। तो देखिए बहुत ही सुंदर विषय है कि केवल धन के अर्जन से, वो कहते हैं ना कि जो लोग धन का दुरुपयोग या फिर अनुपयोग करते हैं समझो वो उसका नाश ही कर रहे हैं। दुनिया आपको इसलिए याद नहीं करती कि आपके पास बड़ा धन है, अपितु इसलिए याद करती है कि आपके पास बड़ा मन है और आप केवल धन का अर्जन ही नहीं करते अपितु आवश्यकता पड़ने पर विसर्जन भी करते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, केवल धन के अर्जन से समाज में आपका महत्व नहीं बढ़ जाता अपितु अर्जन के साथ साथ विसर्जन ही समाज में किसी व्यक्ति को मूल्यवान और विशिष्ट बनाता है। देखिए शास्त्रों में धन के तीन घटियां बताई है, उपयोग, उपभोग और नाश। हेलो हेलो, नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते दीदी जी, नमस्ते।
0: हाँ जी मदन भाई, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है और बादल छाए हुए अक्षर है
0: जी।
2: और बस कि थोड़ा टाइम मिला तो चलो फोन लगा देते हैं।
0: अच्छी बात है।
2: तो आज शुक्रवार है तो क्या है आज?
0: हाँ जी,
2: क्या बनाया
0: आज? बनाएंगे तो अभी अभी विषय चल रहा है।
2: अच्छा बनाए कि मतलब 10 मिनट सवा।
0: हाँ अभी तो आप
2: बनाएंगे?

0: क्या हर चीज संभाल के रखना जरूरी है तो समय से काम आती है। आज हम कई वर्ष से करते आए, कभी नहीं करते तो भूल जाते, तो कुछ गिर जाता है कीड़े, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी धुल जाता है तो नुकसान हो जाता है। और कुछ तो हर चीज को मतलब अच्छे ढंग से रखना जरूरी है। कोई भी चीज चाहे हजारों की हो या 5 रुपये की क्यों ना हो, हर चीज काम में आती है। इस टाइम में 5 रुपए की चीज की 1000 के बराबर आ जाती है
1: जी।
0: तो हर चीज को अपने संभाल के रखना जरूरी, बहुत अच्छी बात है। और आपको नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को और हमारे
1: टंग ट्विस्टर सुनाएंगे। टंग ट्विस्टर योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योग का सच्चा योगी कहलाए। फिर से आप दोहरा सकते हैं?
0: जी जी जी जी
1: बोलिए। चलिए मदन भाई, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि देखिए शास्त्रों में धन की 3 गतियां बताई गई है, उपयोग, उपभोग और नाश। धन से जितना आप चाहो ना सुख के साधनों को अर्जित करो, बाकी बचा हुआ धन सृजन कार्यों में, सत्कार्यों में, धर्म के प्रचार में, गो सेवा में, समाज के अच्छे कार्यों में लगाइए। अपने जीवन का ऐसा अभ्यास बनाइए, यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका धन नाश को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दुरुपयोग हो रहा है, उसका हम गलत कार्यों में लगा रहे हैं। जीवन का एक सत्य यह भी है कि संग्रह किया गया विषाद बन जाता है और बांटा गया क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो क्या करेंगे, संग्रह करेंगे या बांटेंगे? हाँ, ऐसे नहीं कि भाई धन ज्यादा है तो नोटों की गड्डियां बांटने लग गए, ऐसा कोई नहीं करता है और ये नहीं कह रहे हम। हाँ, अगर एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा है तो उसको आप बचा कर ऐसे गरीब को मदद कर सकते हैं जो भोजन के लिए तरस रहा हो, जो कपड़े के लिए तरस रहे हो, जिसके सिर पर छत नहीं है, तो ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। आप अनाज के द्वारा करिए, कपड़ों के द्वारा करिए, घर देख करके करिएगा, लेकिन इस तरह आप मदद करिएगा। बाकी तो ठीक है, धन है तो उसको यूज करिए, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देने के संस्कार रखेंगे तो सचमुच सही मायने में सच्ची खुशी बनी रहेगी। और आइए अब इस विषय को यही समाप्त करके एक ब्रेक लेते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: اپکا ہوں, کچھ کہنا چاہتی ہوں. لیفٹ سائڈ میں ہی ہمیں چلنا چاہیے اور ہمیشہ تیز آتے واہنوں سے سوئم کو بچانا چاہیے. جو کار چلاتے ہیں ان سے بھی میرا یہ نویدن ہے کہ جب بھی آپ کار چلائیں تو بیلٹ دے رکھی ہے, سیٹ بیلٹ کا اپیوگ کریں, اس سے سرکشا بنی رہے گی. جان ہے تو جہان ہے.
1: ریڈیو مدھوبن.
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का. तो पधारिए आशियाना के किचन में. आज आपको सिखाने जा रही हूँ. मैंने पहले ही बताया था भाई मूंग की दाल का क्या, लेकिन आपने कुछ बताया नहीं, आप तो अपनी चॉइस रखते ही नहीं. तो चलिए हम अपनी चॉइस की बना देते हैं, मूंग की दाल का बड़ा. ठीक है, चलिए सामग्री थोड़ी ज़्यादा है, पेन और डायरी ले लीजिएगा और लिखिएगा. धुली हुई मूंग की दाल ले लीजिए 1.5 कप, धुली हुई उड़द की दाल ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, हरी मिर्च 2-3, हरी चटनी 1/2 कप, 1/2 कप ही मीठी चटनी, फिर 2 बड़े चम्मच हरा धनिया ले लीजिए. तलने के लिए आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है. हल्दी पाउडर अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा. अंकुरित मूँग की दाल दरदरी पीसी हुई 1/2 कप लेना है. अदरक बारीक कटी हुई 1 छोटा चम्मच ले लीजिएगा. बेकिंग पाउडर लेना है 1/4 चम्मच और दही फेंटा हुआ लीजिए, उसमें नमक डाला हुआ, भले आप 2 कप दही ले लीजिए, बाद में फेंटना. तो यह हो गई सामग्री. फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा. धुली हुई मूंग की दाल, उड़द की दाल भी धुली हुई, स्वाद के अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर गरम मसाला, हरी मिर्च, हरी चटनी, मीठी चटनी, हरा धनिया, तलने के लिए तेल. फिर आप लीजिएगा स्वाद के अनुसार हल्दी पाउडर, अंकुरित मूंग की दाल दरदरी पीसी हुई, अदरक, बेकिंग पाउडर और दही. अब बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ. मूंग की दाल और उड़द की दाल को 2 घंटे पानी में भिगो दीजिए. इस भिगी हुई दाल के साथ ही इसको दरदरी पीसी हुई दाल, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक को मिक्सी में डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए. अब इस पेस्ट को एक बर्तन में डालकर 8 घंटे तक खमीर उठने के लिए रख दीजिए, सबको मिक्स करके. ठीक है, खमीर उठने के बाद मिश्रण में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए. इस मिश्रण में बचा हुआ अदरक भी मिला दीजिए. इस मिश्रण के बड़े बना करके तलिए. इन बड़ों को दही, अब आप दही फेंट लीजिए, नमक डाल करके दही फेंट लीजिए. ठीक है, फिर मीठी चटनी, हरी चटनी और धनिया से सजा करके आप सर्व कर सकते हैं. तो इस तरह मूंग की दाल का वड़ा बनाया जाता है, जिसकी विधि मैं फिर से दोहरा रही हूँ. मूंग की दाल और उड़द की दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए. इस भिगी हुई दाल के साथ ही दरदरी पीसी हुई दाल, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक को मिक्सी में डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए. अब इस पेस्ट को एक बर्तन में डालकर 8 घंटे तक खमीर उठने के लिए रख दीजिए. ठीक है, इन सभी में मिक्स करके. अब इस पेस्ट को एक बर्तन में डाल दिया आपने, खमीर उठ गया. खमीर उठने के बाद इस मिश्रण में नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला और बेकिंग पाउडर डाल करके अच्छी तरह मिक्स करके आप रखिए. फिर इस मिश्रण में बचा हुआ अदरक भी मिला दीजिए. फिर मिक्स करिए, इस मिश्रण के बड़े बनाइए. फिर आप कढ़ाई में तेल डाल करके तल लीजिए और तलने के बाद इस पर दही, मीठी चटनी, हरी चटनी और धनिया से सजा करके आप सर्व कर सकते हैं. तो इस तरह मूंग की दाल का वड़ा तैयार हो चुका है. अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ज़रूर आप इस भोग को स्वीकार करिएगा. और आइए एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं. बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. रेडियो मधुबन 107.8.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में संगीता जी कपासन से इन्होंने टंग ट्विस्टर सुनाया है, सुनेंगे आप इनके आवाज में।
1: योगी योग करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योग का सच्चा योगी कहलाए।
0: बहुत बहुत आभार संगीता जी। फिर अलका जी काबरा का भी आया है मैसेज टंग ट्विस्टर के द्वारा, तो सुनेंगे।
2: योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योगी सच्चा योगी कहलाए। योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योगी का सच्चा योगी कहलाए। वही
0: चलिए, बहुत अच्छी कोशिश की है, थोड़ा सा अटके है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दोनों के लिए। और बाकी आज का सुंदर सा विचार जरूर इस पर गौर किया होगा, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तो अगर खलबटाता आ गई हो, गंजापन आ गया हो, तो इन नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और जो रेसिपी में मूंग की दाल का वड़ा आपको बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं भी दोहरा रही हूँ। योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योग का सच्चा योगी कहलाए। योगी योगा करते करते योग्यता बढ़ाए, योग्यता बढ़ाकर योग का संदेश फैलाए, जो योगी योग्यता से योग अपनाए वही योग का सच्चा योगी कहलाए। तो स्वयं के लिए भी तालियां। और बाकी सुरेश भाई जोटाना से जुड़े, कंचन भाई मंडाली से जुड़े हैं, मदन भाई मेसाना से जुड़े हैं, संगीता जी अलका जी कपासन से, तो कंचन भाई ने और मदन भाई ने नहीं सुनाया है टंग ट्विस्टर, लेकिन आप विषय में जुड़े हैं, तो आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है जीवन का सच्चा आनंद, अगर कहीं है तो वो अपने अंदर ही है, बाहर की दुनिया तो पराई चीज है जो मेरी नहीं है। अब मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगी, आज गीत कविता के लिए समय नहीं है, इसलिए यहीं पर अनुमति। कल फिर मिलेंगे, कल क्या है, शनिवार, और कल अंताक्षरी कार्यक्रम रहेगा, कल की थीम भी रहेगी शादी ब्याह के गीत, ठीक है। तो आप जरूर भाग लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा रेडियो मधुबन से। अभी आप सभी से अनुमति, आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम है जीना इसी का नाम है। ऐसा क्या चीज है जिसे हम कहते हैं जीना इसी का नाम है, आइए आज जानते हैं इस खास मेहमान के द्वारा। आज है हमारे साथ राजयोगी भ्राता भानु भाई जी। आप पिछले 32 वर्षों शांतिवन परिसर में ब्रह्म कुमारीज हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो क्या प्रेरणा रही उन्होंने अपनी जो जीवन है इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया और एक प्रेरणादायी जीवन जी रहे हैं, वो क्या प्रेरणा है और उनको क्या प्रेरणा मिली है जिस कारण से आज आप ये कार्य कर रहे हैं, आइए जानते हैं। और उससे पहले हम स्वागत करते हैं भानु भाई जी को आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में। स्वागत है भाई जी आपका।
2: थैंक यू, ओम शांति।
0: भाई जी, हम सबसे पहले आपकी लौकिक जीवन की यात्रा को जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपकी माता पिता घर परिवार के बारे में।
2: जी, मेरे शरीर का नाम वैसे भानु प्रकाश है और मेरा लौकिक जो जन्म है वो महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में श्रीरामपुर तहसील में हुआ 1975 में। और हमारा जो परिवार था, कि आप जानते हैं कि पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, तो हमारा भी 25-30 मेंबर का परिवार था। तो जैसे हमारे 4-5 चाचा थे और फिर उनके बच्चे आ वगैरह, तो सब हम 30 मेंबर का लगभग परिवार था। और परिवार में जैसे किसान परिवार ही हमारा था और एक दो चाचा हमारे जॉब भी करते थे और पूरा परिवार जैसे कि एक आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था, भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ था। और हम खुद भी जब बचपन में थे तो जैसे शिव जी की पूजा करना, श्रावण मास होता है तो उस समय वो जल चढ़ाना, और जो महाराष्ट्र में जैसे भजन कीर्तन चलते हैं तो हमारे दादाजी के साथ हम रात को भजन कीर्तन करने भी जाते थे
0: जी।
2: और वो परिवार एक आध्यात्मिक और किसान परिवार होने के कारण एक अपनापन और एक आपस में प्यार सहयोग बहुत अच्छा था। और मुझे अभी भी याद आता है कि दिन भर सभी अपने अपने कारोबार में या अपने अपने में व्यस्त थे, लेकिन रात को एक सबका एक नियम था कि रात को सभी भोजन करने के लिए एक साथ ही, जैसे घर के बाहर एक काफी थल्ला होता था, आंगन होता था, तो 25-30 मेंबर एक साथ भोजन पे बैठते थे, सब बातें करते थे, हंसी मजाक होता था। तो एक परिवार, एक संगठित परिवार था। तो चलते चलते ऐसा हुआ ना कि जैसे बचपन में हमारा भक्ति मार्ग तो था ही, लेकिन जैसे कि खेलकूद, क्रिकेट खेलना उसका ज्यादा शौक था, फिल्म देखना उसका भी शौक था, तो ये सारे शौक तो थे। और फिर एक हमारे सबसे छोटे चाचा थे, तो वो, उनको बाबा का परिचय मिला तो वो फिर ब्रांचेस में जाने लगे ब्रह्म कुमारीज के। वहाँ
0: बाबा का परिचय मतलब
2: ब्रह्म कुमारीज का जो परिचय है, जो बेसिक नॉलेज होती है वो उनको मिली, तो वो फिर वो ब्रांचेस में जाने लगे रेगुलर स्टूडेंट बन के। तो हमको पता चला कि भाई ये कहीं जाते हैं, कुछ सत्संग करते हैं, तो हमने उनको पूछा कि आप कहाँ जाते हैं, बाकी परिवार वालों ने बोले आप कहाँ जाते हो, क्या है वहाँ। तो फिर उन्होंने वहाँ जब ब्रांचेस में जो ब्रह्म कुमारी बहनें होती है उनको ही घर में बुला लिया, क्योंकि हमारे इतने सारे परिवार था और आसपास के भी, तो उस समय लगभग 100-125 लोग इकट्ठा होते थे। और वो ब्रह्मा कुमारी बहनें रोज आकर, फिर वो जो 7 days बेसिक ब्रह्मा कुमारी का कोर्स होता है, तो रोज वो कोर्स कराने लगे। तो एक बहुत खुशी की बात ये है कि हमारा जो 25-30 मेंबर का पूरा परिवार था, तो सभी के सभी ये ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान मार्ग है उसमें वो चलने लग गए। फिर हमारे दोस्त थे, अड़ोस पड़ोस के लोग थे, तो वो भी काफी इसमें इन्वॉल्व हो गए और वो भी चलने लगे।
0: उस समय आपका क्या उम्र रहा है?
2: लगभग मेरा उस समय उम्र 17 साल का लगभग थे, तो 17 साल की उम्र में ही हमको ये ब्रह्मा कुमारी इसकी नॉलेज मिली थी, तो तब से लेकर हम इस ज्ञान मार्ग में चलने लगे।
0: जी, तो 17 साल टीनेज का है और उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं और कभी कभी ये होता है कि मैं सब जानता हूँ, ऐसा भी एक वृत्ति रहती है। तो ऐसे में आपको वो कौन सी बात रही जिसे आपको लगा कि नहीं ये सत्य है, मुझे फॉलो करना है, या फिर पूरे परिवार में जब ये एक प्रथा चली है तो मेरे को भी फॉलो करना है, वो क्या था आपका सिचुएशन?
2: नहीं, जैसे कि पूरा परिवार जब इस ज्ञान मार्ग में चलने लगा तो महाराष्ट्र में एक स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है, आध्यात्मिकता के तरफ सबका झुकाव बहुत अच्छा रहता है, तो कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हम भी छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन भगवान धरती पर आया है, उस वो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं, तो एक लाइफ में वो चीज़ ऑटोमेटिकली आकर्षित करती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, शांति चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, सुख चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है हर एक व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं एक जो आध्यात्मिकता है वो उसके लिए बहुत काम करती है, और हमारी बचपन से वही मानसिकता थी, इसलिए हम भी धीरे धीरे उससे जुड़ते गए। और जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल से जाने के बाद फिर वह ब्रांचेस में जो ब्रह्मा कुमारी की रोज मुरली जिसको बोलते हैं तो वो सुनते थे, तो ये रेगुलर हमारा हाँ वो चलते रहता था।
0: जी, बहुत अच्छा। आप फिर कहाँ तक पढ़ाई किया?
2: बड़ी बात ये थी कि 10th के मैंने एग्जाम दिए, और 10th के एग्जाम देने के बाद एक मास के लिए जैसे ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर में कि सेवा के हिसाब से यहाँ बुलाते हैं, तो जब मैसेज आया कि भाई कोई अगर माउंट आबू सेवा के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, तो हम थे, हमारे दो भाई भी थे, तो फ्री है, दो महीना स्कूल नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा चलो कि हम भी, मधुबन भी तब तक देखा नहीं था हम लोगों ने, तो फर्स्ट टाइम हमने सोचा कि चलो माउंट आबू चलते हैं और वहाँ रह के एक महीना ये आध्यात्मिकता का ज्ञान भी सुनेंगे, साधना भी करेंगे और सेवा भी करेंगे। तो फिर हम लोग माउंट आबू आए तो फर्स्ट शांतिवन में ही हम पहुँचे सेवा में, और शांतिवन में हमने एक मास सेवा शुरू की। और मज़े की बात ये रही कि शुरुआत भी अभी भी मुझे याद आती कि बहुत क्या कहेंगे इसको, यादगार कहेंगे
0: जी,
2: क्योंकि उस समय में आप देख जाएंगे कि पैसेंजर ट्रेन से हम आए थे, वहाँ से 10 बजे बैठे, दूसरे दिन 10 बजे हम अहमदाबाद पहुँचे, और वहाँ से अबू रोड पहुँचते पहुँचते हमको शाम को 5:30 बज गए थे। तो जैसे हम यहाँ इंटर किया शांतिवन में, तो उस समय शांतिवन तो छोटा ही था, सब खेती होती थी, थोड़े लोग रहते थे, और हम फ्रेश होके फिर जब भोजन करके जो रात को क्लास चलती है नाइट क्लास, तो उसमें हम पहुँचे। तो जैसे पहुँचे तो यहाँ भोपाल भाई जी थे
0: जी,
2: तो क्लास होने के बाद उन्होंने हमारा समाचार पूछा, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तो सब बैकग्राउंड जानने के बाद बोले कि अभी ज्ञान सरोवर में काम चल रहा है, कल छत पड़ना है और वह कपची नहीं है।
0: अच्छा,
2: तो आप जाओगे? क्योंकि लेबर है नहीं, ड्राइवर खलासी है, उनके साथ आप लोग जाओगे? तो हम तो दो दिन के थके हुए थे फिर भी फर्स्ट टाइम आए सेवा के लिए, ना कैसे कहे, तो हम सभी ने कहा हाँ जी।
0: उस बाल उम्र में भी अब वो क्लैरिटी थी,
2: और हम लोग गए और सवेरे लगभग 2:30 बजे तक रात को हम लोगों ने वो 4 डंपर थे वो कपची भरी, फिर आके शांतिवन में रेस्ट किया। तो वो हेडक्वार्टर में मधुबन में जो सेवा का जो शुरुआत है वो एक यूनिक रहे। कहते ना कि फाउंडेशन जितना मजबूत होता है उतना ही भविष्य आपका उज्ज्वल होता है। तो हम अभी अनुभव कर रहे हैं कि वो एक फाउंडेशन हमारा बेहद की सेवा वो कैसे करनी है, तो वो एक उसका शुरुआत वहाँ से थी कि जैसे परमात्मा कहते हैं कि जो सेवा में हाजी का पाठ करते हैं वो आस्तिक, और जो ना करते वो नास्तिक। तो हमारा ये अनुभव रहा कि आते ही जो सेवा मिली
0: जी,
2: चाहे तो हम लोग इतने थके थे ना भी बोल सकते थे, लेकिन वो हाजी का पाठ किया तो वो हमें सेवा में बहुत आगे तक ले आया, और फिर एक महीना हम लोगों ने यहाँ सेवा की।
0: आपके जीवन में आदर्श कौन रहे, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ाई किया और आपके घर में भी धार्मिक प्रवृत्ति थी, और फिर बाद में आप इस आध्यात्मिक पढ़ाई के प्रति आए हैं, तो आपके जीवन में आदर्श कौन थे?
2: वैसे बचपन से हम लोग शिव जी की और अन्य सब पूजा करते थे
0: जी,
2: तो श्री राम जी मेरे आदर्श थे। उनके प्रति जैसे कहते ना, एक भक्ति भाव और भावना, पूरा समर्पण, और एक कि उनके जीवन से जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनका भी लाइफ में कि हाजी का पार्ट पक्का था कि पिता की आज्ञा मान के वो वनवास में गए, तो राम जी का एक जीवन हमेशा सामने रहता था और वही हमारे आदर्श थे।
0: आपको बचपन से राम जी बहुत अट्रैक्ट करते थे और आपको अच्छा लगता था उनका जीवन, और जब आप आध्यात्मिक मार्ग में आए, आध्यात्मिकता में कोई आइडल वर्शिप नहीं होती है, मतलब विग्रह पूजा नहीं होती है, तो फिर आपको कुछ अजीब लगा कि अभी तक मैं जिसको इष्ट मान रहा था आज मैं उसकी पूजा नहीं करूँगा?
2: जी, तो सबसे अच्छी बात ये ज्ञान में वो समझ में आई कि कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता है, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये बात भी समझ में आई कि जो श्री राम है या श्री कृष्ण है या अन्य देवता है, ये देव आत्माएं हैं, लेकिन उनके भी पिता कौन है? तो वह है परमात्मा शिव। तो जब वो क्लैरिटी आ गई तो वो फीलिंग या वो जो उलझन वो सारा खत्म हो गया।
0: यस, बहुत सुंदर। जब आप अपनी जीवन की दिशा बदल दिया है तो आपकी फ्रेंड्स, स्कूल में, सब जगह से आपको एक जैसे यू नो अवॉइड कर दिया, या फिर आपका जीवन अलग, उनका जीवन अलग, फिर फ्रेंडशिप में, ये सब चीज़ों में कभी संघर्ष हुआ?
2: इसमें सबसे बड़ी बात मेरी ऐसा स्वभाव रहा है कि चाहे ये ज्ञान मिलने के पहले स्कूल लाइफ थी या ज्ञान मिलने के बाद, अभी हम 32 ईयर से या मधुबन में हैं, हेडक्वार्टर में हैं, तो मेरा स्वभाव ये रहा है कि जब स्कूल गए तो स्कूल के दोस्त, जब खेलने गए तो क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे तो वहाँ वो दोस्त, बाकी हम जैसे आजकल होता है ना कि भाई उसके बिना खाना नहीं है, उसके बिना घूमने नहीं जाना है, उसके बिना ऐसा कोई परमानेंट दोस्त था नहीं, तो इसीलिए वो फीलिंग भी ज़्यादा नहीं रही कि भाई उनके। और जब मैं एक महीना सेवा किया, जैसे मैंने पहले कहा कि हम यहाँ माउंट आबू आए और एक महीना सेवा किया, तो जो बचपन से ही एक मैं चीज़ हमेशा सबको सुनाता हूँ कि मेरे लाइफ के जो एम थे बचपन से कि मुझे अपनी लाइफ कैसी जीनी, तो दो चीज़ें मैं अपने लाइफ में हमेशा चाहता था कि एक तो अपनी जो जीवन है एकदम शांत सुकून वाली और रॉयल्टी वाली चाहिए। अब कैसे चाहिए वो पता नहीं, लेकिन ऐसी लाइफ जीना है,
0: लाइफ जीना था,
2: ये ऐसे एक लाइफ का मेरी विजन थी। और दूसरा था कि बड़ा होके मुझे समाज की बहुत सेवा करनी, तो अपनी लाइफ चाहिए और प्लस समाज की सेवा करनी, तो ये हमेशा बुद्धि में विजन रहता था। लेकिन कैसे रहेगा, कुछ समय तो छोटे थे, लेकिन ये ज्ञान मिला और हम यहाँ आए, तो एक महीना जो सेवा मैंने की, तो एक महीना सेवा में हम जैसे ज्ञान के भी डीप में गए, मेडिटेशन के भी डीप में गए, तो ये महसूस हुआ कि जो लाइफ में शांति चाहिए, जो सुकून चाहिए, जो रॉयल्टी चाहिए, वो भगवान के ज्ञान में और भगवान के घर में मिल सकती है। तो जो मुझे एम था कि मेरी लाइफ ऐसे जीने, तो मुझे ये लगा कि ये लाइफ मुझे या ब्रह्मा कुमारीज में मिल सकती। और दूसरा जो सेवा करने की बात थी, तो ये रियलाइज़ हुआ कि आप आज समाज में बहुत कुछ सेवा करते हैं, वो ज़रूरी भी है, मेडिकल के संबंधित हो सकती है, अन्नदान होता है, स्कूल के लिए पढ़ाई के लिए कोई मदद करता है, लेकिन बहुत सारे प्रकार के हम दान करते, लेकिन वो स्थूल चीज़ें हैं, उसकी एक लिमिट है। जब तक आपने वो चीज़ दी तब तक वो व्यक्ति सुखी, वो चीज़ जैसी खत्म हो गई व्यक्ति फिर वैसे के वैसा। जैसे आपने किसी को भोजन कराया, आपको दुआएं देगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, शाम को फिर उसको भूख लगेगी। फिर तब मैंने कहा कि ये स्थूल सेवा की तो एक लिमिट है, लेकिन अगर ये परमात्मा का ज्ञान हम किसी को सुनाते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि परमात्मा के ज्ञान की समझ से और मेडिटेशन की पावर से व्यक्ति के अंदर की सारी जो बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती है, और अंदर की क्वालिटी है वो डेवलप होती है। तो ये मैंने महसूस किया अपने लाइफ में, तो मैंने कहा कि किसी का जीवन बनाना इससे बड़ी समझ सेवा कोई नहीं,
0: कोई नहीं सर।
2: तो ये दोनों चीजें मुझे वो एक मास में अनुभव हुई। उसके बाद भोपाल भाई जी थे, हम छुट्टी ले रहे थे, तो बोले इनको जाने दो, जो लोग साथ थे मेरे, आप रहो बाबा के घर में।
0: अच्छा।
2: वो मेरे लिए वरदान एक जैसे साबित हुआ। तो मैंने उस समय कहा कि नहीं, मैं बोल के नहीं आया हूँ, मैं जाऊँगा तो आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे एम तो मिल गए थे कि यहाँ रहेंगे तो एक विश्व की सच्ची सेवा भी कर सकते और अपनी लाइफ भी रॉयल बना सकते। तो बस मैं घर गया, उसके बाद एक ही धुन लगी कि अब मैं माउंट आबू जाएंगा, वापस नहीं आऊंगा।
0: अच्छा।
2: चाहे परिवार वाले थे, चाहे दोस्त थे, चाहे जो भी सब, तो जाना है
0: जी।
2: तो बस एक धुन लगी, उसके बाद 6 महीने के बाद
0: आपको आसानी से छुट्टी मिल गई।
2: जैसे मम्मी पापा भी ज्ञान में थे, भाई लोग भी ज्ञान में थे, लेकिन उनको थोड़ा सा एक उलझन थी कि अभी ये तो छोटा है।
0: हाँ, जोश में बोल रहा
2: है कि अभी तो ये अलर्ट है। अब लाइफ कितनी क्रिटिकल होती है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी बातें होती है, और ये आध्यात्मिकता के राह पर चल पाएगा भी या नहीं।
0: हाँ।
2: वो भी उनके मन में थोड़ा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं,
0: कठिन रास्ता है
2: तो
0: इनको ये पता नहीं, बहुत छोटे है ये,
2: छोटे है। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उस समय पैसे नहीं देंगे तो जाएंगे कैसे।
0: हाँ।
2: लेकिन हमारे अंदर इतनी अच्छी लगन, मतलब पावरफुल थी कि कैसे भी करके जाना है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, तो जो छुट्टियां थी उसमें हमने अपने खेत में खोद के उसमें सब्जियां उगाई कि सब्जियां बेच के कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करके माउंट आबू जाएंगे। दूसरा कि हमारे महाराष्ट्र में गन्ना होता है, तो जब गन्ना छोटा रहता है तो उसको मट्टी लगाने का काम होता है मैनुअली, वो बहुत हार्ड काम होता है। तो वो भी हम लोगों ने, 4-5 लोगों ने एक टीम बनाई, वो करने लगे, जैसे खाद है। मतलब एक एम था कि कैसे भी करके जाना है। तो मम्मी ने देखा कि भाई ये इसका स्वभाव ऐसा कि एक बार दिमाग में जो बात आ गई, जब तक ये करता नहीं है ये शांत नहीं रहता। तो फिर दोबारा मैसेज आया माउंट आबू से कि भाई कोई सेवा में आना चाहता है तो बताइए। तो मम्मी को लगा चलो अभी इसको मैं 1-2 महीना भेज देती हूँ तो थोड़ा शांत हो जाएगा। तो बोले ये सब्जियाँ वगैरह हम देख लेंगे, आप जाओ। मैंने वही बात दोबारा कही कि मैं जाऊँगा तो वापिस नहीं आऊँगा। तो तब से आए, तो तब से मधुबन।
0: ब्यूटीफुल स्टोरी भाई जी। तो जब आप आए, जैसे आपने कहा कि अपने जीवन को बहुत ही रॉयल और खुशहाल वाला जीवन आपको बनाना था, तो 17 साल की उम्र में आप जब आए, एक बाल मन है उस समय का, भगवान के प्रति प्यार, आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षण, वो अच्छा लगना और उसको लाइफ में प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना, घर परिवार छोड़ दिया और छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना, समझना, और दुनिया को हम देखते हैं कि लोग, आपके फ्रेंड्स भी बहुत सारे आगे बढ़ चुके होंगे, नौकरियां भी कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे लाइफ सेट हुआ हुआ। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभी आप जिस जगह पे हैं, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आप क्या अनुभव करते हैं कि आपके जीवन की क्या उपलब्धि या प्राप्तियां रही, आप क्या क्या चीज़ें अपने अंदर आपने बदलाव देखते हैं?
2: तो सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि मेरा एक स्वभाव है कि जिस चीज़ में घुसो उसके बाद आजू बाजू नहीं देखना है। क्योंकि एक बार कदम आगे रखा, क्योंकि हमारे माताजी ने एक कहा था कि एक बार कदम आगे रखा फिर पीछे नहीं आना है। क्योंकि मैं समर्पित हुआ, उसके बाद हमारे चाचा की लड़की थी, चचेरी बहन, वो भी समर्पित हुई मेरे को देख के, फिर मेरे मासी की लड़की थी, वो भी समर्पित हुई। तो माताजी ने हम सबको कहा कि आप लोगों को जाना है तो भले जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना कि एक बार कदम आगे बढ़ाया तो दोबारा पीछे कदम नहीं आना चाहिए, पूरा सोच के फिर जाना। और फिर हमने देखा कि एक बात हमेशा मुझे, जब मैं समर्पित हुआ तो हमेशा एक बात अच्छी लगती थी कि भगवान हमको सन्यासी बनाने नहीं आया, जो परमात्मा ने हमको जो लक्ष्य दिया है कि आपको मनुष्य से देवता बनना है, और उसके लिए हमें लक्ष्य दिया था कि भाई आपको लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। तो हमेशा लक्ष्मी नारायण एक एम ऑब्जेक्ट सामने रहता था कि उनकी जीवन देखो कि भले घर घर गृहस्थ में है, सारा राज कारोबार देख रहे हैं, और सब कुछ देख करते हुए भी उनकी जो मनस्थिति है वो दिव्य है। हम अगर देवताओं को देखते हैं, लक्ष्मी नारायण, एक उनके अंदर दिव्यता है, और हम देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण की आप अगर जीवन स्वर का देखेंगे कि वो अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, भोजन पानी पिकनिक भी करते हैं, तो ये एक कंप्लीट लाइफ थी। तो मैंने ये लक्ष्य रखा समर्पित लाइफ में कि मुझे भी अपनी लाइफ ऐसी जीनी, क्योंकि वैसे बनना है तो उसके संस्कार वो लक्षण अभी आने चाहिए हमारे अंदर। तो मैंने यहाँ आने के बाद ऐसे अपने बैलेंसिंग वाली लाइफ रखी कि जैसे यहाँ समर्पित लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि आपका मेडिटेशन, आपकी आध्यात्मिक स्टडी, तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो उसको तो हमने फुल रखा। उसके बाद होता है कि आप यहाँ समर्पित हुए हैं कि विश्व की सेवा करने के लिए, जैसे हमको किचन की जिम्मेदारी है या सोशल एक्टिविटी हम करते हैं तो वो सेवा करना है। तो आपका जो आध्यात्मिक स्टडी है, मेडिटेशन है, प्लस सेवा है, तो उसको तो हमने हमेशा आगे रखा। लेकिन उसके साथ साथ अपना जो रहन सहन है वो भी एकदम रॉयल, मनोरंजन जो है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब करो आप, केवल उसमें हाँ व्यर्थ और नेगेटिव चीजें नहीं चाहिए। तो चाहे आप मनोरंजन करो, चाहे आप घूमने फिरने जाओ, चाहे आप पिकनिक करो, खाओ पियो, किसी चीज के लिए मना नहीं, लेकिन उसमें सात्विकता होनी चाहिए, उसमें स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के गुण है ना, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति, तो आत्मा उसके बिना रह ही नहीं सकती। तो मैंने ये सब चीजें रखी कि हम यहाँ आए तो खूब क्रिकेट भी हम लोगों ने खेला, वॉलीबॉल भी खेला और मनोरंजन भी खूब किया। यहाँ से हमको दादियों ने और जगह विजिट के लिए, घूमने फिरने के लिए भी वो, तो आज हम अपने लाइफ को देखते हैं। और मैं कभी कभी ये चीज करता हूँ कि एकांत में जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में, तो कभी मैं अपने आप से बातें करता हूँ कि मैंने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित किया, 32 साल में यहाँ रहा हूँ, तो अब मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया। तो एक बैलेंसिंग वाली लाइफ जीने के कारण अपने आप से मैं इतना संतुष्ट हूँ कि ऐसी कोई भी चीज नहीं लगती है कि ये छूट गई लाइफ से, एकदम तृप्त। और हमारी ऐसी लाइफ देख के, जब हम ऐसे भी नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज में कि भाई आप एक बार आए तो कहीं जाना नहीं है, तो हम लौकिक परिवार भी सब ज्ञान में हैं, लेकिन वहाँ भी कोई कार्यक्रम है या कोई बात है या साल में उनको मिलने के लिए एक बार जाते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं तो जो हमारे सारे संबंधी है, परिवार के लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, वो हमारा जीवन देख के प्रेरणा लेते कि पहले आपकी लाइफ क्या थी, आज आपकी लाइफ कितनी श्रेष्ठ है। और जो हमारे साथ वाले दोस्त थे, गृहस्थी में गए या दुनिया के उलझनों में गए, कुछ व्यसन के आदि गए, तो उनके माँ बाप भी सोचते थे कि अरे ये इनके साथ का था, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, विश्व सेवा कर रहे हैं, इतना इनका लाइफ श्रेष्ठ बन गया है, और हमारे बच्चे देखो व्यसन कर रहे हैं, या ये वही के वही रहे, बस वही खेती कर रहे हैं, एक लिमिट में रहे ना, तो उनके लिए भी हमारा जीवन प्रेरणा स्रोत। तो इसीलिए कभी ये नहीं लगता है कि वो इतने आगे, क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया और आज दुनिया का हर एक व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि पैसा होने से, प्रॉपर्टी होने से, नाम होने से लाइफ नहीं जी जाती। वो एक प्रकार का एक समझो आज के समय में दिखा हुआ है, जब तक आपके जीवन में वैल्यूज नहीं है,
3: संतुष्टता नहीं,
2: तब तक वो संतुष्टता नहीं है। और स्थूल प्राप्ति का वैल्यू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक चीज मैंने बहुत अच्छी रियलाइज किया पुरुषार्थ में अपने स्टडी में, कि आज हम पैसा, साधन या कोई पोस्ट या मान सम्मान जो प्राप्त करते हैं, किस लिए? सुख के लिए, शांति के लिए, खुशी के लिए। क्योंकि आज आज व्यक्ति क्या समझता है, मैं बॉडी हूं तो पैसा होगा तो मैं सुखी रहूंगा, मुझे मान सम्मान मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, अच्छा भोजन मिलेगा तो मैं संतुष्ट रहूंगा, लेकिन कोई रहता है? क्योंकि ये शरीर के गुण नहीं है जी। ये आत्मा के गुण है। आज हम क्या कर रहे हैं कि इन सब चीजों से शरीर के कर्म इंद्रिय द्वारा अल्पकाल का सुख शांति आनंद प्रेम आत्मा को हल्का सा अनुभव कराते, लेकिन वो क्षणिक होता है। लेकिन जब हम अपने आप को जानते हैं, अपने स्वस्वरूप को अनुभव करते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो परमात्मा से जो शांति की शक्ति, आनंद, प्रेम, ये अनुभूति जो हमको होती है ना, तो वो अनुभूति आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है और वो आपको हर समय अनुभव होती है। तो इसीलिए इतना संतुष्टता और इतना भरपूरता रहती है कि कोई भी चीज की कभी कमी नहीं लगती।
3: तो भाई जी, अब वर्तमान समय में क्या कार्य कर रहे हैं संस्था में?
2: जी, तो जब से हम शुरू में आए तो प्रकाश मणि दादी जी ने उस समय हमको जिम्मेदारी दी किचन की, तो रोटी डिपार्टमेंट हम संभालते हैं। तो मेन जो सेवा है हमारी, तो एक तो रोटी डिपार्टमेंट जो अपना है, तो जैसे 25,000-30,000 तक लोग आते हैं, तो रोटी डिपार्टमेंट में जो भी थेपला पूरी रोटी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो वो सब बनाने की सेवा है। तो उसको भी हम लोगों ने बहुत मॉडिफाई करके लेटेस्ट किचन जो अपना बना है कि जो हम 30,000 लोग आए तो भी 3 घंटे में वो भोजन बना सकते हैं। तो उस हिसाब से किचन की जो परचेजिंग होती है, मशीनें चाहिए, कुछ नया अपडेट करना है, तो वो सेवा भी हम देखते हैं। शुरू से लेकर वही करते आ रहे, और साथ साथ हमारी जो इच्छाएं थी कि समाज से जुड़े, लोगों से कनेक्ट हो, तो ब्रह्मा कुमारी द्वारा हम यहाँ सोशल इवेंट भी करते हैं। जैसे शिवरात्रि आती तो शिवरात्रि का मेला है, नवरात्रि का मेला है, और विशेष करके जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम है, स्वच्छता अभियान है, तो हम लोगों ने पूरा सिरोही डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे सब जगह ये काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। और विशेष 2014 से हमारी दादी प्रकाश मणि जी थे, तो मेरी बहुत एक इच्छा रहती थी कि बाहर कोई बड़ा व्यक्ति होकर जाता है तो उनके स्मृति में कुछ ना कुछ इवेंट हमेशा करते उनके याद में। तो मुझे एक संकल्प आया था कि हमारी प्रकाश मणि दादी ने पूरे 5 खंडों में परमात्मा का परिचय दिया है, तो उनके नाम से कुछ स्मृति में इवेंट होना चाहिए। तो तब से लेकर हम फिर दादी प्रकाश मणि माउंट आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन करते हैं, और वो अपने आप में एक यूनिक है
3: जी।
2: तो जो पूरे देश विदेश के रनर आते हैं, और एक बहुत अच्छा इवेंट वो माउंट आबू में होता है, तो वो सेवाएं भी साथ साथ चलती है। और पूरे भारतवर्ष में जो मेडिटेशन रिट्रीट होते हैं, तो वो भी बीच बीच में जैसे समय होता है, तो वो एक सेवा वो भी आध्यात्मिक चलती है।
3: बहुत सुंदर जर्नी रही भाई जी, थैंक यू सो मच। अब अपनी बहुमूल्य समय को और अपनी जीवन को एक प्रेरणा के साथ हमारी श्रोताओं के सामने रखा। जीना कैसा होता है और कैसे हम अपने जीवन के निर्णय करते हैं कि मुझे कैसा जीना है, आपने बहुत स्पष्ट रीति से हमारी श्रोताओं के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद, थैंक यू, ओम शांति।
3: तो ये था दोस्तों आज का कार्यक्रम, जीना इसी का नाम है। अभी तक आप सुन रहे थे भानु प्रकाश जी को। आप 32 वर्षों से ब्रह्म कुमारी मुख्यालय शांतिवन परिसर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक योगी जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही अनुभवों को हम फिर अगली कड़ी में आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मारो गांव मारो अंचल यानी मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है। हमारा आई लोग बाप सब हिस्सा लेते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे प्रशासन गांव के संघ सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज जो नरोगा में आए खासकर मुंगथला ग्राम पंचायत में जो हमारा सहायिका है चाहे एलडीसी मैम है सभी जो स्टाफ सहयोग दिए उनका तत्वावधान में एक कार्यक्रम आज नरोगा जो मुंगथला में पहुंचे। यहाँ के सभी आई लोग माताएं को वंदना करते हैं स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। तो एक लोकगीत सुनाएंगे सामूहिक रूप में, भजन हो गीत हो क्योंकि आपको मनोरंजन भी चाहिए। मनोरंजन के बिना खुशी का बिना हमारा शरीर स्वास्थ्य नहीं होगा। और प्रभु याद में हम जब रहते हैं हमारा आस्था विश्वास भक्ति भाव

0: इसे सब कुछ चेतना जागृत कराने के लिए जनचेतना का नाम जैसे काम भी उस तरह कराते, तो आज यहाँ पर आए तो एक माताओं का एक गीत हो जाए भजन संध्या, वो भी मूंगफला का आवाज। चलिए देर किस बात की, समूह आवाज सुनेंगे, माताओं को स्वागत करते हैं। शुरू हो जाए, आपका नाम बताइए। तुलसी भाई, तुलसी भाई के लिए स्वागत।
1: अच्छा
0: मैट है का,
1: ये मैट के लिए ताली।
2: आगे आगे।

बहुत बहुत धन्यवाद भजन मंडली को और माताओं का झुंड है। भाई लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, सब पीछे है, लेकिन माताएं भी कम नहीं है, इसलिए कहते वंदे मातरम। बोलो वंदे मातरम। माओ का भजन सुन के हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी पूरा झूम उठे, क्योंकि आस्था विश्वास भक्ति को लेकर हम जीवन जीते हैं, उनका बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। कोई भी दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं। ये मनुष्य को तो ध्यान करते हैं थोड़ा समय के लिए, पति को थोड़ा समय के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन तुरंत भगवान को याद आता है। तो इस कार्यक्रम को जब लेकर मुंगथला ग्राम पंचायत में पहुंचे, यहाँ के जो मेट का साथ साथ सभी जो हमारा रोजगार करने के लिए श्रम कर रहे हैं, जिसका चलते हमारा गांव आदर्श बनेगा और आदर्श तालाब भी बन जाएगा, है कि नहीं। बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आप जब आए तो ये लोग अच्छा प्रस्तुति है। तो पीछे से कोई बोल रहा है और एक गीत भजन हो जाएगा, तो देर किस बात की, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। अच्छा पुनः

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, और एक प्रस्तुत ये गरा से भाषा का गीत होना चाहिए। तो गरा से भाषा का एक गीत भजन होगा, क्योंकि हमारा जो आई लोग गरा से गीत गाओ। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वो लोग सोच रहे हैं हमारा आई लोग वो गरा से गीत गाएंगे बाद में। अभी फिर एक संगीत होगा भजन, उनको पुनः स्वागत करते हैं।

0: हरी हे माँ।
1: सही में कितने सुंदर प्रस्तुति और इतने झुंड में गा रहे, तो हमें पूरा, हमें क्या है, पूरा आमथला तक पूरा पहुंच रहा है। मूंगथला, आमथला, मोरथला, मोरथला, मूंगथला, आमथला, जितना थला सभी थला तक हमारा आवाज पहुंच रहा है। क्योंकि माताएं काम नहीं है और वो काम धाम तो करते रहते हैं नरोगा में, पैसा सरकार देता है, इसका साथ साथ मनोरंजन करने के लिए आज रेडियो कार्यक्रम को सजा रहे, ये कम बात नहीं। क्योंकि मेरा गांव, मेरा अंचल कार्यक्रम जो है, आईलो का कार्यक्रम है, सामुदायिक का कार्यक्रम है, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जहां भी जाते हैं एक इशारा से सब रेडी हो जाते हैं। क्योंकि रेडियो अपना रेडियो है, अपना रेडियो में अपना आवाज आ रहा है, तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक ब्रेक लेते हैं और एक प्रस्तुति होगा गरासिया भाषा में। आज तो पूरा संगम है गरासिया और मारवाड़ी, सुनेंगे एक आदिवासी गीत, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: ओए रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सबैको बहुत बहुत धन्यवाद। यथा गारासिया भाषा जो आदिवासी गीत है, सामूहिक रूप में नरगा में अपना अपना आवाज सुनाए। माताओं को आई लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक अंतिम प्रस्तुति की और हम लोग चलेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है, क्योंकि आसपास का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे अपना लोकगीत, जो भावनाएं लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे मूंगफला का आवाज़, वो भी गरसिया भाषा और मारवाड़ी भाषा में। अभी चलते हैं बीच में ही धामसरा स्थित भैरुजीर मंदिर के पुजारी से और माताओं से एक आदिवासी लोक गीत भजन सुनेंगे, वो भी गरसिया भाषा में। तो राम राम करते हुए उनको स्वागत करते हैं सामूहिक रूप में प्रस्तुति देने के लिए। तो राम राम शुरू हो जाइए।

बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर प्रस्तुति दिए। बीच में ही धमसरा स्थित भैरुजी मंदिर के पुजारी और आसपास जो माताएं भजन में ओतप्रेत रहते हैं, भक्ति भावना को लेकर जुड़े रहते हैं, तो उनका आवाज सुने। चले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, खासकर मूंगफला का आवाज को फिर से उजागर करने के लिए।

0: मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम ओम शांति।
1: चले कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हो और एक कार्यक्रम वो भी आदिवासी गीत क्योंकि मारवाड़ी दो गीत हुआ भजन और अभी आदिवासी बोला हम लोग क्यों भाई एक गीत क्यों गाएंगे और एक गीत गाएंगे तो चले नहीं एक गीत मन नहीं भरता है और एक होना चाहिए। तो चले सभी को राम राम करते हैं स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए क्योंकि भाकर क्षेत्र में जब जाते हैं चाहे निचला गढ़ हो चाहे उपला गढ़ हो चाहे निचला खेजड़ा हो उपला खेजड़ा हो चाहे कोई भी जहां भी रहते आदिवासी हमारा भाई बंधु क्योंकि शुरू से ये लोग पहले आदिवासी थे लेकिन हम तो बाद में आए। चलिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे वो भी सामूहिक रूप में। क्या नाम तुम्हारा?
2: नाम
3: मारा मीरा
2: मीरा
3: गलवी भाई
2: बैसुबेन
1: और थेमर हूँ नाम
4: गुली भाई
1: और आई
3: रेशमी।
1: सभी को राम राम करते हैं बहुत अच्छा सुंदर नाम बताए
5: मुंगतला
1: मुंगतला के सभी अच्छा चलो सभी मुंगतला।

Amen.

0: बहुत बहुत धन्यवाद माताओं को, आयोग को, क्योंकि इतने सुंदर रूप में प्रस्तुति की आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए इतने जो मेहनत की है क्योंकि मारवाड़ी का साथ साथ ये जो आदिवासी और हम सब आदिवासी आज बन गए हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे हैं इस रेडियो कार्यक्रम में, जहाँ भी सुनते हैं जैसे भी सुनते हैं सभी ऐसे सीख जाते हैं गीत, कोई सिखाना नहीं पड़ता, आदिवासी गीत ऐसे सुनते सुनते संगठन में सीख जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आज जब मुंगथला ग्राम पंचायत में जो नरोगा काम चल रहा है उसमें माताएं आई लोग बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और हम सबको मनोरंजन कराने के लिए भक्ति भावना आस्था को लेकर समूह रूप में गीत गाए।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है क्योंकि जब गांव और अंचल में जाते हैं तो हमारा गांव और आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देता है, जिस मंच के माध्यम से हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं और प्रशासन का जो योजना है, चाहे नरोगा हो, चाहे पालनहार योजना हो, चाहे आवास जो योजना है, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा पब्लिक तक पहुंचाते हैं और गवर्नमेंट का जो नीति नियम दिशा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर जब हम मुंगथला ग्राम पंचायत में पहुंचे, यहाँ के जो नरेगा की माताएं अपना श्रम देकर रोजगार करते हैं, सरकार का जो मंच है आत्मनिर्भर बने, आदर्श बने गाँव, इस संदर्भ में हमारे साथ इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए जो उसका जो मैट है तो उनको भी स्वागत करते हैं, जो टीम लीडर है। तो राम राम, आपका शुभ नाम बताइए।
2: लीला देवी।
1: लीला देवी, आप ये जो महिलाओं को इतना सुंदर रूप में संगठित रूप में काम देते हैं और उनको तदारक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं, तो आपको इसमें संतुष्टि खुशी लगता है?
2: खुशी लगती है
1: क्या खुशी लगता है, कैसे खुशी लगता है?
2: खुशी तो लगते हैं, सब रोजगार मिलता है इनको तो खुशी तो मिलती है।
1: सही बात, रोजगार भी चाहिए, बिना रोजगार से हमारा परिवार कैसे चलेगा, पैसे तो चाहिए ना। सरकार का जो मंशा है हमारा माताएं बाहर न जाए, अपना गाँव में कुछ काम करें और परिवार को भी संभालते हैं, घर में जो खाना पीना बच्चों को पालन का साथ साथ जो समय निकलता है तो सरकार जो पैसा दे रहा है काम कराने कर देता है, ऐसे मुफ्त में नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा, सबको खुशी मिलता है रोजगार मिलने से। तो कितने लोग आते हैं और एक लेबर को कितना दिन मिलता है?
2: 180 रुपए की रेट
1: रेट में सरकार का जो निर्धारित पैसा, क्या उनका बैंक खाता में जाता है ना उनको कैश देते हैं?
2: बैंक खाते में जाते हैं।
1: इसका मतलब सभी आई लोग का बैंक खाता है?
2: बैंक खाता है सबका।
1: अरे वाह, ताली बजा भाई, ताली बजा, पैसा कहीं इधर उधर नहीं होगा, लीक नहीं होगा। हाँ। सीधा डायरेक्ट पूरा हाथ में आएगा,
3: खाता में,
1: खाता मतलब हाथ अपना पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस तरह प्रोग्राम में जो सभी माताएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, सभी मैट भी सहयोग दिए और हमारा एलडीसी मैम भी सहयोग दिए, सरपंच भी हमको सहयोग दिए, तो वो सभी को नाम का सा धन्यवाद देते। और ये प्रोग्राम कैसे लगा?
2: अच्छा लगा,
1: होना चाहिए,
2: होना चाहिए,
1: मनोरंजन भी कभी कभी
2: होना चाहिए।
1: तो आज रेडियो कार्यक्रम में लोग सजा, ये मैडम का ये उनका सुभावना है, बार बार होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और हम कभी मौका मिलेगा तो हम आ जाएंगे। हमारा काम तो ऐसे क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का भागीदारी देखने को मिल रहा है, सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, आज माताएं का आवाज मीन्स मुंगथला का आवाज सुनने को मिला। इस तरह कार्यक्रम जो सुनते हमारा गांव और अंचल में किस तरह मनोरंजन का साथ साथ काम करते वो चीज देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी गाँव का, किसी स्कूल का, कोई आंगनबाड़ी का कार्यक्रम को लेकर पहुंचेंगे, लेकिन आज के लिए हमें और हमारा जो आवाज मुंगथला का आवाज को आज यहीं पर रखते हैं। सबको राम राम, ओम शांति, ताली बजा सभी। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देख कर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते। चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पर वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे। ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं, क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है, आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स

0: into pain. So actually, it's no more about the past, but now it is my present. तो ये past भी एक concept है, एक belief system है. लेकिन past तो actually कुछ है ही नहीं ना. Past मतलब जो बीत गया. लेकिन अब जब हम past की बात कर रहे हैं, तो we are not really nothing to do with the past. It's actually become my
1: present.
0: ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं. वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ हम ढूंढते, वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है. सो आई लुक फॉर हैप्पीनेस ईदर इन द पास्ट और आई एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर. आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफकोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं. तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए. हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे. तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं. लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें, सो यू विल सी ईदर वी आर हेयर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुराने वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं
1: आगे
0: आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में. क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा. इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में. जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया. उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहाँ से हिलकर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट. इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ. इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना. सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 10:01 past 10. एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM
1: कि वहाँ तब क्या हुआ था.
0: यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, 10:01, 10:02, 10:03 एक्चुअली हो क्या रहा है, हर पल हम सोच तो रहे हैं लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है. एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. सो बेसिकली एट एवरी मोमेंट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट विच इज नॉट इन माई कंट्रोल. जो हम बहुत बार ये फीलिंग जनरेट,
1: तो वो जो प्लान भी बनाते हैं हम कि दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर.
0: और क्या है ही संभावना. डू यू थिंक इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान. लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिए. अगर आप इस पल में हैं, एक्चुअली देयर इज स्टेबिलिटी. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीजों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो मन जब भी कोई
1: ऐसी, लेकिन अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी
0: डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन टू द नेक्स्ट मोमेंट.
1: यस,
0: वी ऑलरेडी एंटिसिपेट द मोर लॉसेज. इस मोमेंट में ताकत है हमारे अंदर सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ खत्म होती, जब हम अगले पल के बारे में फियर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम मेडिटेशन करते हैं, वाई डज इट बेनिफिट, मेडिटेशन हमें हेल्प करता है अपने माइंड की स्पीड को, थॉट्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल
1: किया
0: है. इफ़ एनी वन ट्राइज टू डू समथिंग विच इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा. तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम

0: ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन की स्थिति कैसे होगी? इट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. लेकिन दिस रिक्वायर्स डीप अवेयरनेस कि हम कैसे उस पल में रहें, एंड उस पल में हम हैं या नहीं हैं उसका साइन है स्टेबिलिटी. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स. जैसे ही मन डिस्टर्ब हो,
1: लुक एट,
0: चेक हो जाए किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी पास्ट की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात, और फिर मन को प्यार से अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना, पास्ट को याद
1: से हम
0: सीखते हैं
1: हिस्ट्री
0: रिपीट्स इटसेल्फ, तो पास्ट को हमें याद रखना है. अगर पास्ट को याद रखेंगे तो उससे शिक्षा मिलती है, पास्ट को याद रखेंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे. पास्ट में धोखा खाया था, भूलना मत उसको, याद रखना ताकि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे. दीज आर आवर बिलीफ सिस्टम्स रिलेटेड टू द पास्ट. अब इन बिलीफ सिस्टम्स को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, पहली बात, जब हम पास्ट को याद कर रहे हैं, याद मतलब रिवाइज कर रहे हैं फिर से, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. लेट्स टेक द पास्ट व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट, देन वील टेक द पास्ट व्हिच इज प्लेजेंट आल्सो. अनप्लेजेंट पास्ट, एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी ने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, या एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने मुझे रिश्तों में धोखा दिया. पास्ट कुड बी समवन लेफ्ट from the family, so it could be small से लेके बहुत बड़ी बात तक. अब जब हम वो past को revise करते हैं मन से, या even अपनी conversation में, क्योंकि हमारी conversations में भी बहुत बार बात जो होती वो पीछे हुई हुई बातों के बारे में होती.
1: Actually,
0: है
1: वो हमेशा ही हमारा present बनता जा रहा है.
0: अब क्या हो रहा है, जैसे ही I am talking to you, let's say for example मैं आपसे बात कर रही हूँ about something which has happened with me, फिर आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, उनको लगता, आपको लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन देखो उन. आई एम रिवाइजिंग दैट होल सीन ऑफ द पास्ट टू यू, एंड बोलते बोलते अंदर भी सोच रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ, और बोलते बोलते जो मेरे अंदर वो एंगर, वो हर्ट, वो जो डिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस क्रिएट होते, दिस इज अ साइन कि मैं अभी भी उनके वो बिहेवियर को, उनके वो वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ. उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, दिस कम्स आउट इन माई कॉन्वर्सेशन. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल टू थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल. वन पर्सन, मैं कितना भी बोलूँ कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल. सेकेंड, वो सीन तो बहुत पहले पास हो चुका है, अब उसके बारे में सोचना या बोलना कि वो नहीं करना चाहिए था, हाउ फ्यूटाइल इज दैट और हाउ यूजफुल इज.
1: लेकिन सो मेनी टाइम्स वी से कि निकलने तो दो कम से कम, यू नो, इतना जो भरा हुआ है, चाहे वो गुस्सा है या एंगर है, मतलब ठीक है, अब आगे तो मुझे अपने ऊपर चेक करना है. आगे के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ना लोगों को चेंज कर सकती हूँ ना सिचुएशंस को, लेकिन पीछे के लिए जो
0: लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, जैसे हमने कहा, स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, आप अभी एक्सपीरियंस करो, आप बिल्कुल स्टेबल हो, मन बिल्कुल शांत है. अब लो एक पास्ट के इंसिडेंट को, कोई भी, और उसको डिस्कस करना शुरू करो, तो क्या होगा?
1: वेरी ट्रू, यू नो, लाइक अगर वो बड़ा डिटैच्ड वाला हो तब भी
0: you know, कहीं बहुत वो ऐसे ऐसे. अब हमें ये याद नहीं रहता है और हम अपनी ही खुशी को, अपनी ही स्टेबिलिटी को हम खुद खत्म करते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी से व्हाई आर वी सो डिप्लीटेड. अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये चेक करें कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस करना, वर्णन करना, आई एम ओनली डिप्लीटिंग माई एनर्जी, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट बींग केयरफुल. आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शायद हमें अवेयरनेस नहीं है कि इससे मेरा कितना नुकसान होता है, हम उसको बहुत कैजुअली करते जाते. एक पास्ट इंसिडेंट हो गया, किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, अब मैं दिन में 4 लोगों को फोन करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ, वो शेयर करती हूँ, वॉट एम आई डूइंग, द सीन इज लॉन्ग पास्ट ओवर. लेकिन जितनी बार आई डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, उनको मेरे अनुसार करना चाहिए था, फ्यूटाइल. अब कई बार हम कहते हैं लेकिन इससे मुझे सीखने को मिलता है, इफ आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ तो मुझे सीखने को मिलता. तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे, दैट ऑल्सो भी नीड. सीखने को जरूर मिलता बट प्रोवाइडेड हमने उसको राइट पर्सपेक्टिव में लिया है. अगर मेरे साथ कोई सिचुएशन हुई जिससे उस मोमेंट, चाहे वो कल था या 10 साल पहले था, आई एक्सपीरियंस्ड पेन, आई एक्सपीरियंस्ड हर्ट, बहुत कुछ हुआ, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लो, अब उससे मुझे क्या सीखने को मिला. अगर आज भी मैं कहते कि मैंने उस बात को याद रखा है, उन लोगों को याद रखा है, उन लोगों ने जो एक एक चीज़ कही वो मैंने याद रखी है, इससे मुझे सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो मुझे उनसे ध्यान से रहना. तो ये कोई मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये मैंने किसके बारे में एक्चुअली सीखने की कोशिश की, आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट देम, दैट्स नॉट लर्निंग, एंड आई एम ओनली क्रिएटिंग. जो पास्ट में हर्ट हुआ आई एम एक्चुअली यूजिंग इट टू स्पॉयल माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर.
1: कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो कभी भी आके मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, यू नो, सो मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ जब मैं होती हूँ, सी अगेन देयर मे बी देयर पर्सनैलिटी और वट एवर, और माई पर्सनैलिटी बिकम्स वीकर, वट एवर.
0: सो नो नो, इट्स नॉट वट एवर, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ये प्रोसेस ले रहे हैं वो मुझे मैन्युपुलेट कर पाते हैं, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, इससे मैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर रही हूँ, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम.
1: मुझे क्यों कर पाते हैं ये देखना,
0: दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है, मौसम बदल रहा है तो मौसम के बारे में चिंतन करना नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन क्या करनी. दैट्स वाई वी से राजयोगा मीन्स ब्रिंग द फोकस टू योर सेल्फ. वो ऐसे हैं वो, एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. अगर मैं औरों के बारे में, औरों के व्यवहार के बारे में सोचती रहूं तो मैं बच जाऊंगी उससे, नॉट एट ऑल. आई थिंक यू नो, इफ आई यू नो वट आई थिंक, इफ आई अंडरस्टैंड देम वेल देन आई विल बी सेफ. नो वे, अनलेस आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ एंड आई टीच माई सेल्फ एंड आई लर्न फॉर माई सेल्फ कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है. एक ही है जो मेरे कंट्रोल में है, तो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, और सुरक्षा भी क्या कि मैं हर्ट नहीं हूँ. वो ठीक से अगली बार बात करें ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगली बार मैं हर्ट नहीं हूँ ये मेरे कंट्रोल में. अब आज मेरे लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए, एक लर्निंग हो सकती है कि ये तो ठीक से बात ही नहीं करती है, इनसे तो दूर ही, इनसे मैंने ना बहुत संभल के चलना है, दिस इज़ आवर वोकैबुलरी. तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगेन कि इनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, ये कहीं भी ऐसा कुछ कह देते हैं बिकॉज ऑफ विच आई गेट हर्ट. नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स द पर्सपेक्टिव शुड बी कि कल मैं हर्ट हुई थी, आज मुझे ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मुझे हर्ट. सी ब्रिंग द फोकस टू माई सेल्फ. आने वाली हैं बहुत सारी बातें आने वाली हैं, आप अगर कंट्रोल उनको करने की कोशिश करोगे यू विल जस्ट कोलैप्स. अच्छा कल आपने ठीक से नहीं बात की, आज आपने ठीक से बात कर ली, लेकिन आज कोई और ठीक से नहीं बात कर, कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे कि ये राइट तरीका है बात करने का. आई एक्सपेक्ट यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, आई हाउ मेनी पीपल कैन आई कंट्रोल द वर्ल्ड. सिचुएशन आई थी, मुझ पर डैमेज हुआ, मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उस डैमेज को, उस हर्ट को हील नहीं किया, सो आई हैवंट लर्नड एनीथिंग. वो मुझे बिटर दर्द में ही छोड़ गई. अब हम कहते कि ये मुझे याद रखना है, लाइक यू सेड हिस्ट्री रिपीट्स. अब हिस्ट्री रिपीट्स क्या होता, जितनी बार हम उस बात को याद करते, वो हुई पहले, लेकिन अब मैं जितनी बार, आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम बीती हुई बातों के बारे में सोच के अभी भी रो सकते हैं. यू नो दैट वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट, व्हाट हैपेंड, बात तो है ही नहीं, वो लोग भी नहीं है, वो सीन भी नहीं है, हाउ कम आई एम एबल टू क्राई राइट नाउ हियर, बिकॉज वो बात यहाँ क्रिएट होती, बाहर नहीं होती. तो पास्ट को हम जितनी बार क्रिएट करते हैं, हम पास्ट को अपना प्रेजेंट बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट फिर मेरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता. तो जो हम कहते कि पास्ट को अगर याद रखेंगे तो फिर वो फिर से नहीं होगा, यू नो व्हाट वी नॉर्मली से, याद रखोगे तो फिर से वो बात नहीं होगी. एक्चुअली जितना याद रखोगे
1: उतना बार बार
0: वो बार बार होता जाएगा. यू सी आई एवरी टाइम आई मीट यू आई एम सेइंग ये मुझे इंसल्ट करती है, ये मुझे इंसल्ट. तो एवरी टाइम व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप?
1: यस.
0: एंड एवरी टाइम आई गेट हर्ट वेरी वेरी इजिली. अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि पास्ट रिपीट ना हो, तो एक्चुअली उसको याद नहीं रखना होगा, लेकिन पास्ट रिपीट ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: We'll have to repeat,
0: you will have
1: delete.
0: To forget it totally. Forgetting the past is the only guarantee कि पास्ट रिपीट ना होगा. क्योंकि जितनी बार वो यहाँ रिपीट, यहाँ हो नहीं हो वी डोंट नो, लेकिन जितनी बार भी वो यहाँ रिपीट होता, वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका. जैसे आपने शुरू में ही कहा, पास्ट की कोई बात याद आई और मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ, तो रिपीट हो गया ना, द पास्ट हैज रिपीटेड इटसेल्फ. अगर सपोज मैं हर्ट हुई थी तभी या डिजेक्टेड फील किया, अब मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ, आई अगेन एक्सपीरियंस हर्ट, अगेन एक्सपीरियंस इंसल्ट, तो मेरा यहाँ का संस्कार, मेरा यहाँ का थॉट पैटर्न वो और भी ज़्यादा कड़क, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया. तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती, लेकिन थॉट पैटर्न रिपीट होता जाता. एंड देन एज विल बी माई थॉट्स, सो विल बी माई डेस्टिनी. तो जो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करूँगी, फिर मैं उन लोगों के सामने मिलूँगी, फिर उनको वो एनर्जी मैं भेजूँगी, वो एनर्जी मेरे थ्रू जाएगी, कोई एनर्जी मुझे वापस आएगी. एंड देन आई से देखा, उन्होंने फिर से वो किया, उन्होंने वो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वो पास्ट को लिया, फिर से क्रिएट किया, वो एनर्जी भेजे.
1: एक्चुअली मैं वेट कर रही होती हूँ कि ये कब होगा और कब.
0: आई रीअफर्म माय बिलीफ सिस्टर.
1: और सीन के सीन पूरे वैसे के वैसे ही होते. हमारे कई बार मतलब रिलेशनशिप्स में जो फाइट्स होती हैं, ब्रदर सिस्टर्स की भी जो फाइट है, उसमें वही शब्द, सेम सिनेरियो भी वही आता है, शब्द भी वही आते हैं,
0: क्योंकि वो बहुत बार यहाँ चलता है
1: और हमें पता होता है कि इसके बाद आगे भी क्या होगा,
0: क्योंकि इतनी बार वो टेप को इतनी बार रिवाइंड कर लिया होता है कि जैसे इट्स लाइक अ मूवी. अगर आपके पास कोई मूवी की डीवीडी है और आपने वो मूवी 8-10 बार देख ली है, अब 11वीं बार चलाओ उस मूवी को,
1: कई बार तो रुक जाती है मशीन.
0: नहीं,
1: हम तो
0: नो इट ना, आपको हर सीन और हर डायलॉग पहले ही पता है. सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीन हुआ, हम उसको बार बार, हम उस सीन, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस सीन को बार बार इधर क्रिएट करते, और फिर हम यहाँ भी नहीं क्रिएट करते, हम इतने सारे लोगों के साथ उसको डिस्कस करते, तो हमने वो सीन कितनी बार क्रिएट किया. तो वी हैव द पावर कि हम उस हर्ट वाले सीन को भी बार बार क्रिएट करते, जितनी बार क्रिएट करते हम उसको अपना प्रेजेंट बनाते, और जो हमारा प्रेजेंट बनेगा दैट विल देन इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर. तो एक्चुअली अगर हम देखें तो पास्ट जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उसको, इवन लाइक कल आपके साथ मेरा ये हुआ, जितनी बार मैं उसको रिवाइज करती हूँ, इट विल ऑलवेज बी लिटिल लिटिल डिफरेंट. कुछ कुछ कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिविजन कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो वो चेंज होता जाएगा, उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा.
1: तो वो मेरा कलर भी तो उसमें ऐड होता जाएगा, मेरा अपना इमेजिनेशन.
0: मैं जितने लोगों के साथ बात करूंगी उस बारे में, मेरी इंटेंशन, मेरी भावना उसमें ऐड होती जाएगी. तो एक्चुअली हर बार जब हम रिपीट करते उसको, इट्स नॉट दैट आई एम रिपीटिंग द पास्ट, इट्स एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई रिपीट इट्स डिफरेंट फ्रॉम what actually
1: the original, yes,
0: it's different from the original. So if we look at it this way, to for past ka to koi concept hi nahi hai. Jo bita, jab usko dusri baar varnan kiya, wo exact nahi hota hai. To actually this is a new present. I'm not talking about the past.
1: Actually.
0: Let's be in the present.
1: I made it present, you know. So why should we make our present based on the past? You know, we can actually, हमारी क्रिएटिविटी यहीं पे खत्म हो जाती है. लेकिन एक शिवानी बात ये रह गई कि पास्ट को हर्ट खत्म करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, या वो हर्ट वहीं रह के छूट गया.
0: हर्ट खत्म होने के लिए अगर याद करेंगे तो वही बात हुई, जितनी बार याद करेंगे तो वो हर्ट उल्टा और क्रिएट होता. तो हम बहुत बार हमने सुना है कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो हम कहते फॉरगिव किया, फॉरगेट नहीं होता मेरे से. तो जितनी बार फॉरगेट नहीं हो रहा, हम उसको रिक्रिएट करते. तो यस, इट मे साउंड डिफिकल्ट, इट इज़ लिटिल चैलेंजिंग, बट सोल्यूशन इज ओनली दैट कि हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ऐसे ही पास्ट को भूलने की कोशिश करते, वो नहीं भूला जाता. देखो, घंटा पहले हुई बात वो भूल जाती, और 10 साल पहले हुई बात वो भूलती नहीं. कौन सी बात नहीं भूलती? जिसने यहाँ पर दर्द क्रिएट किया. तो जो हमें एफर्ट करना है वो ये नहीं कि मैं कैसे भूलूं, एफर्ट करना है कि वो जो दर्द मैंने क्रिएट किया उसको मैं हील कर दूं. दर्द हील हो जाएगा, वो बात याद नहीं रहेगी. इट्स लेस टू डू विद द सिचुएशन एंड विद द पीपल, इट्स मोर टू डू विद माई पेन. जब तक वो पेन ख़त्म नहीं होगा, और वो पेन तब ख़त्म होगा जब मैं उसको अपने ऊपर लूँगी कि उन्होंने जो किया सो किया, जो बोलना था सो बोला, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना था, मेरा रिस्पॉन्स तो फिर भी मेरे हाथ में. तो अपने आप से उस तरह से बात करके, अपनी सेल्फ इस्टीम को उन पर नहीं डिपेंडेंट करके अपने हाथ में लेकर, जब हम अपने आप को हील कर लेते, देन पास्ट इज़ फॉरगॉटन. लेकिन जब तक वो हील नहीं होगा, एंड आप सोचे आई फॉरगेट द पास्ट, आई लेट गो, आई डिलीट, इट जस्ट कम्स बैक.
1: और एक्चुअली अगर हम देखें भी, हमें वो पास्ट याद भी क्यों आता है, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कोई पेन आती है, हमें एकदम से वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज थोड़ा याद आ रहा
0: होता है. बट देन दैट मीन्स इट इज़ ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड. सी, अगर वो फिनिश हो गया, अगर वो हर्ट हील हो गई, देन इट्स ऑफ द डिस्क, इट्स नो मोर देयर. अब आपने कहा, अब जब भी पेन क्रिएट होता तब मुझे वो क्यों याद आता, क्योंकि वहाँ भी पेन है, यहाँ भी अभी पेन क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ, वो तुरंत याद आया. लेकिन जब वो पेन आपका हील हो जाएगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कोई झगड़ा हुआ फैमिली के अंदर, कोई यू नो बहुत भाई बहनों के बीच या हस्बैंड वाइफ, तो हम कहेंगे ये तो बात मुझे जीवन भर याद रहने वाली है. कई बार हम बहुत स्ट्रांगली कहते मैं जीवन भर आपको फॉरगिव नहीं करूंगा. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला
1: हूँ. मैं आपको भी फॉरगिव नहीं करूंगा,
0: मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ. सो कितनी देर रहना है और कितनी जल्दी भूलना है, ये कैपेसिटी हमारी अपनी है. आपको चाहिए आप 1 साल दर्द में रहें, आप 10 साल रहें, या आप 10 मिनट में उसको फिनिश करें, जितना हम फिर अपने ऊपर वर्क करते वो टाइम गैप कम होता जाएगा. इट्स ऑल अबाउट जितना मैं अपने अंदर वो ताकत भरती जाऊँ, वो टाइम जो मुझे लगेगा अपने आप को हील करने का वो कम होता जाएगा. जितना वो कम होता जाएगा, पास्ट विल बी देन फॉरगॉटन.
1: इनफैक्ट अमेजिंग है, लेकिन इसको अगेन हमें एक्सपेरिमेंट करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इतने बार रिपीट हो चुके होते हैं कि वो लगते हैं कि वो ऐसे डिलीट कैसे होंगे. इनफैक्ट एक और बड़ा मेजर इशू है जिसको शायद हम अगली कड़ी में ज़्यादा ले पाएंगे, कि डेथ ऑफ माई वेरी नियर वन, दैट पेन, उसको तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कौन सा ऐसा थॉट है जो, क्योंकि उसमें किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, यू नो, कि कई बार तो मैं इस पे ये करके ये दूसरे सिचुएशन या किसी के साथ, तो उस पे भी हम बात करना चाहेंगे अपनी अगली कड़ी में. तो अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई मन में बात उठ रही है, कोई इसी से जुड़ी कोई और सजेशन भी है, या कोई और बातें हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करती हैं या उसे स्टेबल नहीं रहने देती, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में आज बहुत बड़ी बात हमने आज चैलेंज की है, उसको समझा है, अब उस पर काम करना बाकी है. और ऐसे में मेडिटेशन जो है वो बहुत मदद करती है. सिस्टर शिवानी, कुछ लम्हा हम चाहेंगे कि उन पर रिफ्लेक्ट कर पाएं कि कैसे वर्क करना है.
0: Let's sit comfortably. बहुत कुछ पकड़ कर रखा था आज तक, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, जो आज दिन तक समझा, लोगों का दिया हुआ दर्द, ये सब कुछ मैंने पकड़ कर रखा था. और बार बार स्मृति में लाते ही मैं आज भी उस दर्द का अनुभव कर सकती. आज इस क्षण अपने आप से प्रतिज्ञा करते कि हम अब अपने आप को और दर्द नहीं देंगे. मेरे अंदर वो शक्ति है, आई एम दैट पावरफुल बींग विच कैन स्टे स्टेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड. दर्द मुझे कोई और नहीं देता, दर्द तुम्हें खुद ही क्रिएट करती. जैसे ही ये स्मृति आती तो फिर फॉरगिव दूसरों को नहीं, लेकिन फॉरगिव अपने आप को, क्योंकि हमने खुद को दर्द दिया. आज अपने आप को ये याद दिलाएं।

0: कि अपने मन की स्थिति हमारे अपने हाथ में है। एंड वो सब जिन बातों को पकड़ के रखा था उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा कि उन्होंने दर्द नहीं दिया। आई कैन लेट देम गो। ट्राई एंड सी ईच वन लीविंग दैट स्पेस ऑफ माई माइंड। लेट देम गो सो दैट आई कैन बी फ्री एंड पावरफुल। ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने ये रियलाइज किया कि खुशी का जो थॉट है, खुशी की जो फीलिंग है, वो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ, मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ। तो इसका मतलब तो दर्द भी मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ। तो लेट गो करना ही पड़ेगा, मुझे खुद ही उसे डिलीट करना है। अगेन ये करना मुझे है, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी शक्ति भी देता है। तो उस शक्ति को हम क्यों जाने दें, हमारे अपने हाथ में है। एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, हमारे साथ शेयर करें। आज इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक जीवन मूल्य के बारे में हम बात करेंगे और आज हमारे पास जो एक्सपर्ट है उनके पास बहुत सारे अनुभव है। लगभग 24 सालों के सफ़र उन्होंने तय किया है और काफ़ी अनुभवी के धनी है। उनका नाम है अश्मिता दीदी और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप सोच रहे होंगे फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम एक घंटा बात कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस मूल्य के बारे में इसको कैसे अपनाया जाए ये आप जानते रहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैनेजमेंट ट्रेनर और राजयोग मेडिटेशन की अनुभवी शिक्षिका भी है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में MSc तथा सेल्फ मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट में MBA की डिग्री प्राप्त की है। बीके अस्मिता दीदी वर्ष 1994 से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं और 2001 से समर्पित जीवन जी रही हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक उद्योगों, सरकारी कार्यालयों, सेना, अर्धसैनिक बलों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट और राजयोग मेडिटेशन जैसे विषयों पर सैकड़ों कार्यशालाएँ आयोजित कर चुकी हैं। वर्तमान में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट विंग की कार्यकारी सदस्य भी हैं और सुरक्षा सेवा विंग की फैकल्टी के रूप में सक्रिय रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, अस्मिता दीदी हमारे बीच में है। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू, ओम शांति।
0: जी तो दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रोफाइल में तो हमने देखा आपने क्या कुछ किया है, तो जब आप जैसे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में गए होंगे तो आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा या फ्लेक्सिबल रखा होगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य क्या है इसके बारे में बताएं।
1: फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम हिंदी में लचीलापन कहते हैं
0: जी,
1: और इसका मतलब होता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को भी बदल पाना
0: जी।
1: क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमें अपने आप को बदलने के लिए डिमांड करती हैं और यदि ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को रिजिड रखते हैं तो फिर हम पीछे रह जाते हैं, और यदि वैसी परिस्थितियों में हम अपने आप को जैसा समय डिमांड कर रहा है हम अपने आप को बदल पाते हैं तो फिर हम उस बहाव के साथ अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो परिवर्तन ये एक नेवर एंडिंग प्रक्रिया है जो निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है। जीवन में बहुत सी बातों को लेकर बदलाव आते रहते हैं, तो ऐसे में हमारे अंदर ये लचीलेपन के गुण का बहुत ही अधिक महत्व होता है
0: जी। तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट दोनों एक है या थोड़ा थोड़ा अलग है?
1: जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है वही एडजस्ट कर पाता है।
0: Okay.
1: तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी में एडजस्टमेंट भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सेप्टेंस भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में लेट गो करना भी मनुष्य को आता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है या एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, सुना होगा गिरगिट, वो आवश्यकता प्रमाण अपने रंग को बदल सकता है। पत्तों के बीच है तो हरा कलर, डालियों के बीच है तो अपना ब्राउन कलर बना लेता है, तो जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। इसी प्रकार परिस्थितियां कई प्रकार से हमें ठोकर मार देने का प्रयास कर सकती हैं, हमारी टेस्ट लेने हमारे सामने आ सकती है
0: जी।
1: लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल हैं, हमें पता है कि ऐसे समय में हमें अपने जीवन में कैसा बदलाव करना है, तो वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में हार नहीं मानता है और वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है
0: जी। बिल्कुल, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाने के लिए सबसे शुरुआती दौर में हमें क्या करना चाहिए?
1: जीवन में फ्लेक्सिबल होने के लिए हमें अपने अंदर अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मान लीजिए मेरे घर में AC है और 24 hours AC ऑन होता है, मैं बहुत वेल टू डू फैमिली से हूँ, लेकिन मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो एकोमोडेशन मिलेगा, मान लीजिए मैं माउंट आबू यहाँ आई हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे यहाँ पे 24 hours AC वाला कमरा मिलेगा। तो मेरे अंदर एक मानसिकता होनी चाहिए कि भाई मुझे जब जैसी स्थिति में रहना पड़े आई एम रेडी। हिंदी में कहावत है, कभी घी घणा कभी जौ चना और कभी वो भी मना। मीन मैं तैयार हूँ
0: जी,
1: मुझे कभी खूब घी खाने को भी मिलेगा, आई एम हैप्पी विद दैट। कभी मुझे जौ चने से मैनेज करना पड़ेगा, आई एम फाइन विद दैट। और अगर मुझे कभी वो भी नहीं मिला कि भी नहीं आज तो फास्टिंग पे रहना पड़ेगा, तो भी मैं खुश हूँ, तो भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो सिर्फ एक इट्स ओनली अ थॉट अवे, एक एक विचार अपने अंदर भरने की जरूरत है कि सब दिन हो त न एक समान।
0: जी,
1: जीवन में सदैव सब कुछ नहीं मिल सकता है और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। परंतु अगर मेरे में ये समझ है कि भाई ठीक है, जैसे भी बातें मेरे लाइफ में आ रही है, मुझे उसके साथ अपने आप को ढाल के खुश रहना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है?
0: खुश रहना।
1: जब मानव जीवन मिला है तो मुझे खुश रहना है, तो जब वो खुशी हमारा प्रायोरिटी बन जाता है तो फिर हम हर चीज में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, हर बात के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, वो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो एक हमारे सामने विजन होना चाहिए, हमारे जीवन में हमें चाहिए क्या, हम खुशी खुशी के साथ अपने प्रति पल को बिताना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: जी बिल्कुल। और दीदी ने जैसे कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम धारण करते हैं तो बहुत सारे और मूल्यों को हम आकर्षित करते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन आप जी रहे हैं और इतने सारे पढ़ाई के बाद आपने इस शिक्षा में और इस पथ पर चलने के लिए आपने निश्चय किया, निर्णय लिया, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ने आपको कैसे मदद किया है?
1: फ्लेक्सिबिलिटी ने बहुत हेल्प किया है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे यदि कोई कार्य करने के लिए दिया जाए तो मैं उसे मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ करती हूँ, लेकिन जब भी हम कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं वो एक टीम वर्क होता है
0: जी।
1: और आपकी टीम में इतने सारे लोग होते हैं, नॉट नेसेसरी कि भी आप जितने टाइम पंक्चुअल है, आप जितना एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं उतनी एक्यूरेसी और उतनी टाइम पंक्चुअलिटी दूसरों में भी हो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वो चीजें जब सामने वाले में नहीं होता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें समझाया कि भी पांच उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। हम जैसे हैं हर व्यक्ति वैसा हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो आध्यात्मिक समझ कि जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा हम स्वीकार करें, मैं पंक्चुअल हूँ दैट्स फाइन, दूसरा नहीं है दैट्स ऑल्सो फाइन, मैं बहुत एक्यूरेटली करती हूँ बहुत अच्छी बात है भाई, सामने वाला उतना एक्यूरेसी से नहीं कर सकता, दैट्स ओके।
0: जी जी, कई बार देखा जाता है कि सामने वाला अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे कार्य हाँ हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सही तरीके से या सहज रीति से नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें इरिटेशन आ जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इरिटेशन कोई इलाज तो है नहीं
0: जी।
1: हम इरिटेट हो के सामने वाले को मजबूर तो नहीं कर सकते कि भाई जल्दी करो। मान लीजिए दूसरा कोई है बहुत स्लो है और मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, क्या मेरे इरिटेट होने से वो फास्ट हो जाएंगे?
0: नहीं,
1: वो तो और ही लो फील करेंगे कि हाँ ये तो कितने है ना कैपेबल है, मैं तो इनकैपेबल हूँ, उनके अंदर का वो जो सेल्फ एस्टीम है वो तो और ही लो होता जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस और ही घट जाएगी। रादर मुझे इरिटेट होने के बजाय वो उस आत्मा की या उस व्यक्ति की मजबूरी है या वो उसकी वीकनेस है, उसको समझते हुए मैं उसे बहुत प्यार से एम्पावर करती हूँ
0: जी।
1: किसी आपकी जो स्पीड है ना थोड़ा सा तो आप बढ़ा सकते हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि भाई डे वन वो मेरी स्पीड को अचीव कर लेगी, बट हाँ ठीक है हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपने उदाहरण को प्रस्तुत करके उन्हें बता सकते हैं, पता है हम भी कभी बहुत स्लो हुआ करते थे लेकिन फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा सा ट्राई किया, अपने पे थोड़ी मेहनत की तो हमारी स्पीड अच्छी हो गई, एंड आई होप आप तो बहुत अच्छे हो। उनके थोड़े इस सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप भी थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, थोड़ी तो स्पीड बढ़ सकती है तो आपको भी अच्छा होगा, आप इतना टाइम किसी कार्य में लगा रहे हो आपकी कम टाइम में हो जाएगा, आपके पास लीजर आवर बचेगा। तो हम किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, कोई भी चीज की कमी है जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही है तो पहली बात है हम उसके साथ एडजस्ट करें, हम फ्लेक्सिबल रहें कि ठीक है वो दो घंटे में करे तो वाह, ढाई घंटे लग जाए तो भी वाह, तीन घंटे लग जाए तो भी वाह, बट एट द सेम टाइम हमें उनको एम्पावर भी करना है, हमें कोशिश भी करनी है कि वो थोड़ा अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके।
0: जी बिल्कुल, लेकिन कई बार हम कोशिश करते हैं तो सामने वाले के ईगो और हमारे ईगो में टक्कर हो ही जाती है, तो जैसे आपने कहा एम्पावर करें, ऐसा कैसे शब्दों में और कैसे बोले कि ताकि उनको भी हर्ट फील ना हो और हम भी मतलब इफेक्ट में ना आए।
1: जी, कई बार हमें परमात्मा की शिक्षाओं में ये सारी बातों की समझ प्राप्त होती है कि किसी को भी हम यदि कोई शिक्षा दे रहे हैं या कोई करेक्शन हम उन्हें बता रहे हैं कि आप ये करिए, तो जो व्यवहारिक जीवन में हमने एक चीज को महसूस किया है कि हमें पहले उनकी तारीफ करनी है।
0: ओके।
1: उनकी दो अच्छी बातों को रिकॉग्नाइज करना है कि देखिए आपने वो इतना डिफिकल्ट काम था पर आपने वो कर दिया, इट वॉज सो गुड, कि भाई आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे से डील किया, इट वॉज टू गुड। और ऐसी एक छोटी सी बात आई, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, आप चाहे तो इसे इजीली डील कर सकते हो और आप करते भी आए हो, लेकिन पता नहीं उस दिन आपको क्या हो गया, आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इसकी वजह अगर ऐसे कर लेते ना तो बहुत अच्छा हो जाता। तो जब हम उनको प्रेज कर रहे हैं, जब हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। और उसके बाद हम जब उन्हें दो ऐसी और नई बातें बताते हैं जो उन्हें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो स्वीकार करना उनके लिए बहुत सहज हो जाता है।
0: जी।
1: तो हमने अपने बड़ों से सीखा है कि भाई कभी भी आपको अगर अप्रिशिएट करना है, द अप्रिशिएशन शुड ऑलवेज बी इन द पब्लिक, आप पब्लिक में अप्रिशिएट करिए कि फलाने फला काम किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ये किया। और कभी हमें करेक्शन देना होता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तो गलतियां मनुष्य मात्र से हो जाती हैं। तो किसी से हो भी गई और हम उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं, तो हम उन्हें आराम से अपने पास बुलाएं और प्राइवेट में हम पहले दो तारीफ करके उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं, और फिर हम उन्हें प्यार से बोले कि भाई आपको ये बदलाव लाना है, ये करेक्शन करना है या बेटरमेंट लाना है। तो ये अनुभव कहता है कि अगर हमारी भाषा में नम्रता है, मधुरता है और उस आत्मा के प्रति रहम की भावना है,
0: जी,
1: उसको ऊपर उठाने की भावना है, तो वास्तव में हमारी भावनाएं ही काम करती है और उन्हें हमारी बातों को स्वीकार करना मानना सहज हो जाता है।
0: जी जी बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती, तब फ्लेक्सिबल बने रहने में ये क्या हमें मदद करते हैं उस परिस्थिति से उभरने के लिए?
1: बिल्कुल, कई बार बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। आज मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत की और मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बहुत मेहनत की, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं सोच के मैं दुखी होती रहूं, या तो मैं ये समझ लूं कि भी मेहनत का फल कभी बेकार
0: नहीं
1: जाता है, मैं अपने अंदर वो धैर्य बनाए रखती हूँ कि भी मैंने जो मेहनत करी है उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है, हो सकता है मैं जिस तरीके से और जिस समय रिजल्ट चाहती थी वो मुझे नहीं मिला, बट मेरी मेहनत बेकार बेशक नहीं गई है, उसका भी रिजल्ट मुझे मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक बार एक राजा थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक दिन एक महात्मा उनके राज्य में आए थे, तो उनको लगा कि मैं कुछ तो सलाह लूं, पर उन्हें लगा सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, मैं क्या सलाह लूं उनसे। फिर उनको लगा कि भी ठीक है आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कल की क्या गारंटी है, सभी बुरे दिन आ भी सकते हैं। तो महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान की और आपकी मेहरबानी से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे राज्य में भी सब कुछ अच्छा है, खुशहाली है, लेकिन मुझे अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे वो सलाह दीजिए।
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्हें कागज पे कुछ उन्होंने एक मंत्र लिखा, कुछ एक सुझाव लिखा, और राजा ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस अंगूठी में जो नग लगा हुआ था उस नग के नीचे उन्होंने कागज को फोल्ड करके उसके नीचे रख दिया और कहा इसे आप निकालना नहीं।
0: जी।
1: जब आपको ऐसी हालात आए और आपको लगे कि अब आगे क्या, तब आप इसे जरूर खोल के पढ़ लीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, राजा ने अंगूठी पहन ली। एक बारी राजा के राज्य पर हमला हुआ और हमले में राजा को अपना राज्य हारना पड़ा, गंवाना पड़ा। अब आप सोचिए एक राजा का राज्य ही चला गया तो उसके लिए रहा ही क्या, तो राजा बहुत चिंतित व्यथित थे। राजा को सोच चलने लगा कि अब क्या, तो उनको अचानक से याद आई कि महात्मा जी ने अंगूठी में नग के नीचे कुछ मंत्र लिखा हुआ है जो उन्होंने उसे निकाला और उसे पढ़ा, तो उस पे लिखा था ये समय भी गुजर जाएगा। और जैसे ही उन्होंने इस बात को पढ़ा उनकी आंखों में चमक आ गई
0: जी,
1: उनके अंदर का आत्मविश्वास जो थोड़ा खोने लगा था वो जागृत हो गया, उनके अंदर धीरज आ गया कि ये समय भी
0: बीत जाएगा,
1: ये समय भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने हिम्मत जुटा के फिर से आक्रमण किया, किसी प्रकार से उन्होंने सब कुछ साधन जुटाए और फिर अपना राज्य वापस उन्हें मिल गया
0: जी।
1: तो फिर भाई आज जो समय आया है कल के समय से अलग है, और कल जो समय आने वाला है वो आज के समय से अलग होगा। तो ये सारी चीजें हमें हर परिस्थिति के साथ मुकाबला करने में मदद करती हैं।
0: जी बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जब घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए और हमारी योजना बदल जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे दिखा सकते हैं वहाँ पर?
1: मान लीजिए मैंने आज प्लान किया था कि बच्चों को लेके मैं कहीं पे घूमने के लिए जाऊंगी, लेकिन मेहमान आ गए और मेरे बच्चे बहुत मतलब ईगर थे कि भी आज तो पार्क में जाएंगे, आज तो कहीं जाएंगे, लेकिन अब मेहमान को तो कुछ कह नहीं सकते कि भी आप क्यों आ गए
0: जी,
1: तो उसके कारण हमारा जाना कैंसिल हो गया या फिर नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम अपने मन को प्रिपेयर करते हैं
0: जी,
1: ऐसी अचानक वाली बातें जो हमारे जीवन में आती हैं उनके साथ अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए, जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे
0: जी,
1: हमें अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है कि हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन योजनाएं हर समय हमारे अनुसार चलेंगी वो आवश्यक
0: नहीं है जी।
1: तो कभी योजना बदल भी जाए तो हमें उसमें चिंतित नहीं होना है, एक सोच कि भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, आज यदि नहीं जाना किसी कारणवश हो पाया तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, आज मेहमान हमारे घर आ गए तो वो मेरे लिए आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर काम आती है जब हम अपने कंफर्ट जोन को बहुत अच्छा बढ़ा लेते हैं
0: जी। कंफर्ट जोन की बात आज मुझे लगता है हर सोशल मीडिया में आप सुन सकते हैं कि लोग कहते हैं कि फेस करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो बनने से पहले आप अपने आप को सोमान दो ताकि आप बन गए होकर के अफर्मेशंस दो, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: हमारे मन के विचार एक्चुअली मैनिफेस्ट होते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। तो जब हम एक विजन बनाते हैं कि हम ये बन गए हैं, हम ये बन रहे हैं, मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है और वो सोच रहा है मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकलता हूँ, तो अपने अंदर जो एनर्जी है या जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम जो बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार विजन में लाते हैं, वही चीज़ें घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे क्या दिक्कत है अच्छा सोचने में?
0: लेकिन कई बार लगता है ना हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से।
1: नहीं, पर झूठ उम्मीद है।
0: ओके।
1: उम्मीद है। ऐसे भी रियल लाइफ केसेस हमारे सामने हैं जहां पर डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया है और कह दिया है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, और वैसे केस में भी पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए
0: जी
1: लोग उस कठिन बीमारी से भी बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये झूठ तो नहीं है ना
0: जी, मनोबल है और होप है जी,
1: ये सत्य हो सकता है। तो एक उम्मीद के साथ हम अच्छा सोच रहे हैं, और जितना अच्छा हम सोच रहे हैं मान लीजिए उतना पूरा का पूरा ना हो, थोड़ा हो जाए तो भी क्या दिक्कत है
0: जी।
1: तो नेगेटिव सोच के नेगेटिव हालातों को इनवाइट करने से तो अच्छा है पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव हालातों को इनवाइट करें
0: जी। जैसे एक क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स फेस नहीं कर पाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर कई बार आप नए नए ऑफिसेस में गए हो, आप अपने सीनियर्स को फेस नहीं कर पाते हो और कंपैरिजन कॉम्पिटिशन्स के माहौल रहते हैं, तो वहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके फ्लेक्सिबल कैसे बन सकते हैं?
1: सबके व्यवहार एक जैसे नहीं होते हैं, अक्सर यही होता है कि हमें जो अच्छा मिला हुआ होता है ना हम उस पे गौर नहीं करते हैं। मान लीजिए आज मेरी जॉब एनटीपीसी में है फॉर एग्जांपल, तो एनटीपीसी में बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो मुझे नहीं दिख रहा है, पर वहां जो शॉर्टकमिंग है वो मुझे दिख रहा है
0: जी।
1: मैं कंपेयर करती हूँ कि भाई ओएनजीसी में तो ऐसा है, एनटीपीसी में तो ऐसा चल रहा है, ओएनजीसी फार बेटर है। लेकिन अगर अनुभव कहता है अगर मैं एनटीपीसी छोड़ के ओएनजीसी में जाऊंगी तो ओएनजीसी में मुझे लगेगा एनटीपीसी में तो वो अच्छा था
0: जी,
1: फिर मुझे यहाँ वाली जो अच्छाई है ना वो फिर मुझे याद आने लगती है जो शायद से ओएनजीसी में मिसिंग है। इसलिए कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो ये इंसान के मन की फितरत होती है कि जो उसे मिला हुआ है वो उसकी कीमत को नहीं समझ रहा होता है, और जो उसे नहीं मिला हुआ होता है वो उसे बहुत कीमती समझता है। लेकिन जो हमें मिला है यदि हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझ लें तो हमें इन चीजों के साथ एडजस्ट करना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, वो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। और रही बात लोगों के साथ एडजस्ट करना, मान लीजिए मेरे बॉस हैं थोड़े गुसैल हैं या ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, या बहुत ज़्यादा वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स हमें देते रहते हैं जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। अब हम बॉस को चेंज तो नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन क्या है वो हमें देखना है। हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है इनके कारण से मेरी कैपेबिलिटी
0: बढ़ रही है
1: और बढ़ ही जाएगी, तो अच्छी बात है कि हम थोड़ा फास्ट होना लर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है कि हम थोड़ा और स्मार्ट वे में वर्क करना सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें काम आती है।
0: अपने आप से बात करनी चाहिए निरंतर पॉजिटिव वे में।
1: हाँ जी
0: जी, जैसे कंपैरिजन हर पल हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है क्योंकि ऑफिस के माहौल ऐसा है, आपको उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, आपको सुबह उठने के बाद उन्हीं को गुड मॉर्निंग करना है विद स्माइल, तो कई बार ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें कैसे एडजस्ट करें फिर हम अपने?
1: हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमें दिखाई पड़ रही है।
0: जी,
1: तो वो नेगेटिविटी जो हमें दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके लिए वो एक नेगेटिव फीलिंग पैदा करती है। तो इसलिए हमें ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि भले किसी व्यक्ति में कितनी ही नेगेटिव

0: एक्टिविटीज क्यों ना हो, उनमें पॉजिटिविटी भी होती है, उनमें अच्छाई भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना हम 10 बुराइयों को इग्नोर करते हुए उनके 4 अच्छाइयों पे फोकस करें
1: जी,
0: ताकि हमारी फीलिंग उनके लिए अच्छी रहे, हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा रहे, हमारी सोच उनके साथ अच्छी रहे। क्योंकि ये सही बात है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, वही बातें हमारे पास लौट कर आएंगी
1: जी।
0: तो फिर हम उनकी पॉजिटिविटी पे फोकस करें तो वो वही व्यक्ति हमें अच्छे लगने
1: लगेंगे,
0: शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ
1: जी।
0: एक बार एक आश्रम था, जिस आश्रम में बहुत अनुयायी आते थे, बहुत रेगुलर बेसिस में आते थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, काफी सारे उनके इनमेट्स रहते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि वहां पे लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा, तो अब इनको विचार चलने लगा। ऑफकोर्स जो आते हैं वही फिर वहां के सब बातों की देखरेख करते हैं, तो फिर तो उनका जो सबसे बड़े थे उनको विचार चलने लगा कि भाई क्या है, क्या करा जाना चाहिए। तो वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे सलाह पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि दरअसल बात ऐसी है कि आप जो इनमेट्स हैं, आपके बीच में एक देवदूत है
1: जी,
0: आप उसे ढूंढ निकालिए, आपके सभी बातों का समाधान हो जाएगा। तो वो गए और उन्होंने सबसे कह दिया कि भाई हमारे बीच में एक देवदूत है और हमें उसको ढूंढना है। तो जो आश्रम के परिसर में झाड़ू लगाता था, वो बेचारा बहुत कड़ी मेहनत करता था, बहुत बड़ा आश्रम का परिसर था, और बड़े प्यार से खुशी खुशी झाड़ू लगाता था। सबको लगा यही शायद देवदूत है, इतनी मेहनत से वो भी इतनी खुशी खुशी और इतने प्यार से वो झाड़ू लगाने का काम करता है। किसी की ड्यूटी थी जंगल से लकड़ियां काट के लाना ताकि खाना बन सके, तो किसी को लगा सर्दी गर्मी बारिश
1: जी,
0: ये बंदा अपना काम करता है, बारिश का मौसम है तो लकड़ियों का स्टॉक है ना रहे, उसका ध्यान रखता है, शायद यही देवदूत है। एक बंदे को खाना बनाने की ड्यूटी मिली हुई थी, तो लोगों को लगा 3 टाइम आज कोई काम रुक जाए, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है जो
1: रोजाना
0: चलता ही रहता है। और इस व्यक्ति को देखो, आज हम बीमार होते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हम 2 घंटे बाद कर लेंगे ये काम, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है और हम इतने सारे लोग हैं तो हमें तो हर दिन समय पे भोजन मिलता है
1: जी।
0: तो इसको भी तो परिस्थितियां आती होंगी, तबीयत देर सवेर बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन टाइमली ये व्यक्ति भोजन तैयार रखता, शायद यही देवदूत है
1: जी।
0: तो हर व्यक्ति की नजर दूसरे के लिए क्या बन गई,
1: देवदूत है,
0: देवदूत है। तो पूरे आश्रम में एक बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया और धीरे धीरे लोगों का आना भी
1: शुरू हो गया जी।
0: तो इसलिए हम हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी फीलिंग, अच्छी नजरिया रखेंगे तो फिर हमें उसी माहौल में उन्हीं लोगों के साथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और ये कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके लिए
1: दुनिया अच्छी है।
0: तो कहीं हमको लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमें खुद को जांच करना होगा।
1: बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि कहाँ पे हमें इग्नोर करना चाहिए लोगों को या परिस्थितियों को। और जैसे दीदी ने कहा कि आप को अच्छा बनना है और आप लोगों के साथ अच्छा बनने के लिए उनकी पॉजिटिविटी आप देखिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: सेवा, स्नेह और उत्कृष्टता के 10 वर्ष यही है मावजत अस्पताल। इस विशेष अवसर पर मावजत अस्पताल आपके स्वास्थ्य के लिए लाया है विशेष पैकेज, इंडोस्कोपी ₹2,500, अपेंडिक्स, हर्निया एवं फ्रैक्चर सर्जरी पैकेज ₹9,900 से शुरू, दूरबीन से अपेंडिक्स ऑपरेशन ₹14,900 से शुरू, दूरबीन से हर्निया व पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन ₹17,900 से शुरू, घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी ₹29,000 से शुरू, सभी ऑपरेशन में दवाएं, एनेस्थीसिया और जनरल वार्ड चार्ज शामिल है, इम्प्लांट चार्ज अलग से रहेगा। पैकेज 30 अप्रैल 2025 तक मान्य। मावजत अस्पताल, मानसरोवर तालाब के सामने, पालनपुर। कॉल करें 9558200200 या 9558600600। भरोसा मतलब मावजत।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे मध्य हैं ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी। उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ प्रेरणाएं आपको मिल रही हैं, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के अंतर्गत। दीदी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। तो दीदी, हम फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य के बारे में जान रहे थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया कि कहाँ पर हमें कैसे फेस करना है, कैसे अफर्मेशंस लेना है, और फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम अपनाते हैं तो और भी अनेक जीवन मूल्य हमारे अंदर आती जाती है, और कैसे परिस्थितियों में हमें कैसे कैसे पॉजिटिव सोचना है वो भी आपने प्रकाश डाला। तो आपसे कुछ और चर्चाएं करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल है कि अगर परिवार के बीच में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो इस मूल्य को कैसे वहाँ अपना सकते हैं।
1: विचारों की भिन्नता और संस्कारों की भिन्नता एक जायज सी बात है। तो मान लीजिए मुझे कोई बात सही लग रही है, हो सकता है मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य को वो बात गलत लग रही है
0: जी,
1: या मैं चाहती हूँ ये चीज करी जाए और वो चाहते हैं ये चीज नहीं करी जाए। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। मुझे याद आता है हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने एक बहुत अच्छी बात, हम बहनों की जब ट्रेनिंग होती है तो हमें सिखाया
0: जी
1: कि मान लीजिए एक कमरा है जिस कमरे में दो बहनें सो रही हैं और एक बहन को गर्मी लग रही है, वो कह रही है एसी चालू करो, वो कह रही है पंखा तेज करो, और दूसरी बहन कह रही है कि एसी बंद करो, पंखा कम करो
0: जी,
1: तो क्या करा जाए।
0: कहीं एक बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए।
1: बीच वाला रास्ता मतलब तीन पे रखे पंखे को
0: जी।
1: या वो भी हो सकता है
0: जी।
1: तो दादी जी ने हमें सिखाया जिसको गर्मी लग रही है उसके लिए कोई
0: जी।
1: विकल्प नहीं है, तो उसके कंफर्ट के अनुसार आप एसी चालू कर लीजिए या पंखा तेज कर लीजिए,
0: फिर ओढ़ लीजिए।
1: पर जिसे जिसे ठंडी लग रही है एसी चलाने से या पंखा तेज करने से, उसके पास विकल्प है, वो ओढ़ सकता है। तो ऐसे ही जब हम सामने वाले को सुख देने का एक अपने मन में भावना रखते हैं तो हमें वो बीच वाला रास्ता दिखाई देता है जहां हमें भी तकलीफ ना हो और सामने वाले को भी आराम मिल जाए।
0: जी।
1: तो हमें अपने फायदे से पहले दूसरे के फायदे का सोचना है। ये सोच, ये जो सोच है ना कि नहीं मेरा कंफर्ट जितना इम्पोर्टेंट है सामने वाले का कंफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: तो जैसी हमारी सोच होती है ना फिर हमें वैसे ही ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब जब हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं एसी तो चलेगा ही
0: जी,
1: अब आपको अच्छा लगे ना लगे, फिर हम थोड़े रूड बिहेव करते हैं या बातचीत थोड़ी रफ डफ करते हैं, फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये रिजिड हो जाते हैं कि नहीं पंखा तो बंद ही करना पड़ेगा, एसी तो बंद ही करना पड़ेगा, पंखा चलेगा ही नहीं, फिर वो आपस में फाइट होनी शुरू हो जाती है
0: जी।
1: लेकिन यदि एक व्यक्ति झुक जाता है तो फिर ऐसी स्थितियां कभी नहीं आती हैं। इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है कि भाई जब हवा

0: तूफान तेज चलती है तो जो बांस के पेड़ होते हैं
1: जी,
0: क्योंकि उनमें लचीलापन नहीं होता है कि भाई वो बेंड कर सकें, तो यही देखा जाता है अक्सर कि उन्हें जड़ से उखड़ना पड़ता है। और वहीं पर तेज हवा में वो पौधे जो हवा के साथ साथ लहरा सकते हैं, झुक जाते हैं, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, वो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो जीवन के लंबे सफर में हम सरवाइव कर सकते हैं
1: जी।
0: और अगर हमारे में वही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कहीं हमें भी जड़ से उखड़ने वाली नौबत का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आता है
1: जी,
0: झुकता वही है जिसमें जान होती है
1: जी,
0: अकड़े रहना मुर्दे की
1: पहचान होती है।
0: तो जीवन है, विचार है हमारे अंदर, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, हम दूसरे की संवेदना को समझ सकते हैं, दूसरे की प्रायोरिटीज को हम समझ सकते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इजीली आ जाती है।
1: जी बिल्कुल। मान लीजिए एक ग्रुप में आप हैं और आपको एडजस्ट करना आता भी है, लेकिन कई बार ऐसे परिस्थितियां आती है कि जहां पर आपको लगता है कि आपका मोरल डाउन हो रहा है या हर बार आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्टेबल भी रखें क्योंकि आपको उनके साथ काम भी करना है, तो आप फ्लेक्सिबल भी रहें।
0: अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है तो सामने वाला कुछ भी कह के, कमेंट करके, क्रिटिसाइज करके वो हमें नीचा नहीं महसूस करवा सकता है
1: जी।
0: वो कोशिश जरूर कर सकता है हमें नीचा दिखाने की, हमें नीचा महसूस करवाने की, पर एग्जैक्टली हम क्या महसूस करेंगे वो चॉइस हमारे पास है।
1: ओके,
0: अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है तो हम वैसी परिस्थिति में भी अपने आप को ये कमांड दे सकते हैं, ये उनकी सोच है, बट आई नो व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और कैसी हूँ वो मुझे बेहतर मालूम है, ठीक है ये उनकी सोच है, डज नॉट मैटर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो हमें सामने वाले से वो अप्रिशिएशन की एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर हम सामने वाले से वो अप्रूवल चाह रहे होते हैं कि भाई मैंने अच्छा किया, कितना अच्छा किया
1: जी।
0: और फिर जब वो अप्रूवल हमें नहीं मिलता है, वो अप्रिशिएशन हमें नहीं मिलता है, तो हम भी सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि पता नहीं अच्छा किया भी या नहीं। तो वो चीजें तभी आती है जब हमारे अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा बहुत अच्छा है तो हमें इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है
1: जी। ब्रह्मा कुमारीज में हमने सुना है कि जो राजयोग होता है उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, तो ये मतलब कैसे किया जाता है?
0: वास्तव में राजयोग हमें अपनी वास्तविकताओं का एहसास दिलाता है। राजयोग मतलब अपने आप को समझना, जानना, गहराई से अपने अंदर झांक कर देखना, तो उसमें हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है, साथ में हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता चलता है
1: जी।
0: तो राजयोग हमें अपने आप से जोड़ता है, मतलब आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में थी, बहुत ही शुद्ध, शांत, आनंद, प्रेम स्वरूप, उस स्थिति को हमें ले जाने का एक रास्ता है
1: जी।
0: आज जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, यदि बहुत बारीकी से इन पर गौर किया जाए तो हम यही पाएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुण और शक्तियों की कमी के कारण है। जब वही परिस्थितियां हम अपने गुण और शक्तियों को एलिवेट करके, उसे बढ़ा के हम फेस करेंगे तो वो चीजें हमें बहुत मामूली नजर आएंगी
1: जी।
0: तो राजयुग में हम उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जो शक्ति और गुणों का भंडार है, अनंत स्रोत है, और विज्ञान का एक सिद्धांत है
1: जी
0: कि शक्ति का प्रवाह हमेशा एक हायर सोर्स से एक लोअर सोर्स की ओर होता ही है
1: जी।
0: तो जो मन हमारा कमजोर है, मान लीजिए धीरज की कमी है, सहन शक्ति की कमी है, या एडजस्टमेंट पावर की कमी है, और हम उस परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो ये अनुभव कहता है कि वो शक्तियाँ, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर जब वो शक्ति और गुण हमारे में आ गए, परिस्थिति वही है, लोग वही हैं
1: जी,
0: कुछ नहीं बदला है, हमने सिर्फ अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। जैसे आजकल हम डिवाइसेस यूज करते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, तो आए दिन अपग्रेड करो आता रहता है, एंड वी अंडरस्टैंड कि हमें अपग्रेड करना बहुत
1: जरूरी है,
0: अदरवाइज हम उस ऐप का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे
1: जी।
0: तो उसी रीति से समय और परिस्थितियों के प्रमाण हमें अपने वर्जन को भी
1: अपग्रेड करने
0: की जरूरत होती है। और जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो नई चीजों को सीखने का प्रयास भी करते हैं, वो ओपननेस भी होता है, और फिर वो सीखते जाते हैं और अपना बहुत ही अच्छा अपग्रेडेड वर्सन अपने आप को बना लेते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि फ्लेक्सिबल रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उस पुराने ढांचे में रहते हैं, तो फिर हम इस जनरेशन वाले उस जनरेशन को दोस्त देते हैं और वो हमें दोस्त देते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस दीदी को हम पूछते हैं कि दीदी मान लीजिए एक परिस्थिति है कि कहीं हम यात्रा के लिए एक योजना बना रहे हैं और अचानक मौसम खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो हम क्या घर बैठ करके फ्लेक्सिबल होकर के उसकी आनंद ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ वर्तमान में जीने की आदत को बढ़ाना पड़ेगा।
1: ओके।
0: क्योंकि आज मौसम खराब हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया, मान लीजिए
1: जी,
0: इट्स नो वे इन माय हैंड,
1: जी
0: कि मेरे हाथ में है ही नहीं,
1: जी
0: हो सकता है उससे कुछ नुकसान भी हो रहा हो, मेरा कोई जरूरी मीटिंग हो जो मिस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट जहां पर कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है वहां पर वैसी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेना ही फायदेमंद होता है। कभी भी लाइफ में हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, जो दो ही चॉइस होते हैं, इधर चेंज और एक्सेप्ट।
1: जी
0: क्या ये जो फ्लाइट कैंसिल हो गया इसे मैं चेंज कर सकती हूँ?
1: नहीं,
0: मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं चेंज नहीं कर सकती तो मेरे पास क्या विकल्प बचा?
1: एक्सेप्टेंस।
0: अब एक्सेप्ट मैंने कर लिया कि ठीक है आज उस मीटिंग को अटेंड करना मेरे उसमें नहीं लिखा है, बट दैट्स फाइन, मैंने जो हमारे सीनियर है उन्हें इंटीमेट कर दिया। इस चीज को तो कोई भी समझ सकता है
1: जी,
0: कि भाई ये हमारी मजबूरी रही है जो हम समय पर नहीं पहुंच सके। तो वैसे में हमें उन चीजों के सोच चिंता को छोड़ के वर्तमान में जियो। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है मैं घर पे हूँ, लेट मी एंजॉय माई टाइम विथ माई फैमिली मेम्बर्स, मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन अपने ये कुछ अनमोल क्षणों का आनंद ले लूं।
1: जी
0: तो जब मैंने सोच लिया कि भाई ये चेंज नहीं हो सकता तो मुझे एक्सेप्ट ही करना है। दिक्कतें तब आती हैं जब हम चेंज भी नहीं कर पाते हैं और एट द सेम टाइम हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते,
1: हम चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है,
0: तो फिर वो चिड़चिड़ापन आता है, तो फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। मैं पहली फ्लाइट लेने का सोच रहा था, इन्होंने कहा क्या जरूरत है जल्दी जाने की, बाद में भी तो एक फ्लाइट है, आप पहुंच जाएंगे टाइम से, उनके कहने पर मैंने अपना अगला वाला फ्लाइट चूज, मतलब कुछ भी, फिर वो ब्लेम गेम चलता रहता है।
1: जी बिल्कुल। तो और एक सवाल है कि आजकल जब बच्चों की पढ़ाई और उनके बहुत प्रकार के हम देख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, तो डिमांड भी बढ़ रहा है, तो एक माता पिता के रूप में फ्लेक्सिबल कैसे बना जा सकता है? जो बच्चे जिद कर रहे हैं उन्हें दे देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए?
0: वास्तव में अगर हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के प्रमाण हर कुछ तभी का तभी मिल जाता है तो ये अनुभव कहता है वो बच्चा डिनायल को कभी फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक उसे सब कुछ बोलते ही प्राप्त होता आया है। कल को वो किसी लड़की को प्रपोज करे और उसने
1: मना कर दिया
0: तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा।
1: जी
0: माना ये एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है उसके लाइफ में जहाँ पे उसको डिनायल को फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पर वो उन चीजों को स्वीकार
1: नहीं कर पाएगा,
0: झेल नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो उनके लिए कितना आवश्यक है वो देखा जाए और उसी के अनुरूप उनके डिमांड को फुलफिल किया जाए। भले मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उसके डिमांड को फुलफिल कर सकती हूँ एज अ मदर और एज अ फादर, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इन बातों में थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, मोबाइल मांग रहा है, और मैं यदि मोबाइल उसे न दूं तो वो रोता है, पैर पटकता है, कुछ भी करता है, चिल्लाना शुरू करता है, और जस्ट बिकॉज कि वो चिल्लाए नहीं और रोए नहीं मैं उसे मोबाइल हर बारी पकड़ा देती हूँ
1: जी,
0: उसकी आदतें
1: बिगड़ जाएंगी,
0: बिगड़ रही है, आंखें भी खराब हो रही हैं, उसका जिद भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे को अच्छे संस्कार वाला बच्चा बनाने के लिए हमें इन बातों पर थोड़ा सा अंकुश डालना
1: चाहिए,
0: जरूरी है, और ताकि वो डिनायल को भी स्वीकार कर सके, ताकि वो डिसिप्लिन को भी समझे कि भाई हरदम हर कुछ जो हमारा मन कर रहा है करने के लिए वो करने को नहीं मिलेगा अगर वो सही नहीं है। कई बार सही होने पर भी नहीं मिलता
1: जी,
0: हो सकता है हमारे माता पिता वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जो बच्चा चाह रहा है, शायद उसे वो देना सही होता भी
1: जी,
0: परंतु मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी उसे नहीं प्राप्त होता है। तो एक बच्चे को इन हालातों से गुजरने का एक मौका देना चाहिए
1: जी,
0: ताकि जिंदगी के लंबे सफर में ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी उसके लाइफ में आ जाए तो उसे वो इजीली हैंडल कर सके
1: कर सके। अभी यहाँ पर वक्त हो रहा है कि हम अलविदा कहें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस मूल्य के बारे में हमारे श्रोताओं को और क्या कहना चाहेंगे।
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में यदि हमारे अंदर एक मानसिकता डेवलप हो जाए कि कैसी भी परिस्थिति में हमें खुश रहना है
1: जी,
0: और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसे भी लोग हमारे संपर्क में क्यों ना आए, लेकिन हमें सबके साथ हिलमिल के प्रेम प्यार से रहना है, तो जो हमारी सोच होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे व्यवहार विचार हमारा दृष्टिकोण सब कुछ अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए रिश्तों में तनाव और मतभेदों को खत्म करने के लिए ये लचीलेपन के गुण को अपनाना बहुत आवश्यक है, और ऐसे में कई बार जो संसाधनों पे हम बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं
1: जी।
0: तो अनुभव ये कहता है कभी कभी संसाधनों के होने के बावजूद भी हमें संसाधन के बिना
1: जी
0: अपना काम कर पाने का थोड़ा सा जो प्रयास है, थोड़ी जो आदत है वो बनाए रखनी चाहिए। मान लीजिए लिफ्ट है लेकिन हम लिफ्ट का उपयोग न करें
1: जी
0: जब तक अति जरूरी
1: नहीं
0: ना हो। एसी है लेकिन जब बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तब तक हम एसी का प्रयोग
1: ना करें।
0: हम बहुत कुछ खा सकते हैं लेकिन हम अपने आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, नहीं मुझे इतना ही खाना है और इतनी बार ही खाना है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं अपने आप को एक अनुशासन में रखने के लिए, अपने आप को मर्यादाओं में रखने के लिए, अपने आप पर कुछ अंकुश लगाने के लिए। तो ये चीजें फिर जब सही मायने में ऐसी परिस्थिति आएगी कि लिफ्ट नहीं काम कर रहा है तो मुझे वहां दिक्कत नहीं होगी। बहुत लंबे समय तक मान लीजिए कहीं पे साइक्लोन आ गया और 5 दिन तक पावर कट है, ना एसी ना कुछ, तो मुझे उस समय दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपने आप को ढाल रखा है
1: जी।
0: तो आने वाला समय ऐसा होगा जहां पर ये संसाधन काम नहीं करेंगे जो हम आध्यात्मिकता में गहराई से समझते हैं। तो ऐसे समय में ये जो हमारी आदतें हैं कि भाई कुछ है तो वाह, कुछ नहीं है तो भी वहा, आज कुर्सी मिली तो अच्छी बात है, आज कुर्सी नहीं मिली फर्श पे बैठना पड़ा तो भी कोई बात नहीं, आज मुझे बिस्तर मिला, गद्दा मिला, आज मुझे खटिया मिली तो इट्स फाइन, कल नहीं मिला और मुझे जमीन पे ही लिटा दिया गया तो भी फाइन। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात भक्ति में भी कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है
1: जी।
0: तो सिर्फ एक मानसिकता कि जीवन में जब जैसी बातें हमारे सामने आ जाए हमें उसे फेस करना है और उसे फेस करते हुए हमें खुश रहना है और खुशियां बांटनी है
1: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे भी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट करके खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है और ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिल जाएंगे। जब आप थोड़ा 1 मिनट साइलेंस में रह करके सोचेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, आगे हम और क्या कर सकते हैं। दीदी ने जैसे कहा कि आप प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट के बारे में ही सोचिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति। और जब भी आप शांतिवन परिसर में आए तो जरूर हमारे श्रोताओं के साथ एक बार बातचीत करिए।
0: इट विल बी माय प्लेजर।
1: थैंक यू। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये कार्यक्रम आप फ्राइडे को 12 बजे फिर से पुनः प्रसारण में सुन सकते हैं। नमस्ते।

ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 27 जून 2026 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को नई दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं। मुरली के अंदर कि नई दुनिया में क्या क्या होगा, और बाबा कहते हैं जब ऐसी नई दुनिया देखते हैं, समझते हैं, बुद्धि से देखते हैं, तो जरूर है पुरानी दुनिया से दिल तो नहीं लगेगी, और इसीलिए उस दुनिया में चलने के लिए मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। साथ ही साथ बाबा कहे दूसरी ओर तुम्हें 63 जन्म के देह अभिमान की जो आदतें पड़ी है उसको मिटानी है। तो इस एक जन्म में ही 21 जन्म का वर्षा लेना है और 63 जन्म की देह अभिमान की आदतें मिटानी है, क्योंकि जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। दूसरा बाबा कहते इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को कहीं भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। यज्ञ में शुरू से ही विघ्न पड़े हैं, अत्याचार हुए हैं, तो बाबा को याद करते हुए जितना अत्याचार को सहन करते जाएंगे उतना बाप से वर्षा लेते जाएंगे। तो बाबा कहे तुम बच्चों को यही मेहनत इस संगम युग में करनी है किचड़े को निकालने की। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आज की मुरली से प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्म की आदत मिटानी है, इसीलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती है। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे? उस जमाने में तो बाबा के कई बच्चों को साक्षात्कार हुआ था स्वर्गीय दुनिया का, नई दुनिया का। तो बाबा कहते हैं जब स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल

वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी, ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज है, जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है, बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छी निश्चय बुद्धि है वह बाप के ही याद में रहते हैं, वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। बाबा कहते निश्चय बुद्धि बच्चों की पहचान क्या, वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता, उस बाप को कहा जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं, अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहां आकर बैठे। ये हो ना सके इसीलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं, वह तो ठीक है। सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, सभी सजाएं खाकर के भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, ये हो नहीं सकता, कायदा नहीं। जो बीच से कोई ड्रामा से घर में चले जाए, जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण वह भी वापस जा नहीं सकते हैं, तो और कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर वाली आत्माएं भी यही है, तो बाकी और तो कैसे जा सकते हैं। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही है एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़ी पुकारते हैं। दुखरता सुख करता, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, बाबा कहते ये कृष्ण आदि के लिए नहीं पुकारा जाता है। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को, फादर कहते तब है जब समझते हैं कि हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत चित है, ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है, 84 लाख जन्म का तो कोई वर्णन ही न कर सके। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। क्या नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। 84 जन्म की कहानी बाबा सुनाते हैं और हम सुनते हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं, ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, तो विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूं। 5000 वर्ष का चक्र

ग्रह है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। हाँ, बाबा कहते ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो, समझ में भी आता है, बच्चों को समझ में भी आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। बाबा कैसे आत्मा तमो प्रधानता की ओर आई, वो भी सारा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद एलॉय मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना ये भारतवासी अपशुगन समझते हैं। हम भारतवासी सोने में खाद डालना ये अपशुगन समझते हैं। शादी कराते तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं, सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। बाबा जानते हैं हाँ, सभी भारतवासियों का सोने पर भी बहुत प्यार है। क्यों क्यों प्यार है? बाबा कहते भारत की बात मत पूछो, सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों के ढेर लगी रहती है, जैसे इस दुनिया में कोई मकान बनाते हैं तो ईंटों की ढेर लगी रहती है, वहां सोने चांदी की ढेर रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, उसने सोने की ईंट देखी, सोचा ले जाता हूं, नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी है नहीं। कुछ ना कुछ बात लगती है, भारतवासियों से ये सब बातें लगती है, इसलिए भारतवासियों का सोने से बहुत प्यार है। बच्चियां समझती है, अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बिचारी अंदर में रोती है, कब हम सुखधाम में जाएंगे बाबा, अब जल्दी करो। बाबा को कहते बाबा अब जल्दी करो, बाप कहते बच्ची जल्दी कैसे करो, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी है हे पति पावन आओ, गाते भी है सर्व का सदगति दाता एक, यहाँ की ही बात है, अकासुर बकासुर ये सब बातें संगम समय की है, यह ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, जब सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रदान होती है, यहाँ इतने पंछी जानवर आदि है, ये सब इतने वहां नहीं होंगे, सतयुग में इतने पंछी जानवर आदि नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उनके रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंचे देवताएं बनते हो, वहां ऐसी कोई चीची चीज रह न सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है, गांवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, मनुष्य गाते हैं गठी में ब्रह्मा गठी में विष्णु गठी में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। बाबा उसका अर्थ बताते हैं कि जो गाते हैं घट में ही ब्रह्मा घट ही में विष्णु घट में ही 9 लाख तारे,
तो ब्रह्मा सो विष्णु जब बन जाते हैं तो विष्णु के साथ सितारे भी है। सतयुग में ये देवता बन जाते हैं, सतयुग में ये सब देवता बनते हैं, तो इतने थोड़ी होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है, सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे, यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहां कैनाल्स आदि थोड़ी होती है, मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं देवताएं, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। पांच तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं, कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती, नाम ये स्वर्ग। तो फिर क्या, सारा स्वर्ग का वर्णन बाबा कर रहे हैं। अब कहते स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है, अच्छा भला वहां कौन राज्य करते थे ये तो बताओ, तो कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे, फिर मनुष्य समझते हैं। असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। ऊपर से कोई असुर लोग गंध गोबर आदि नहीं डालते हैं, परंतु इस बेहद के ज्ञान यज्ञ में बाबा कहे तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा, पाप का घड़ा भरने तक थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो, उनका पाप का घड़ा भरने तो दो, तभी तो फूटेगा। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा, तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, ये नहीं कहते हैं, कहते हैं गॉड फादर को याद करो, इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है, गॉड बहुत लवली है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने की मेहनत है, मुख्य बात है देही अभिमानी बनने की ही सारी मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े, मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं तब कमाते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएंगी, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना, रात को स्टीमर्स आते थे, बाबा पाकिस्तान की बात करते, रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे, जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पुराना अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा भी बिजनेसमैन थे तो सब अनुभव किया है, गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मण अनाज बेचता था। उस समय बाबा पहले तो किराने की दुकान पर थे, तो 10 आने मण अनाज बेचता था, अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरत के धंधे में लग गया, बस जवाहरत की बात। यह फिर है सच्चे जवाहरत, ज्ञान है सच्चा जवाहरत, यह होता है रॉयल व्यापार। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने अंतिम जन्म में भी कितना रॉयल व्यापार किया हीरे जवाहरत का। बाबा बहुत अनुभवी है, बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। बाबा जाते थे वहां, उनको
जेवर दिखाने के लिए, लेकिन ऐसे जाते थे जैसे अपने घर में। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे उससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर, उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कितनी महिमा भी गाएंगे फिर कह देंगे सर्वव्यापी है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानी, कैसी हालत हो गई है आज के हालत में, देखो कैसी हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहां आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा? फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवान वाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है, शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। बाबा कहे ड्रामा अनुसार फिर भी गीता के भगवान का नाम ऐसे ही बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते, रावण पतित बनाते हैं, तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। हाँ, श्रीमत पर चल करके ही ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्म के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है, अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले। आधार मूरत और उद्धार मूरत भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले, आधार मूरत और उद्धार मूरत भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूरत और उद्धार मूरत समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूरत समझते हैं उनका हर कर्म ऊंचा होता है। और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो, क्योंकि जो सत्य कहेगा उसको सहन भी तो करना पड़ेगा। आज की दुनिया झूठ की है, झूठ का बोलबाला है। झूठ वाले झूठ बोल करके हो जाते, उनको सहन नहीं करना पड़ता है।
सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील तो बनना ही पड़ेगा। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे। सहज योगी जीवन में मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे। यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं, उसको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।